0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ एवं न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज यह शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि 13, तदनुसार 4 जुलाई 2026
1: ईस्वी। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 हो

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, आलेख एवं वाचन कुसुमाकर दुबे का।
1: स्वाभिमान और अभिमान दोनों एक ही तरह के उच्चरित शब्द हैं और इनके अर्थ भी लगभग समान ही लगते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द परस्पर एक दूसरे से भिन्न ही नहीं, एकदम उल्टे अर्थ वाले हैं। आत्मसम्मान, आत्मगौरव के लिए प्रयुक्त होता है स्वाभिमान। ये एक पौरुषवादी शब्द है

0: उच्चरित शब्द हैं और इनके अर्थ भी लगभग समान ही लगते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द परस्पर एक दूसरे से भिन्न ही नहीं, एकदम उल्टे अर्थ वाले हैं। आत्मसम्मान आत्मगौरव के लिए प्रयुक्त होता है स्वाभिमान। ये एक पौरुषवादी शब्द है जो हमें जगाता है, प्रेरित करता है, कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए ललकारता है। स्वाभिमान हमारे अपने विश्वास को जगाता है, हमारे आत्मबोध को पुष्ट करता है। और कितनी ही कठिन डगर हो, स्वाभिमान हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमें जीवन मूल्यों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति, समाज के प्रति स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा देता है। और जब हम अभिमान की बात करते हैं, ये हमें पूरी तरह से अहं के मकड़ जाल में फंसा लेता है और धीरे धीरे मीठे जहर की तरह हमारा सब कुछ निचोड़ कर समाप्त कर देता है और हम एक बेकार से प्राणी बनकर रह जाते हैं जिसके भीतर कोई संस्कार नहीं होता। मनुष्य तीन ऋणों को लेकर जन्म लेता है। पहला होता है पितृ ऋण। हमारे जन्मदाता ने हमें जो शरीर दिया है, हम अपने ही रूप स्वरूप की संतति देकर पितृ ऋण से मुक्त होते हैं और स्वाभिमान पूर्वक सामाजिक संरचना के चक्र को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऋण होता है सामाजिक ऋण। हम जिस समाज में हैं, उस समाज को अपने कौशल और विवेक बुद्धि से, समाज सेवा करने की भावना से आगे बढ़ाते हैं। ये एक तरह का स्वाभिमान होता है जो समाज के लिए काम आता है। हमारे ऊपर तीसरा ऋण होता है राष्ट्र ऋण। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिसके अन्न जल से पोषण प्राप्त करते हैं, अपना, अपने परिवार, अपने समाज के विकास में सहयोगी बनते हैं, उस राष्ट्र के अभिमान को जागृत रखना हमारा धर्म है, पुनीत कर्तव्य है। इस राष्ट्र पर यदि किसी प्रकार का संकट है तो राष्ट्र को संकट से मुक्त कराने के लिए कई राष्ट्रभक्तों ने राष्ट्र के स्वाभिमान के वशीभूत होकर अपने आप को उत्सर्ग कर दिया है। ऐसा स्वाभिमान जो हमारे विवेक को प्रकाशित करता है, ये स्वाभिमान ही है जो हमें कठिन परिस्थितियों में डिगने नहीं देता। स्वाभिमान हमारी आन बान और शान का प्रतीक होता है, जबकि अभिमान हमें अहंग से ग्रसित करता है। ये मिथ्या है, ये हमें घमंड, गर्व और अपने को श्रेष्ठ समझकर झूठा और दंभी बनाता है, अज्ञान के अंधेरे में ढकेल देता है। अभिमान न सिर्फ मानव का बल्कि समाज और राष्ट्र का भी शत्रु है। इसीलिए अभिमान की ओर न जाकर हमें स्वाभिमान की ओर आगे बढ़ना होगा और विशेष करके अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान रखकर अपने देश को उन्नतशील बनाना और विवेकशील बनाना हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। हमें इस दिशा में सदैव विचार करना चाहिए कि हम कैसे अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। आइए इस दिशा में सोचें, विचार करें।
1: चिंतन। अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा।
2: आजुक कृषि चर्चा के संग हम आशुतोष कुमार झा। आजुक चर्चा के विषय है कंपोस्ट निर्माण आयकर उपयोगिता। किसान भाई लोकन, कंपोस्ट एक प्राकृतिक जैविक खाद है जे कचरा के सर्वा और पुनर्चक्रित कक बनाओल जात है। इ माटिक उपजाऊ क्षमता बढ़ेबा और पौधा सबके आवश्यक पोषक तत्व जेना कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्रदान करवा के एक

0: नीक और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है। कंपोस्ट बनेबाक प्रक्रिया बहुत आसान है, एकरा घर पर व खेत में आसानी से तैयार कैल जा सकत है। हरियर कचरा, एकरा लेल भंसाघर के बच रहा फल तरकारी के छिलका हरियर पात चाय के पत्ती जमा कर ली। सुखायल कचरा के लेल सुखायल पात लकड़ी के कुन्नी गत्ता पुआर एकरा सबके इकट्ठा कर ली। आब प्रारंभ करी खाद बनेबाक प्रक्रिया। घर या बाड़ी में एकटा गड्ढा खोदि ली, एकटा पुरनका गमला वा ड्रम ली, एकर नीचा छोट छेद अवश्य कऽ दी। एहिमे हरियर आ सुखायल कचरा बेरी बेरी से दी। कचरा के नम रखबाक लेल कनिसन पानि या फिर गोमूत्र के छिड़काव करी। नमी बना के रखबाक लेल एकरा टाटक बोरी वा फिर ढक्कन से झाँपि दी। बैक्टीरिया के ऑक्सीजन देबाक लेल हरेक 7 से 8 दिन में कचरा के ऊपर नीचा उल्टा पलटी करित रही। लगभग 40 से 45 दिन में ई मिश्रण करिया भुरभुरा और खुशबूदार कंपोस्ट खाद में बदल जाता है। कंपोस्ट खाद के इस्तेमाल से माटि और पौध के कई एक अद्भुत लाभ भेटित है। ई माटि में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व सबके मात्रा के बढ़वित है, जाहि से पौध के वृद्धि तेज होइत है। किसान भाई लोकन कंपोस्ट युक्त माटि नमी के बेसी समय तक सोख सकत है, जाहि से पौध के पर्याप्त नमी भेटित है। किसान भाई लोकन ई माटि के कण के बान के मजबूत बनबत है, जाहि से हवा या बरसात के कारण हुए वाला कटाव रुकि जात है। घर के गेल कचरा के इस्तेमाल हुआ से कचरा लैंडफिल यानी कि कूड़ा के ढेर में जाय से बच जात है। उत्पाद के गुणवत्ता सेहो रहित है। रासायनिक खाद के विपरीत ई प्राकृतिक खाद फल फूल और तरकारी के स्वाद और गुणवत्ता के बढ़बत है। आब एकर उपयोग केना करी अहियो पर अपना सबके ध्यान रखनाय आवश्यक है। माटि में लगभग 20 से 30% कंपोस्ट मिलाकर पौध में अपना सबके देवाक चाही। क्यारी वा गाछ सभक जड़ के लग में माटि के खुदाई कऽ कंपोस्ट के माटि में मिला देवाक चाही। माटिक नमी बनाकर रखबाक लेल एकरा पौध का जड़ के चारू कात ऊपर का सतह पर पसारि दी। किसान भाई लोकन कंपोस्ट एक प्रकारक खाद है, जे जैविक पदार्थ सभक अपघटन आ पुनः चक्रण से प्राप्त कैल जात है। ई जैविक खेती के मुख्य घटक है। कंपोस्ट बनेबाक सबसे सरल तरीका नम जैविक पदार्थ जेना कि पात सब बचलाहा खुचलाहा खेनाय एकरा सभक ढेर बना किछ काल तक प्रतीक्षा केनाय, जाहि से एकर विघटन भ जाय। विघटन में किछ सप्ताह या महीना लागत है। एकर बाद ओ ह्यूमस में बदल जात है। कंपोस्ट बनेबाक आधुनिक विधि कई एक चरण में पूर्ण होत है और प्रत्येक चरण में जल वायु कार्बन आ नाइट्रोजन से समृद्ध पदार्थ के पैघ नपल तुलल ढंग से दिल जात है। त किसान भाई लोकन अ तरह जखन अपना सब पूरा पूरा ध्यान रखबे त निश्चित रूप से अपना सबके कंपोस्ट से पूरा लाभ भेट सकत। एकरे संग आजुक कृषि चर्चा के एत ही विराम दैत आशुतोष कुमार झा के विदा देल जाओ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000

0: करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू साधुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है डायबिटीज लक्षण और उपचार। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नवीन कुमार।
3: आज की स्वास्थ्य चर्चा में डायबिटीज के लक्षणों

0: और सावधानियों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नवीन कुमार से। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज है क्या?
1: डायबिटीज एक जीवन शैली रोग है जिसमें हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो है हमारे लॉन्ग टर्म में जा करके बहुत सारे अंग में हमारे खराब होते हैं। मेरा यही कहना होगा कि डायबिटीज को कम नहीं आंकना चाहिए। डायबिटीज को आप ठीक कर सकते हैं अपने खान पान से, रख रखाव से, सही तरीके से व्यायाम कर करके और समय पर चिकित्सीय सलाह ले करके, और ज़रूरत पड़े तो दवा लेने की जगह ज़रूरत है तो उसे लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको बचने का प्रयास करना चाहिए।
0: लक्षण
1: अगर किन्हीं भी मरीज को, अगर उनको पेशाब ज़्यादा हो रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, उनका वजन गिर रहा है, उनके घाव नहीं ठीक हो रहे हैं, उनको कमजोरी लग रही है, देखने में दिक्कत, अचानक से उनके चश्मे का पावर चेंज हो गया, ऐसे अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके घर में उनके मदर फादर ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स वगैरह किसी को भी अगर डायबिटीज है तो ऐसे लोगों को तुरंत पहले अपना जो है जाँच कराना चाहिए कि उनको डायबिटीज है या नहीं है।
0: जाँच हो जाए तो दवाओं की जरूरत है या नहीं? लोग कहते हैं प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक है, तो प्री डायबिटिक में क्या दवाओं की कोई रोल है या फिर डायबिटीज हो जाने के बाद दवाएं कब शुरू की जाए इसको लेकर क्या
1: नहीं करेंगे? प्री डायबिटिक में दवा की जरूरत नहीं है। प्री डायबिटिक में आप अपने आप को लेकिन डायबिटिक समझें और उसके हिसाब से खान पान और आप एक्सरसाइज परहेज ये आपको रखना है। जहाँ तक दवा की बात है, अगर आप टाइप 1 डायबिटीज हैं तो आपको इंसुलिन लेना ही होगा क्योंकि हमारे पास तो इंसुलिन बन नहीं रहा है वहाँ पर। टाइप 2 में आप वेट कर सकते हैं, आपका शुगर लेवल क्या है, आपका HbA1c क्या है, उसके हिसाब से फिर प्लान किया जाता है क्या अभी दवा की जरूरत है या कुछ दिन वेट कर सकते हैं।
0: टाइप 1 में इंसुलिन का स्राव नहीं होता है, टाइप 2 में स्राव होता है, लेकिन क्या होता है?
1: डिफेक्टिव होता है, उसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। इंसुलिन हमारे पास बनता है बट उसको काम करने के लिए नहीं दे रहा, कोई दूसरे फैक्टर्स जो होते हैं जो उसको अपोज करते हैं कि तुम काम मत करो, तुम सेलुलर लेवल पर जो है शुगर को अंदर मत ले जाओ, ग्लूकोज को अंदर मत ले जाओ, उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस।
0: डॉक्टर साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जब डॉक्टर सलाह देते हैं कि अब आपको इंसुलिन लेने की जरूरत है और लोग चाहते हैं कि ये जो इंसुलिन लेने की जो स्थिति है उससे हम बचें, तो ये दोनों के बीच की जो बैरियर है, जो दीवार है, वो क्या है?
1: लोग जो समझते हैं कि इंसुलिन एक खराब चीज है, अगर 100 में 99 लोग तो लेना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा कारण है इसका कि लोग सोचते हैं कि इंसुलिन ले लिया तो फिर आप कुछ नहीं, अब लास्ट है ये। बट लोगों को समझना चाहिए कि उनको इंसुलिन की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इंसुलिन की अगर कोई मरीज है और दवा खा रहे हैं, 3-4 दवा खा रहे हैं और फिर भी उनका शुगर कंट्रोल नहीं रह रहा है, तो इसका मतलब है कि उनमें दवा काम नहीं कर रही है, वैसे लोगों को इंसुलिन लेना पड़ेगा। या कोई एक्यूट इमरजेंसी है, सर्जरी होनी है, आईसीयू में भर्ती है, इन्फेक्शन है, वैसे केसों में भी इंसुलिन देना पड़ता है। तो इंसुलिन खराब चीज़ नहीं है, इंसुलिन अच्छी चीज़ है, उससे जो है ज़िंदगी में बदलाव आता है और एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को हम लोग बहुत हद तक रोक पाते हैं। तो इसलिए इंसुलिन लेने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, जब जरूरत हो तो डॉक्टर सलाह दें तो उनको जरूर लेना।
0: सावधानियां
1: तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी के घर में अगर मान लीजिए डायबिटीज है तो हेरिडिटरी फैक्टर होता है, या आप ओबीज हैं, सेडेंटरी लाइफ है, तो इसके लिए आपको परहेज करना चाहिए, आपके वेट को कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए कि कहीं मुझमें डायबिटीज तो नहीं आ रही है। तो जीवन शैली में बदलाव ला करके और दूसरों को भी प्रेरित करके अवेयरनेस फैलाइए कि आसपास में जो है डायबिटीज के लिए जो अवेयरनेस करिए। अभी ऐसे भी नवंबर मंथ जो हम लोग डायबिटीज मंथ कहते हैं और 14 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज
0: डे मना रहे हैं
1: जी, तो इसमें जो है यही रखा गया है कि इलाज जो है ऐसा हो कि सब तक एक्सेस हो, कम्प्रिहेंसिव हो, अफोर्डेबल हो इलाज। तो ये सारा चीज थीम है हम लोगों का जो हम लोग करना चाहते हैं।
0: क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसको लेकर भी बहुत तरह की भ्रांति है।
1: ऐसी कहीं कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, लेकिन संतुलित आहार खाएं और सिंपल शुगर जो होता है, मिठाई, चीनी, ये सबसे बचें क्योंकि वो आपके चीनी के स्पाइक को बहुत जल्दी बढ़ाएगा।
0: फल
1: खाना चाहिए और बहुत सारा फल खाना चाहिए क्योंकि फल से जो है फाइबर मिलता है और फाइबर रिक्वायरमेंट हम लोगों की जो होती है वो हम लोग बहुत कम लेते हैं।
0: डायबिटीज के लक्षणों और सावधानियों के बारे में डॉक्टर नवीन कुमार, आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा में डॉक्टर नवीन कुमार से संजय कुमार की बातचीत अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। आनंद लीजिए

भगवान तो भक्त वत्सल हैं। जितना ध्यान हम भगवान का करते हैं उससे ज़्यादा भगवान हमारा ध्यान करते हैं। आइए सुनते हैं मन्ना डे के स्वर में ये भजन।

आन मोहे रघुवर की सुधाई। पंडित कुमार गंधर्व एवं साथियों के स्वर में अभी आपने ये भजन सुना। आइए अब सुनते हैं।

ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। पूजा या भजन किन्हीं भी भगवान का हो, ईश्वर तो एक है, पहुंचता बस वही है। महेंद्र कपूर एवं साथियों के स्वर में अभी आपने ये भजन सुना। आइए अब अगला भजन सुनते हैं नरेंद्र चंचल के स्वर में।

नरेंद्र चंचल एवं साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे देवी भजन। इसी के साथ भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, आप हमें हमारे सभी कार्यक्रमों को अपने स्मार्टफोन के माध्यम से भी सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान, स्वर अनूप जलोटा का।

रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काकभुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं।

रामचरित मानस गान। अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। 10 आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का, भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुनते हैं दिन के 11 बजे 11 बजकर 30 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत।

दिन के 12 बजे आप आनंद लेंगे नए फिल्मी गीतों का। देशभक्ति गीत का प्रसारण समय होगा 1:10। कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे 1:15 पर।

2:30 पर आप पुनः आनंद ले सकेंगे फिल्मी गीतों का। प्रादेशिक संगीत हम आपको सुनवाएंगे अपराह्न 3:00। हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:00। 5:40 पर आप सुन सकेंगे एक बार फिर से नए फिल्मी गीत।

विद्यापति गीत का प्रसारण समय होगा शाम 6:10। 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद हमारे पटना केंद्र से। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे झरोखा शाम 6:30 पर। 7:00 आप सुनेंगे किसानों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

प्रादेशिक समाचार का समय होगा शाम 7:30। 7:47 पर आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे पटना केंद्र से। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 7:52 पर। रात्रि 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। विज्ञान कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। कार्यक्रम साहित्य भारती आप सुनेंगे 9:30 पर। और 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे अखिल भारतीय कार्यक्रम, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में फिर हिंदी में, हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे।

0: करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला,
1: नमस्कार मिथिला सुनहार समस्त श्रोतागण के आजुक एहि अंक में सुस्वागतम। हमरा सनेक आय छै तूतन जी, अहूँ के स्वागत करै छी अपन प्रिय कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में।
0: और आपको भी नमस्कार प्रवीण जी।
1: हाँ, जना कि हम सब जनै छी कि अपन कार्यक्रम के शुभारंभ हम

0: तो आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को अपने श्रोताओं को रूबरू कराते हैं आज के हालचाल से। तो प्रस्तुत है आज का हालचाल प्रवीण कुमार से।
1: नमस्कार, हालचाल संग हम प्रवीण कुमार। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड में 385 एकड़ में बनत औद्योगिक क्षेत्र व्यापारी गण के सुरक्षा के प्राथमिकता देल जायत। डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ इंडस्ट्रीज दरभंगा के द्वारा ई निर्णय भेल। पर्यावरण मंत्री कहलनि जे एकटा गाछ अपन माय के नाम पर अवश्य लगाबी, जैसँ पर्यावरण बचायल जा सकैत अछि। जो आमजन एक एकटा वृक्ष लगायत तो बहुतो भऽ सकैत अछि। ओना बिहार सरकार दरभंगा जिला में 2.95 करोड़ गाछ लगेबाक लक्ष्य एहि वर्ष में रखने अछि। दरभंगा मधुबनी जिला के किसान सब के लेल खुशखबरी आयल। भारत सरकार सँ मिथिला हॉर्टिकल्चर क्लस्टर के मंजूरी भेटल। एकरा बाद एकरा सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु तेजी से काज भऽ रहल अछि। दरभंगा मधुबनी के 19,000 किसान सब के आत्मनिर्भर बनेबाक लक्ष्य लेल गेल अछि। किसान चौपाल के माध्यम सँ विशेष अभियान चलत, जैसँ किसान सब अपन अपन आत्मनिर्भरता के बात समझता, ओकरा प्रायोगिक रूप में अपन खेती सँ जोड़ता, जैसँ 19,000 किसान आत्मनिर्भर बनता। ई लक्ष्य एहि वर्ष के लेल राखल गेल अछि। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग राज्य के विश्वविद्यालय और नवगठित 211 राजकीय डिग्री महाविद्यालय में संविदा के आधार पर 3,687 सहायक प्राध्यापक सब के बहाली आरंभ कऽ देलनि अछि। एहि लेल 20 जुलाई 2026 सँ 27 जुलाई 2026 तक साक्षात्कार होयत। 15 जुलाई तक आवेदन लेल जायत एहि संबंध में, आ 17 और 18 जुलाई 2026 को सब आवेदन सबके जांच होयत। निरीक्षण के बाद स्क्रीनिंग और साक्षात्कार के लेल सूचना देल जायत। 20 से 27 जुलाई तक होयत साक्षात्कार। एहि लेल अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष राखल गेल और न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष राखल गेल अछि, जे 1 अगस्त 2026 सँ आरंभ होयत। अधिकतम आयु 43 वर्ष के जानकारी भेटल अछि। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आबय वाला दिन में आधुनिक सुविधा सँ युक्त तारामंडल, वेदशाला, डिजिटल लाइब्रेरी, अंतरराष्ट्रीय पहचान लेल छात्रावास, शोधार्थी विद्यार्थी सबके लिए छात्र छात्रा हेतु विशेष छात्रावास बनाओल जायत, भाषा प्रयोगशाला, नव कैंटीन सहित कतेको नव भवन के निर्माण होयत। कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे आ हुनका संगे अन्य पदाधिकारी गण मिलकर एकर आधारशिला रखलनि अछि। लगभग 4 करोड़ से बेसी रुपया के लागत से ई नव भवन सब बनत और संस्कृत विश्वविद्यालय के विकास ऐसा होयत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के अध्यक्षता में शुक्र दिन एकटा बैठकी भेल। सिंडिकेट के बैठकी में विद्वत परिषद के निर्णय के स्वीकार कयल गेल, जेहि में पीजी वनस्पति विज्ञान विभाग में होयत एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के पढ़ाई, ई निर्णय लेल गेल। दरभंगा जिला में जिला अधिकारी कौशल कुमार केलन जनसुनवाई। 60 से अधिक आम जनता के समस्या के सुनलनि और समाधान के लेल तुरंत प्रयास केलन। अपन अधीनस्थ अधिकारी सब के ओ कहलखिन जे इस समस्या के समाधान तुरंत हेबाक चाहिए। कार्यक्रम का लक्ष्य छल सबका

0: सम्मान सबका जीवन ई कार्यक्रम के मूल मंत्र छल जे काफी सफल भेल और कहलन जे ई सुनवाई समय समय पर जिला में लेल जायत। दरभंगा तारामंडल ऑफलाइन टिकट उपलब्ध नहीं भेला सँ बहुतो आमजन निराश भ क वापस भ जाय छथि। ओना जानकारी दी जे ब्रह्मांड के दृश्य देख के लेल बढ़ि रहल अछि आकर्षण, ऑफलाइन मोड में फुल भ जायत अछि तारामंडल के 150 टा जे सीट अछि से ऑफलाइन सँ फुल भ जायत अछि, ऑनलाइन सँ फुल भ जायत अछि, माफ करब, ऑनलाइन सँ फुल भ जायत अछि, ऑफलाइन वाला के ओहिठाम सँ वापिस हुआ पड़ै छै। एहि संग हालचाल संपन्न भेल, नमस्कार। और किछ मौसम के जानकारी लो ली, आइ सँ 7 जुलाई तक होयत अपना उत्तर बिहार में वर्षा। उत्तर बिहार के किसान सके लेल राहत के खबर अछि, बेसी अंतराल के बाद मानसून एक बेर फिर सक्रिय भ रहल अछि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा ग्रामीण कृषि मौसम केंद्र के ओर सँ देल गेल मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 4 से 8 जुलाई के बीच उत्तर बिहार के अधिकांश जिला में हल्लुक बारिश भ सकैत अछि। मौसम विभाग के वैज्ञानिक के अनुसार 5 से 7 जुलाई के दरमियान कतेको स्थान पर नीक वर्षा सेहो भ सकैत अछि। ओना धान के रोपनी में तेजी आयत, खरीफ फसल के सेहो ऐसा फायदा होयत। मौसम बुलेटिन के अनुसार अवधि में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के सेल्सियस के बीच रह सकैत अछि और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकैत अछि। अनुमानतः बसातक गति 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकैत अछि। वातावरण में नमी 75 से 80% बनल रहत। मौसम वैज्ञानिक के कहब अछि जे बारिश के कारण बनि रहल अछि, किसी वैज्ञानिक के किसान सब के सलाह देलनि अछि जे जै क्षेत्र में पर्याप्त पानी उपलब्ध है ओतय धान के रोपनी कऽ सकै छी। एहि संग मौसम संबंधी सूचना समाप्त भेल। जी किछ हम सब आप गप सब कह ली
1: जी। हाँ प्रवीण जी,
0: आप देखिए खेने चर्चा केलहुँ हम वर्षा के, वर्षा होइत अछि जाहिसँ हमरा सबके पानि भेटैत अछि यानी जल भेटैत अछि, ओहि जल के जखन बेसी भऽ जाइए तऽ अलबला जाइ छी आ कम होइए तऽ घबरा जाइ छी। तऽ एहिके बीच के रास्ता हमरा सबके केना निकलै, एकर जानकारी सबके लेल आवश्यक भऽ जाइत अछि।
1: जी हाँ,
0: एकटा कहावत छै जे जल ही
1: जीवन है,
0: सत्य कहलहुँ। तऽ जखन ई बात सब बुझै छी कि बिना पानि के हमरा सबके बेसी दिन ई जीवात्मा जीवित नहीं रह सके।
1: लेकिन प्रवीण जी ये बात तो सब समझते ही हैं कि जल ही जीवन है और इसकी आवश्यकता हम सभी को है, लेकिन फिर भी इसको बर्बाद करने से बाज नहीं आते। जहाँ तहाँ देखिए नल खुला छोड़ देते हैं, घर में टिप टिप टिप टिप नल चलता रहता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, मोटर चलाते हैं तो बंद करना भूल जाते हैं, पानी ओवरफ्लो होता रहता है होता रहता है।
0: हम अही के लेल किछ बातचीत को शुरू केलहुँ हैं जे कि जे एहन महत्वपूर्ण जीवन में रखते ओ तत्व, ओहि तत्व के कतेक संजोय के हम सब राखी, तकर किछ जानकारी के हमरा सबके अभाव है या प्रचार प्रसार के कमी छै। सत्य कहलहुँ अपने जे शहरीकरण के दौर में से पानि के बर्बादी देखल जाइत रहै छै, जे पियो के पानि छै ओ बहुत मेहनत से भेटै छै। ओना कहल गेल छै मीठा जल जे छै ओ सीमित मात्रा में एहि पृथ्वी पर छै, ओकर दोहन ओहिना सीमित मात्रा में हेबाक चाही, और यदि समुद्री पानि या नदी पानि के अहाँ ढंग से पियो वाला बनबै छी तऽ ओहि में खर्चो बेसी होइ छै। वैज्ञानिक सब पर शोधो कऽ रहल अछि, किए तऽ बहुतो संसार में एहन देश छथि जतय पानि के खास कऽ पियो वाला पानि के विशेष अभाव रहैत अछि। ओना अपना ओहिठाम कहल गेल अछि जे उत्तर बिहार में पानि के कोन कमी छै, ईश्वर जहन दै छथिन तऽ उपरो सँ देबऽ लगै छथिन, और संगे संगे पहाड़ी नदी सँ मिलकर आ कोसी कमला मिलकर अवधारा समूह के नदी सब मिलकर जे एहिठाम जलकर क्षेत्र बनबै छथिन ओ दृश्य तऽ की कहल जाए। कोसी के अब नदी के जे

0: धारा बहैत अछि ओहिमे कतेको समाहित भऽ जाइए। गंगा नदी के जहन धारा बहैत अछि तऽ कतेको घर समाहित होइए। एहन जल तऽ जल विनाश के कारण सेहो होइत अछि, आओर जल जे मीठा अछि पियोके लेल ओ हमरा सबके लेल एक आदर्श अछि। बिना जल के अहाँ सोचियो जे अहाँ कए दिन तक जीव कर सकै छी।
1: हमारे दिन के शुरुआत कही जाए प्रवीण जी तो जल से ही होती है, और जल पे जाके ही रात को हम लोग विश्राम की ओर जाते हैं, पूरा मुंह कान धोते हैं, हाथ पर धोते हैं, खाना खाते हैं, फिर जाके बिस्तर पे जाते हैं। तो शुरुआत और रात्रि का जो विश्राम होता है वो जल से ही होता है।
0: कहबाक तत्वारी जी मनुष्य के लिए या जीवात्मा के जीव के लिए जे चाही ओहिमे होइ छै हवा पानि भोजन, ई तीनटा बड्ड महत्व रखै छै। ई तीनूमे सँ यदि ककरो रोकि देल जाए तऽ दू चारि दिन पाँच दिन अहाँ आगाँ बढ़ि सकै छी, अपन जीवन के आगाँ बढ़ा सकै छी, ओहिके बाद नहि। अहाँ बिना पानिके कोशिश करू जे कए दिन रहि सकै छी। एहन महत्वपूर्ण जे जीवनमे रखैत अछि ओकरा लेल हमसब की सोचै छी। आब सरकार जे विश्व पटल पर पर्यावरण सने छेड़छाड़ भेल ओहिके कारण ग्लोबल वार्मिंग भेल, जे कारण जे ऋतु छल सेमे हेरा फेरी भेल, कतौ अतिवृष्टि होइए तऽ कतौ सूखा पड़ैए। एहि दौरमे जल जीवन हरियाली पर बिहार सरकार खास कऽ बड्ड जोर देलक अछि, दऽ रहल अछि। हमरो सबके कर्तव्य अछि प्रकृति रक्षाके लेल आ जलक संतुलन बनल रहे ओहि रक्षाके हेतु निश्चित रूपसँ जल के महत्व के बुझी, खास कऽ ओहि जल के जे हमसब पीबै छी। ओना तऽ देखल गेलै जे आजुक दिन मे बहुतो तरहक मिनरल वाटर आबि गेल अछि जे तत्वहीन भऽ जाइत अछि, लेकिन मीठा जल जे होइ छै जतय नीक जल अबै छै बिना मिनरल बनेने जे ओकरा अहाँ पार ओहिमे जे तत्व बचल रहै छै ओ मिनरल मे नहि भऽ सकै छै। तैं मीठा जल के संरक्षण संवर्धन कोना हेबाक चाही ई जानकारी हमरा सब आमजन के आम नागरिक के हेबाक चाही। ओकर दुरुपयोग तऽ कतौ नहि हेबाक चाही, किया तऽ जलक महत्व वएह बुझि सकैए जे मरुस्थल मे रहैत अछि।
1: जी हाँ प्रवीण जी बिल्कुल सही कहा अपने। अभी भी जल का महत्व मरुस्थल वाले वहाँ के जो वासी होते हैं वो बखूबी समझते हैं, और वहाँ आपको देखने को मिलेगा, कभी अगर आप घूमने जाएं तो देखने को मिलेगा कि लोग राही बटोही के लिए, रास्ता चलने वालों के लिए या फिर पशु पक्षी के लिए बाहर में जल की व्यवस्था करते हैं। वो जल की विशेषता को, उसके महत्व को समझते हैं, क्योंकि जहाँ तहाँ जैसे हमारे यहाँ पोखर तालाब में जल मिल जाता है जानवरों को पीने के लिए, वहाँ नहीं मिलता है, और वो अपने मटकी में या किसी भी जो उनके पास संसाधन है उसके माध्यम से सबके पीने के लिए कुछ जल की व्यवस्था करके रखते हैं, तो वो समझते हैं। उसी तरह से हम लोगों को भी समझने की आवश्यकता है, जल को व्यर्थ न गवाएं और इसका संरक्षण और संवर्धन करें।
0: आइकाल्हि आब वर्षा के जल के सेहो संरक्षण होइए, ओकरा जमा करऽ के एहन जगह बनबैए जे जमा कयलाके बाद ओकरा उपयोग अहाँ कऽ सकै छी, उपभोग कऽ सकै छी। ओना कहल गेलैए जे वर्षाके जे पानि होइत अछि ओ सबसँ शुद्ध होइत अछि।
1: हाँ, इसका भी आप संरक्षण कर सकते हैं, इसका माध्यम आप बना सकते हैं अपने आप को संरक्षण करने के लिए। छत पे पानी छत से बहता है तो चारों तरफ देखते हैं कि पानी बहता रहता है, लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, रोड पर पानी बह जाता है, फिर हमारे पड़ोसी के यहाँ पानी चला जाता है। यदि हम चाहें तो सारे पूरे छत का पानी एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं एक पाइप के द्वारा, और उस पानी को हम सिंचाई के उपयोग में ला सकते हैं।
0: और देखल इहो जाइत अछि कतौ कतौ जे आब एहि युग मे जखन लेयर के अभाव भऽ जाइ छै, ओहिठाम समरसेबुल नामक मशीन आयल अछि, ओ मशीन ओते तेजी से जल के दोहन करैत अछि और मीठा पानी के से बर्बाद सो हमसब करै छी। आब जानकारी होइतो बर्बाद करै छै, किया तऽ हमसब पानि के तऽ बुझै छी अपना आप के बड़ धनिक छी, तऽ धनिक आदमी किछु बेसिये खर्चा कऽ लेत तऽ की फर्क पड़ै छै। कहावत एकटा कहावत छै, समुद्रमे सँ दू चारि लोटा जले उगि लेब तऽ समुद्र थोड़े खाली भऽ जेतै, एहन सोच नहि राखी। पहिले कहलहुँ आ फेर कहै छी, मीठा पानिके यानि पियऽवला पानिके जे उपलब्धता छै एहि पृथ्वीपर ओ बड़ कम मात्रामे छै। ओकरा मीठा बनबऽके लेल समुद्र तऽ नहि सुखा सकै छी, लेकिन समुद्रके पानिके मीठा बनबऽके लेल मने पियऽ योग्य बनबऽके लेल बड्ड धन खर्चा होइ छै। तैं अपन जे पहिलेसँ चीज अछि ओ धरोहर अछि अहाँके, आ जल जीवन छै, तैं ओकर एक एकटा बूंद जे छै ने

0: से बड महत्व रखै छै, यानी अहूँ लेल आ अहाँ जकरा रचना कऽ रहल छी यानी आगाँ आबयवला पीढ़ीके लेल ओकरो लेल गपशप करब। लेकिन एकटा समय भऽ कहि रहल अछि, एकटा सुन्दर सन हमसब फिल्म सङ्गीतके पहिले आब आनन्द ली, तहन फेर गपशप करब।
1: जी बिल्कुल प्रवीण जी।

0: गीत संगीत उत्सव संगे हमरा सबके जीवन ई सत्य अछि और जीवन केना चलै ओहि के लेल साहित्य और संस्कृत गीत संगीत एकटा हमरा सबके सहायक होइत अछि। समाज के आगा बढ़बा में गीत संगीत और साहित्य के सेहो बड पैघ योगदान होइ छै। और पढ़ लिख कऽ यदि कोनो चीज जानकारी होइ तो यदि कोनो अपराध या गलती करै छी अहाँ तो ओहो एकटा से निगेटिव मार्क अबैए अहाँके जीवन में। कहबाक तात्पर्य जे हमसब गप करै छलहुँ हैं जे पानि के एक एक बूंद हमरा सबके अपना लेल आवा वाला जीवन के लेल अति महत्वपूर्ण अछि। ओहि बिना जीवन आगा नहीं बढ़त तो ओकर दुरुपयोग नहीं हुए ते पर विशेष जोर आ जे के नहीं बुझ रहल छथि हुनका जोर द के बुझबियौन। किया तऽ अपना ओहिठाम देखल गेल है जे बहुतो आदमी बहुतो किछु जानकारी रखितो वह काज करै छथि जे हुनका नहि करबाक चाही। तैं जलक मात्रा पानिक मात्रा जे अछि ओ संसार में भरि में मीठा पानि के मात्रा ओ कम अछि। ओकरा लेल हमसब ओकर दोहन ओतबे करी जते उपयुक्त छै। आ काज अछि एक बाल्टी पानि के आ दस बाल्टी पानि हरा देलहुँ गाड़ी धो लेलहुँ ई कऽ लेलहुँ ओ कऽ लेलहुँ यानी मीठा पानि के सद्य अहाँ दुरुपयोग करै छी। एहिसँ हमरा सबके बचबाक चाही।
1: जी हाँ प्रवीण जी, जहाँ पर हम एक बाल्टी से स्नान कर सकते हैं वहाँ पर पानी चल रहा है, नहा रहे हैं, पानी गिर रहा है, कपड़े धोने की आजकल तो फैशन चल गया है कि हम वॉशिंग मशीन में ही कपड़ा धोएं, तो वॉशिंग मशीन में पानी कितना लगता है ये आप सभी समझते हैं और हम भी समझते हैं। और हम लोग अभी मशीन का युग है, ठीक है कि हमें सुविधा मिली है, विज्ञान ने हमें बहुत सुविधाएं दी हैं, हम अपना काम करते हुए घर का काम करते हुए ऑफिस भी संभालते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन ये मशीन का युग जो है सो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि हम मशीन पर निर्भर हो गए हैं। और मशीन पर निर्भर होने का मतलब है कि जल जो है इतना ज़्यादा खपत होता है। अब देखिए डिश वाशर आ गया है, बर्तन धोने का मशीन आ गया है, उसमें हम धोते हैं तो पानी कितना निकलता है उससे, कितना वेस्टेज जाता है। आरओ का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं तो उसका जो वेस्टेज निकलता है उसका हम खुद ही जिम्मेवार हैं कि उसको बर्बाद करते हैं। उसको अगर हम इकट्ठा करके और कहीं और इस्तेमाल, घर की सफाई कर लें, कुछ बगीचे में दे दें, पेड़ पौधा तो प्रत्येक घर में होता है, नहीं खेती में, खेत में हम दे सकते हैं तो पौधे जो हम फूलों का लगाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। यानी कि हम अगर एक एक बूंद पानी का इस्तेमाल करें तो पीने का पानी खपत कम होगा, हम पीने में उसका इस्तेमाल सही ढंग से कर सकेंगे।
0: हाँ एकदम सत्य कहलो, जे अकाटी सत्य वैसा नहीं भाग सकै छी। अहाँ जे यात्रा करै छी तऽ पानिक महत्व बुझैत हेबै, अहाँ यदि राजस्थान जाइ छी तऽ पानिक महत्व बुझैत हेबै, यानी मरुस्थलमे जे ककरो प्यास लगै छै तऽ केना बुझै छै तऽ पानिक असली महत्व वएह बुझै छै। पैघ पैघ शहर अछि, मुंबई अछि, दिल्ली अछि, पैघ पैघ महानगर अछि, ओहिठाम पानिक सप्लाई

0: यदि एक दिन ब्रेक भऽ जाइ छै तऽ हाहाकार मचि जाइ छै। एतेक पैघ जनसंख्याके टैंकरसँ कतेक पानि सप्लाई होयत? एहि चीजके बुझैत समझैत यदि एहन छोट छोट गलती अहाँ स्वयं करै छी तऽ ई नीक नहि भेलै, तऽ एहिपर जागरूक हेबाक आओर जरूरत छै जे पानिक सदुपयोग केना हुए। ओहो हर बूंद जे अबै छै तकर जकरा एखने चर्चा केलहुँ हँ आरओके, लगभग देखलहुँ हँ जे आजुक युगमे घर सबमे आरओ लागल अइ। ओहिमे सही बात छै, एक लीटर मिनरल वाटर बनबऽके लेल ओ 10 लीटर पानिके खराब करै छै, बहा दै छै। यदि ओहि पानिके पाइपके अहाँ कोनो ड्रममे या बाल्टीमे इकट्ठा कऽ लेब तऽ वएह पानिसँ अहाँ कपड़ो धो सकै छी, बर्तन धो सकै छी, किएक तऽ ओ एहन पानि नहि विषाक्त होइ छै जाहिसँ कोनो काज नहि कऽ सकै छै, पानि तऽ वएह रहै छै। हँ, ओहिमे सँ मिनरल की करै छै, सब तत्वके बाहर लऽ दै छै आओर ओकरा छानिके अपनामे समाहित करै छै। तैँ एहन एहन छोट प्रयोग एखने देखल गेलै जे बरसातके सीजन नहि, बहुतो एहन आदमी छथि जे आब वर्षा पानिके स्टोरेज करै छथि। ओ एहन पानि होइत अछि जे सब तरहक पदार्थ ओहि पानिमे होइ छथि आओर कोनो तरहक दुर्गुण या दूषित कहब जे ओहि पानिमे नहि देखल गेलै। तैँ वर्षाके पानि होइ तऽ ओकरा यदि अहाँ संग्रह करी तऽ आगू काज भऽ सकै छै। जेना बहुतो किसान एहन छथि जे जल संग्रह करै छथि, पहाड़ी एरियामे बेसी देल गेलैए जे जल संग्रह केन्द्र छै, झील छै, ओकरा सबके सरकार सब संरक्षण दऽ रहल अइ। अपने ओहिठाम जल जीवन हरियाली योजना सब चलैए, ओहिके अंतर्गत जतेक झील अछि, पानि अछि, नहर अछि, पोखरि अछि, ओकरा संरक्षण संवर्धन केना हेबाक चाही ताहिपर जोर देल गेलैए। बढ़ैत विशाल जनसंख्यामे देखल गेलै जे चौर चाँचर पोखरिके भरिकऽ मनुष्य आबादी बसा रहल अछि, हमसब भागि रहल छी जनसंख्या मदमे। आओर ओहि क्रममे देखल गेलै जे जल संग्रहवला जे केन्द्र सब छलै, जे संग्रह होइ छलै ओ लेयरके एकटा बनेने रहै छलै, जे दोहन हमसब पृथ्वीसँ जलके मीठा जलके करै छी ओ लेयरे द्वारा प्राप्त होइ छै। यानी एकटा चक्र छै, वर्षा होयत जल संग्रह होयत, जल संग्रह धीरे धीरे पृथ्वीमे समाहित लेयरमे जायत आओर ओहि लेयरके दोहन कऽ कऽ हमसब पानि, मीठा पानि अनै छी या आओर पानि अन्न खेतीके लेल बोर्डिंगसँ पानि निकालै छी। तऽ एहि तत्वके समझऽके लेल अहाँके बुझऽ पड़त जे पानिके एक एक बूंदके महत्व हमरा लेल, हमर आबयवला पीढ़ीके लेल या जनमानस सब जीव जन्तुके लेल अति आवश्यक छै। तैँ ओहि चीजके ओहिना धरोहरके तरह खर्चो करी। जेना सबसँ प्रिय होइ छै मनुष्यके सोना, गहना, हीरा मोती, ओकरा कतेक सहेज कऽ रखै छी, ओकरा अहाँ विचित्र कोनो एना ओनामे खर्च नहि करब, ओकरा संजोग कऽ सहेज कऽ राखब, साफ सुथरा कऽ कऽ राखब। ओहिना जे जल तत्व अछि पियऽवला ओकरा ओहिना राखी, कोनो तरहक बर्बादी जलके नहि हेबाक चाही। ई हमर सबके से एकटा मनमे बात बैस जाय, से आबयवला भविष्यके लेल नीक। आओ कार्यक्रम तऽ फेर करब आओर करते रहै छी, ओहि बीचमे एकटा फेर हमसब गीत सुनी, फिल्म सङ्गीत।
1: जी हाँ।

हाँ, एखन गीत सुनलहुँ। गीत के बोल चल, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो हम सब जे गप सब करै छलहुँ हैं जे अहाँ सब मिलकर यदि संग देव तो हमर जे पानि अछि पियै वाला ओकर एकटा एकटा बूंद के जे महत्व छै ओ बढ़ि जेतै और जीवन सबके लेल आसान भऽ जायत, आबय वाला भविष्य सेहो सुरक्षित होयत। ओ होयत ओहिना जे प्रकृति के संतुलन बनल रहे, पर्यावरण पर हमर सबके ध्यान विशेष हुए, ओहि के लेल प्रयत्न करय पड़ै छै और कोनो तरहक विकास जे होइ छै से ओहिना नहि होइ छै, ओकरा जड़ि सँ उठबय पड़ै छै। यानी कोनो महल जे बनल अछि भव्य, ओकर निर्माण के शुभारम्भ भेल छै नीव सँ, यानी जड़ि सँ। तऽ शुभारम्भ करय के लेल, जीवन में आगाँ बढ़य के लेल छोट छोट छोट छोट लघु उद्योग, कुटीर उद्योग अर्थव्यवस्था में बड़ महत्व रखे छे। ओ ओना रखे छे जे कोनो चीज यदि अहाँ बना रहल छी ओकरा ढोका के लेल बॉल और सीमेंट से ओकरा हम प्लास्टर कके ओकरा हम से मजबूत कऽ दै छी जे ओहिमे जर्क नहीं रहे, ओहिमे कोनो

छेद नहीं रहे, जैसे कि आगा वाला आवा वाला समय में वो खराबी वही सब हो सकते हैं। तहिना छोट छोट उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जे से अपन सबके अर्थव्यवस्था में इतेक महत्व रखे छे, जकर चर्चा हम एखन करब संगे नूतन जी छथि। देखो जे अपना ओहिठाम आदिकाल सँ छोट उद्योग, लघु उद्योग आ कुटीर उद्योग के, चूँकि कृषि प्रधान देश अछि, किसान सब किसान खेती गृहस्थी के बाद अपन अपन किछु किछु उद्योग करै छलाह, ओ अलग अलग किस्म के होइ छलाह। आइ के आधुनिक युग में छोट लघु उद्योग से एकल दोकल महिला मिलकर सेहो कऽ रहल छथि, जे ऑनलाइन के माध्यम सँ अहाँके उपलब्ध अछि। आब अहाँ ओहि पर चलू, ध्यान देबै तऽ सब सामग्री अहाँके भेट सकैत अछि। ओ कतऽ सँ? तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग छ। तऽ ई हमरा उद्योग व्यवस्था के एकटा महत्वपूर्ण रीढ़ होइत अछि, जान होइत, अर्थव्यवस्था के जान होइत अछि छोट लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जाहिमे हमरा सबके भूमिका अहम भऽ जाइत अछि। देखियौ, नौकरी चाकरी के लेल सब काज करै छी, लेकिन स्वयं के रोजगार बना कऽ आ दोसरो के रोजगार दी

0: कुटीर उद्योग के, चूंकि कृषि प्रधान देश है, किसान सब किसान खेती गृहस्थी के बाद अपन अपन किछ किछ उद्योग करै छला है, ओ अलग अलग किस्म के होइ छला। आज आधुनिक युग में छोट लघु उद्योग से एकल दोकल महिला मिलकर सेहो कऽ रहल छथि, जे ऑनलाइन के माध्यम से अहाँ के उपलब्ध अछि। आब अहाँ ओहि पर चलू, ध्यान देबै तऽ सब सामग्री अहाँ के भेट सकैत अछि। ओ कतौ सँ? तो लघु उद्योग कुटीर उद्योग छ। तऽ ई हमरा उद्योग व्यवस्था के एकटा महत्वपूर्ण रीढ़ होइत अछि, जान होइत, अर्थव्यवस्था के जान होइत अछि छोट लघु उद्योग कुटीर उद्योग, जाहिमे हमरा सबके भूमिका अहम भऽ जाइत अछि। देखियौ, नौकरी चाकरी के लेल सब काज करै छी, लेकिन स्वयं के रोजगार बना कऽ आ दोसरो के रोजगार दी, ई महत्वपूर्ण रखै छै जीवन में। जेनाकि एखन जीविका बहिन सब पूरा बिहार भरि में से महिला समूह बना बना कऽ जे महिला सबके विकास के लिए ओ की कहू आ कऽ रहल छथि, हुनकर सबके एक एक आ उत्पाद से एखन बाजार में आबि रहल अछि, और नीक गुणवत्तापूर्ण और संगे संगे कोनो तरहक धोखागड़ी नहि, समान मतलब एक नंबर, जे सामान लेब ओ नीक सामान भेटत।
1: रोजगार की अगर आप बात कर रहे हैं प्रवीण जी, तो प्रत्येक व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष किसी भी क्षेत्र में अगर वो किसी भी चीज़ की उसकी उसे जानकारी, यहाँ तक कि महिलाएं खाना जो बनाती हैं, घर का खाना भी अब एक बिजनेस का माध्यम बन सकता है, क्योंकि क्योंकि आज के दौर में जो कामकाजी महिलाएं हैं वो खाना नहीं बनाती, बाहर के दूसरे शहर में लोग रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, पुरुष रहते हैं जो काम करते हैं घर से बाहर रहकर, उन्हें घर का खाना होटल से तो नहीं मिल सकता। तो महिलाएं चाहे तो टिफिन सर्विस देकर या अपने घर पे ही छोटे से एक हॉल में या छोटे से कमरे से शुरू कर सकती हैं खाना बनाकर। तो अगर आप कुछ नमकीन बनाना चाहती हैं, यहाँ तक कि अचार बनाने वाली महिलाएं जिन्हें अचार अच्छा बनाना आता है, तो उसका भी बिजनेस किया जा सकता है।
0: सत्य है जी, एकदम सत्य कहे छी। देखियो, मात्र एकटा मन में जुनून हेबाक चाहिए किछ करे के, यदि ओ ठान ले छी तो देखल ई गेलै है जे अहाँ एकल होए या द्वय होए या फिर समूह होए, यदि प्रयास शुरू करब तो शुरुआत में सब चीज में कनी समस्या होइ छै, ओहि समस्या पर यदि अहाँ विजय प्राप्त करब तो छोट छोट लघु उद्योग सँ बहुत दूर तक आदमी गेलै, ई कतेको प्रमाण हमरा ओहिठाम छै। आइ काल्हि महिला की कहू छोट छोट उद्योग करै छथि घरेमे अहाँके कतेक महिला सिलाई कढ़ाइ होइ, पेंटिंग होइ, अदौरी कुमरौरी मुरौरी, बहुतो एहन सामग्री छै जे बनबै छथि। आइ काल्हि तऽ आब देखल गेलै जे पिरिकिया, खोआ वाला पिरिकिया, टिकड़ी, नमकीन, विभिन्न तरह खान पान के, एक ना चर्चा केलहुँ आचार के, एहन बहुतो एहन सामान छै जे बाजार में आब उपलब्ध अछि, ऑनलाइन के माध्यम से होए या ऑफलाइन के माध्यम से होए, ओ हमरा सबके लघु उद्योग आ कुटीर उद्योग के देन अछि, जे हमरा सबके एकटा अर्थव्यवस्था के मजबूती से थमने रहैत अछि। ग्रामीण क्षेत्रीय जे हटिया लगैए ओहि उत्पाद के बेचय के एकटा केन्द्र होइ छै। तो कहबाक तात्पर्य ई जे समय आब कहि रहल अछि जे आजुक कार्यक्रम सँ हमरा आज्ञा लेबक बेर आबि गेल अछि, तै जतेक किछु आइ चर्चा केलहुँ हैं तै पर आमजन ध्यान देबै और ओहि संग अपन जीवन आगा बढ़ेबै। आजुक एहि अंक सँ हमरा नूतन जी के दिया आज्ञा, नमस्कार।

कोलकाता के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मुकेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06-272-222-481। हमारा मोबाइल नंबर होगा 9430029353। समय याद रखें रविवार 5 जुलाई 2026 दिन के 11 बजे।

कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। वन संरक्षण के बिना पर्यावरण संतुलन तो खतरे में है ही, दिन ब दिन हमारा जीवन भी आसान नहीं रहने वाला। वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के

0: वड्रा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10

0: 11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 863 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्ट्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मैच आज मैनचेस्टर

0: में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur.

0: Men's cricket, the second T20 international between India and England, will be played in Manchester today. The match will begin at 7 this evening, Indian time. The opening game of the five-match series was abandoned due to rain at Chesterley Street. The IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Odisha for today. Heavy to very heavy rainfall conditions are expected over East Rajasthan, East Madhya Pradesh, coastal Karnataka, Telangana and Vidarbh for next 2 days. Meanwhile, in Delhi, the sky is likely to remain cloudy with the possibility of light rain today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have covered the news on the rapidly warming oceans, raising the likelihood of heat waves, droughts and heavy rainfall across large parts of the world. Hindustan Times writes, El Nino to intensify rapidly by September, set off weather chaos. A headline in the Statesman says, India emerges as one of the lowest cost major solar power markets globally. Center to summon Meta officials over alleged child sexual abuse ads on Instagram, cites the Times of India. An editorial in The Pioneer states a recent judgment in the Apex Court, the landmark judgment, recognizes homemakers as nation builders. The article adds that 15-17% of the GDP is contributed by unpaid caregiving work, household or unrecognized work. The Asian Age and all other dailies have noticed the Defence Acquisition Council clearing over 50,000 crore rupees of military purchases for all three services to boost combat readiness. All the dailies have noticed the government's order on removal of the three Chinese apps after these were allegedly found being misused for stalling e-rickshaws. The Hindu writes, SIT likely to re-audit Ram Temple Trust accounts for 5 years. And finally, a report in Times of India states, Bangalore, Chandigarh and Delhi having the highest average income in the country. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals and men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीनफील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एल नीनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्कसाली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरी टी20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक रोजा दौरे पर जाएंगे। पहले वो राजस्थान जाएंगे, जहां वो आज सुबह जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वो आज दोपहर तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे, इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 1.06 लाख

0: करोड़ रुपए की लागत आई है। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
1: उम्मीद है कि रियासत के मगरबी जिलों में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से सरमायाकारी, रोजगार और सनअती तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट से एमएसएमईज, पैकेजिंग, कपड़े की सनअतों, ऑटो कलपुर्जों और एग्री फिल्म जैसे शोबों को भी फरोग हासिल होगा, जिससे रियासत की मईशत में एक नई तकवियत पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के चैलेंजिंग सहरा में बनाया गया है, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले से शुमाल जनूब राहदारी, खासतौर पर शहर की कसीर मॉडल कनेक्टिविटी को फरोग हासिल होगा। इस राहदारी से मेट्रो ट्रेन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से मरबूत हो जाएगी। वज़ीर आज़म के इस प्रोग्राम के रवां टेलीकास्ट के लिए रियासत के सभी जिला सदर दफ्तरों, शहरी बलदियाती इदारों और ग्राम पंचायतों में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: बाद में शाम को वजीर आजम मोदी गुजरात का दौरा करेंगे। यहां वो अहमदाबाद के सनन इलाके में बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तर्तीब और तजुर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सफर में एक अहम संग मील है, जिसके तहत भारत के पहले शुरू से आखिर तक चिप पैकेजिंग यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बाहर से मंगाए गए सीजी सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजर्बाती मरकज ओसेट से एक खुदकफील टेक्नोलॉजी इको निजाम की जानिब भारत के सफर में एक बड़े संग मील की अक्कासी होती है। इस यूनिट में मसनूई जहानत और आला कारकर्दगी वाली कंप्यूटिंग के शोबों में तेजी से तरक्की हुई है। ये यूनिट एडवांस्ड मेमोरी और स्टोरेज के लिए आलमी मांग को पूरा करने के मकसद से कायम किया गया है। सनंद में ज्यादा पैदावार से अहम सनतों में आलमी और घरेलू सारफीन को बराह रास्त फायदा होगा। इन सनतों को ऑटोमोटिव, सनती खुदकारी, 5G मवासलात और इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते ATS ने पाकिस्तान में कायम ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन अफराद को गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से कल एक साथ की गई कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS के मुताबिक मुलजमीन पाकिस्तानी आकाओं के राबते में थे और अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मजीद तौसी देने के लिए गुजरात में एक सरगर्म नेटवर्क कायम करने के लिए जैश ए मोहम्मद की जानिब से सरगर्म अमल थे। ये अफराद जैश ए मोहम्मद के नुक्ते नजर की तशहीर के लिए उनके मवाद को गुजराती जबान में तर्जुमा करने का काम भी कर रहे थे। कौमी राजधानी में अब तक 1,02,000 से ज्यादा शुमारियाती फॉर्म्स डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर के मुताबिक दिल्ली में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी के अमल के हिस्से के तौर पर तकरीबन 33,14,000 फॉर्म्स तकसीम किए गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर शुमारियाती फॉर्म्स तकसीम करने का काम फिलहाल जारी है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत $1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की बरामदात के अपने निशाने को हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है, जिसके तहत रवां माली साल की पहली सहमाही में तकरीबन 15% सालाना बरामदात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। कल नई दिल्ली में तिजारती मीटिंग के बोर्ड से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस निशाने को हासिल करने के लिए अशिया की बरामदात में इजाफे की जरूरत होगी। ये बरामदात अभी तकरीबन 480 अरब अमरीकी डॉलर्स की हैं, जिसमें इजाफा करके इन्हें तकरीबन 530 अरब अमरीकी डॉलर मालियत का किया जाएगा, जबकि खिदमात की बरामदात में सरदस्त तकरीबन 421 अरब डॉलर की मालियत में इजाफा करके इसे तकरीबन 470 अरब अमरीकी डॉलर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह और ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और इसके असरात से मुतालिक सूरतेहाल का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क के कुछ इलाकों में एलनीनो की वजह से मामूल से कम बारिश और खुश्क साली के इम्कानी हालात से मुतालिक सूरतेहाल पर लगातार करीबी नजर रख रही है। उन्होंने ज़राअत की वजारत और मुतालिक वजारतों को हिदायत दी कि वो चौकन्ना रहें और रियासती सरकारों के साथ तालमेल रखें ताकि किसानों को सही फसल बोने के बारे में मशवरा दिया जा सके।

0: नॉकआउट मैच में मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरी T20 बैन अल-अक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था बारिश के सबब रोक देना पड़ा था। तीसरा मैच 7 जुलाई नॉटिंघम में खेला जाएगा। ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन आखिरी 2 मैचों की मेजबानी करेंगे। ये सीरीज 11 जुलाई को खत्म होगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैन अल-अक्वामी मैच की सीरीज खेली जाएगी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में होने वाली मीटिंग में हुकूमत ने 52,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दी, जिसे मुसल्ला अफवाज की सलाहियत बढ़ाने और उन्हें जदीद तरीन हथियारों से लैस करने की सम्त में बड़ा कदम माना गया है। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजाना प्रताप ने वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान को जली सुर्खी के साथ शाया किया है, जिसमें वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को 2 टोक अल्फाज में बता दिया है कि पहले दहशतगर्दी का खात्मा होगा, फिर सिंध तास आबी माहदे पर बात होगी। आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूम के आगाज की खबर पर आज के बेशतर अखबारों ने तवज्जो मरकूज की है, जिसमें शिरकत के लिए भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। आखिरी रसूम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में अदा की जाएंगी।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीन फील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एलनीनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्क साली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
4: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
3: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
4: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार।
3: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूर्य

0: युगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानी

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बोधगया में आज से शुरू हो रहा है राज्य स्तरीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में हुए शामिल। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में पूर्णिया देश भर में पहले स्थान पर, सीतामढ़ी भी शीर्ष 5 में शामिल। और प्रदेश में मानसून की कम सक्रियता से गर्मी और उमस बढ़ी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। गया जिले के बोधगया में आज से 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे।
1: बोध गया के कन्वेंशन सेंटर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय, अन्य न्यायाधीश और सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक समेत 200 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। यह सम्मेलन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड और बिहार जुडिशियल एकेडमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें नए आपराधिक कानूनों की बारीकियों और उन्हें लागू करने में पुलिस तथा न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय पर मंथन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए बोधगया से धर्मवीर भारती।
0: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। गौरतलब है कि यह अंतिम संस्कार 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में खामेनेई की मृत्यु के बाद हो रहा है। अंतिम संस्कार कार्यक्रम अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में पूर्व नेता को सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पूर्णिया जिले के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग की त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग में पूर्णिया ने देश के 112 आकांक्षी जिलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं सीतामढ़ी जिला इस सूची में देश भर में तीसरे स्थान पर है। अररिया 108वें स्थान के साथ आखिरी 5 जिलों में शामिल है। रैंकिंग

ने स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, कौशल विकास और आधारभूत संरचना जैसे प्रमुख सूचकांकों के आधार पर विभिन्न जिलों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अंक दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के नियमों में संशोधन किया है। इन भत्तों के लिए अब केंद्र सरकार की दरें लागू होंगी। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब सरकारी काम से विदेश जाने वाले कर्मचारी को यात्रा भत्ता विदेश मंत्रालय द्वारा तय दरों के अनुसार मिलेगा। नए नियमावली के तहत बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 के महत्वपूर्ण प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार की निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान होता था। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और नवगठित राजकीय डिग्री कॉलेजों में संविदा के आधार पर 3,687 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि अभ्यर्थी समय

0: दरों के अनुसार भुगतान होता था। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और नवगठित राजकीय डिग्री कॉलेजों में संविदा के आधार पर 3,687 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल से 15 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए 20 और 27 जुलाई को साक्षात्कार लिया जाएगा। सभी प्रक्रियाओं के बाद 7 अगस्त तक चयनित अभ्यर्थियों को योगदान देना होगा। श्री चौधरी ने बताया कि यह नियुक्ति 6 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में होगी। लोक भवन ने स्पष्ट किया है कि पीएचडी अध्यादेश और विनियमन के तहत पीएचडी गाइड के सेवानिवृत्त होने पर भी गाइड 70 वर्ष की उम्र तक शोधार्थी को शोध करा सकेंगे। नए अध्यादेश के नियमों के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष से कम का समय शेष है, वे अपने पर्यवेक्षण में नए शोधार्थियों को पंजीकृत नहीं कर सकेंगे। लोक भवन ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र पहले से इन शिक्षकों के अधीन पंजीकृत हैं, उनका शोध कार्य नहीं रुकेगा। ऐसे शिक्षक 70 वर्ष की आयु तक सह पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और गुमराह करने वाला है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए हैं। इन ट्रायल में गाड़ियों की ईंधन क्षमता दक्षता पर कोई खास बुरा असर नहीं देखा गया। परीक्षणों में पैसेंजर कारों से लगभग 40,000 किलोमीटर और दोपहिया वाहनों से 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इसमें कहा गया है कि माइलेज पर ईंधन के प्रकार के अलावा गाड़ी चलाने का तरीका, रखरखाव, टायर का दबाव, अलाइनमेंट और एयर कंडीशनिंग का लोड जैसी कई और चीजों का भी असर पड़ता है। केंद्र सरकार ने बैट बीएमएस, एपॉक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम यात्रियों और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सलाह पर पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय की नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि राज्यों के सहयोग से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: मानसून की कम सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकांश स्थानों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। उमस और गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ 38.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
1: राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रखी है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। अररिया पुलिस लाइन केंद्र में आयोजित दीक्षांत समारोह में सिपाहियों को सफलतापूर्वक बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सेवा की शपथ दिलाई गई। पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने पास आउट परेड का निरीक्षण किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भागलपुर के समीक्षा भवन में राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत आम लोगों की समस्याओं की सुनवाई की गई। जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय की अध्यक्षता में लंबित पेंशन भूमि विवाद समेत विभिन्न मामलों से जुड़े 22 आवेदनों का निष्पादन किया गया। इधर भागलपुर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गोपालपुर और इस्माइलपुर प्रखंड अंतर्गत तटबंध के मरम्मत कार्य को लेकर प्रसारित खबर तथ्यहीन और भ्रामक है। जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 30 जून को जिला पदाधिकारी और अपर समाहर्ता आपदा ने स्थल निरीक्षण किया है। इस संबंध में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नौगछिया के अभियंता ने बताया कि 15 जुलाई तक आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ऋचि पांडे ने डुमरा में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय के शुरू होने से सैनिक कल्याण से संबंधित सभी प्रमुख सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी विंग कमांडर यूके त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके आश्रित उपस्थित थे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में प्रदेश में 23 से 26 जुलाई के बीच राज्य महिला फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि ये प्रतियोगिता के मैच पटना, मुंगेर और बेगूसराय में खेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस लीग का उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा नई टाउनशिप में 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। 12 टाउनशिप के विकास पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा हुडको। दैनिक जागरण ने लिखा है लालू राबड़ी को मिलेगी जेड श्रेणी सुरक्षा। दैनिक भास्कर लिखता है सरकार ने 3 चीनी ऐप हटाए, अब बीच रास्ते में बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। प्रभात खबर ने लिखा है 24 घंटे में 2 एनकाउंटर, सीतामढ़ी और वैशाली में 2 अपराधियों को लगी गोली। आज अखबार की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा इंडो नेपाल सीमा पर रखें निगरानी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य में 6,000 करोड़ के निवेश से 3,000 रोजगार के अवसर होंगे सृजित। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बोधगया में आज से शुरू हो रहा है राज्य स्तरीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ईरान के पूर्व सर्व

0: उच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में हुए शामिल। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में पूर्णिया देश भर में पहले स्थान पर, सीतामढ़ी भी शीर्ष पांच में शामिल। और प्रदेश में मानसून की कम सक्रियता से गर्मी और उमस बढ़ी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: हवा से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वो बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवान हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
3: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
6: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
7: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
6: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
5: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
8: अब नन्हे मन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
9: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अगला कार्यक्रम हमारे पटना केंद्र से।
10: उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

दोबारा से अंजुमन में आप सभी का इस्तकबाल है। सामीन हजरात, आपको बता दें कि हर साल जुलाई के पहले हफ्ते के हफ्ते यानी सनिचर के दिन को बैनुल अक्वामी यौम ताउन मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाते हैं। इसका मकसद दुनिया भर में कोऑपरेटिव अदारों के शानदार असरात और समाजी और मुआशी तरक्की में उनके किरदार को उजागर करना है। इसका आगाज 1923 में पहली बार ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की जानिब से किया गया था। सामीन, हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी, फिलहाल आइए अंजुमन को एक प्यारी सी गजल के साथ मुअत्तर करते हैं।

0: तोता वाले, इधर आओ, इधर।
1: लो आ गया, क्या लोगे, तोता या मैना?
0: तोता भी और मैना भी। तुम इसी जगह ठहरो, मैं अपनी मम्मी को बुला कर लाता हूँ। मम्मी, ओ मम्मी।
2: क्या बात है राजू बेटे?
0: मम्मी बाहर आओ ना, तोता वाला है।
2: तोता वाला है? कौन तोता वाला?
0: बाहर आओ ना।
2: अच्छा बाबा, आती हूँ।
0: मम्मी मुझे तोता खरीदो ना, मैं इसे खेलूंगा।
3: छी, तुम मिट्टी के इस खिलौने से खेलोगे?
0: हाँ मम्मी, मैं इसे खेलूंगा। ये तोता मैना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खरीदो ना।
3: नहीं राजू बेटे, ये खिलौने तुम्हारे लायक नहीं है, चलो अंदर चलो।
0: नहीं मैं खिलौने लूंगा, मैं खिलौने लूंगा।
1: जब बच्चा जिद कर रहा है तो खरीद दीजिए, सिर्फ आठ आने का तो है।
3: चुप रह, ये किसी गरीब का बेटा नहीं है जो मिट्टी के खिलौने से खेलेगा। इसका बाप ऑफिसर है, ऑफिसर। चल दफा हो यहाँ से। राजू बेटे चलो अंदर चल। तो
0: नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
3: अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मैं आज ही तुम्हारे पापा से प्लास्टिक का खूबसूरत और कीमती तोते मैंने मंगवा दूंगी। चलो चुप हो जाओ, चलो बेटे चुप हो जाओ।
1: दौलत पर इतना घमंड। तोता ले लो मैना ले लो, तोता ले लो मैना ले लो।
0: तोता मैना वाले, इधर आना। इधर
1: अभी आया। क्या लोगी मुन्नी, तोता या मैना?
0: मैं तो तोता लूंगी। हरे रंग का ये तोता मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितने का है ये तोता?
1: आठ आने का।
0: आठ आने का?
1: हाँ आठ आने का। लेना है?
0: हाँ हाँ लेना है। अगर नहीं लेना होता तो तुम्हें बुलाते क्यों? जरा ठहरो, मैं तो अपनी माँ को बुलाती हूँ। माँ, ओ माँ, जरा बाहर आना।
4: का बात है रे मंजू, काहे को चीख रही है?
0: तोता वाला आया है माँ, तोता वाला।
4: बाहर तोता वाला? कौन तोता वाला?
0: ओफ माँ, बाहर आना।
4: अच्छा अच्छा आती हूँ।
0: माँ मुझे ये तोता खरीद दो।
3: तुझे ये तोता खरीद दूँ? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है?
0: मैं जब भी तुम्हें खिलौने खरीदने को कहती हूँ तुम यही कहा करती हो। तुमने कभी मुझे खिलौने खरीद कर नहीं दिए। आज मैं ये तोता जरूर लूंगी, मैं ये तोता जरूर लूंगी।
3: अच्छा अच्छा, ये तोता कितने का है भैया?
1: आठ आने का।
3: आठ आने का? मिट्टी का ये तोता आठ आने का? हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। नहीं नहीं तोते वाले, जाओ, मैं ये तोता नहीं खरीद सकूंगी। मैं गरीब औरत हूँ, आठ आने मेरे लिए बहुत होते हैं।
0: नहीं मैं ये तोता लूंगी, तुम मुझे ये तोता खरीद दो। आज तक मैंने कभी भी खिलौने से नहीं खेला। मुझे ये तोता खरीद दो माँ, मुझे ये तोता खरीद दो।
3: तेरे भाग में खिलौने से खेलना लिखा होता तब न खेलती। तू तो नामुराद पैदा हुई है। तभी तेरे पैदा होते ही तेरा बाप मर गया और मुझे दर दर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ गया। चल हट, मुझे जाने दे, अभी मालती देवी के घर का सारा काम बाकी है।
0: नहीं हटूंगी, मैं ये तोता लूंगी, मैं ये तोता लूंगी।
3: कह दिया ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये तोता नहीं खरीद सकती।
0: नहीं नहीं, मैं ये तोता लूंगी, मैं ये तोता लूंगी।
3: देख मंजू, जिद न कर वरना पिटाई शुरू कर दूंगी। हाँ
1: आप भी अजीब औरत है, सिर्फ आठ आने के खिलौने के लिए आप इसे इस तरह रुला रही हैं और इसका दिल तोड़ रही हैं।
3: तुम दिल की बात करते हो भैया, और मैं पेट की सोच रही हूँ। आठ आने में कुछ पैसे और मिला दूंगी तो एक पाव आटा आ जाएगा और इस आटे से हम दोनों के पेट भर जाएंगे। अब तुम ही बताओ कि मिट्टी का ये खिलौना जरूरी है कि आटा?
1: हाँ आप ठीक कह रही हैं, हम गरीब लोग अपने पेट की आग तो बुझा ही नहीं पाते, दिल की इच्छा कहाँ से पूरी कर सकते।
3: चल मंजू चल, देर हो रही है।
1: मंजू बेटी इधर आओ, लो ये खिलौने और अपने आंसू पोंछ लो।
3: नहीं नहीं मंजू, ये खिलौने नहीं लेगी।
1: क्यों नहीं लेगी? मैं ये खिलौने अपनी तरफ से दे रहा हूँ।
3: लेकिन तुम मुफ्त ये खिलौने क्यों दे रहे हो?
1: इसलिए कि इस गरीब का दिल न टूटे। यूँ तो गरीब बच्चों के दिल हर कदम पे टूटते रहते हैं, लेकिन इस मामूली से खिलौने के लिए किसी गरीब बच्चे का दिल टूट जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जाओ मंजू जाओ खेलो।
0: तुम कितने अच्छे हो खिलौने वाले, कितने अच्छे।
5: एक तोता ले लो मैना ले लो, एक तोता ले लो मैना ले लो।
6: अरे अरुण तुम इस हाल में, अरे तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो?

0: क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं?
1: तुम शायद जफर हो ना?
0: यार मैं जफर हूँ, जफर तुम्हारा दोस्त। कॉलेज के अपने इस दोस्त को बिल्कुल भूल गए?
1: किसी को भूल जाना इंसान के अपने बस की बात नहीं है दोस्त। वक्त और हालात इंसान को भूल जाने पर मजबूर कर देता है। और फिर ये कि हमारी मुलाकात भी तो 10 साल के बाद हो रही है।
0: हाँ यार वो तो ठीक है, लेकिन मिट्टी के ये खिलौने कांधे पर लाते, गली गली फेरी, आखिर ये सब क्या है?
1: जीने की सजा। तुम मुझे देखकर ये अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि इंसान को जिंदगी कितनी प्यारी है। वो जिंदा रहने के लिए सब कुछ करता है।
0: हाँ यार जिंदगी है ही अजीब गरीब चीज, लेकिन तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बेहद दुख हो रहा है।
1: ये तुम्हारी मोहब्बत है दोस्त, वरना मेरी तरह बहुत से लोग इस देश में इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये देखकर किसी को दुख नहीं होता। अच्छा जाने दो, तुम अपने बारे में बताओ, इन दिनों कहाँ हो और क्या कर रहे हो? अरे यार सूट बूट देखकर तो ये अंदाजा हो रहा है कि तुम कोई लखपति हो या फिर बहुत बड़े ऑफिसर।
0: अरे नहीं यार, अभी मैं अफसर नहीं हुआ हूँ, अभी तो एक मामूली क्लर्क हूँ, लेकिन हाँ लखपति जरूर हो गया हूँ।
1: मामूली क्लर्क हो और लखपति हो गए हो? यार ये बात मेरी समझ में नहीं आई।
0: बात दरअसल ये है अरुण कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, और तुम तो जानती हो कि आजकल रिश्वत का जमाना है।
1: हाँ यार इसी रिश्वत के कारण तो मैं आज तक बेकार हूँ, और नहीं चाहते हुए भी ये खानदानी पेशा अपनाए हुआ हूँ। तुम इस मामले में बहुत खुशनसीब साबित।
0: अरे नहीं यार, खुशनसीबी तो तब होती जब बगैर रिश्वत दिए मुझे नौकरी मिल गई होती। शायद तुम यकीन न करो, इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने 2 बीघे खेत बेचकर पूरे 20,000 रुपए अपने एक अफसर को रिश्वत दी थी।
1: यार इसमें यकीन न करने की कौन सी बात है, आजकल बगैर रिश्वत या पैरवी के नौकरी मिलती कहाँ है? अगर मेरे पास भी पैरवी होती या रिश्वत देने के लिए रुपए होते तो तुम मुझे ऐसी हालत में न देखते।
0: बात तो दुरुस्त है, लेकिन रोजगार भी बुरा नहीं अगर ढंग का हो।
1: ढंग का हो तब ना। तुम इसे रोजगार कहते हो जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती?
0: अरे हाँ यार याद आया, पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक स्कीम चल रही है, तुम इसमें अप्लाई क्यों नहीं करते? फिर ढंग का कोई रोजगार कर लेना, जिंदगी आराम से गुजरने लगेगी क्यों?
1: तुम तो इस तरह कह गए जैसे अप्लाई करते ही लोन मिल जाता। अरे यार वो भी बगैर पैरवी या रिश्वत के नहीं मिलता, मैं कोशिश करके थक गया हूँ।
0: वाकई अजीब जमाना आ गया है, अब तो बगैर पैसे के आदमी एक कदम नहीं चल सकता। खैर तुम इसकी फिक्र न करो, मैं ट्रांसफर होकर इसी शहर में आ गया।
1: अच्छा
0: मैं तुम्हारी नौकरी के लिए पूरी कोशिश करूंगा अरुण। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, किसी दिन तुम्हारे घर पर आऊंगा तो फिर बात होंगी।
1: ठीक है यार जाओ। तोता ले लो मैना।

0: पद्मा, ए बेटी पद्मा, क्या है माँ?
1: अरे सवेरा हो गया, उठ के बाहर के नल से पानी तो ले आ, और हाँ मिट्टी भी गूंद दे।
2: अच्छा माँ, मैं उठती हूँ।
1: अरुण, ए अरुण।
3: क्या है माँ?
1: आज उठेगा नहीं क्या?
3: क्या सवेरा हो गया?
1: हाँ बेटे, अब तो धूप भी निकल आई।
3: अरे धूप निकल आई, और मैं अब तक सोया हुआ हूँ।
1: हाँ रे, कई बार सोचा कि तुझे जगा दूँ, लेकिन ये सोच कर कि तू खुद ही जग जाएगा, नहीं जगाएगा। लेकिन जब धूप निकल आई और तू नहीं जगा, तो मजबूरन ही जगाना पड़ा।
3: ठीक किया माँ, तुमने मुझे जगा दिया, वरना दिन भर मैं सोया ही रह जाता।
1: क्यों, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या?
3: हाँ माँ, अंदर से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जी चाह रहा है कि चुपचाप पड़ा रहूं।
1: दिन भर की मेहनत और सेवा सत्कार कुछ भी नहीं, बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे मैं तो कहते कहते थक गई कि बेटा ब्याह कर ले, बहू ले आ, पर तू है कि मेरी सुनता ही नहीं।
3: अरे माँ, तेरी बहू के आ जाने से क्या मैं बीमार नहीं पड़ूंगा?
1: बीमार पड़ेगा तो वो तेरी सेवा तो करेगी।

0: मुझे सेवा की जरूरत नहीं है मां। जब तक मैं पद्मा का ब्याह नहीं कर देता अपना ब्याह भी नहीं करूंगा, ये मेरा अटल फैसला है।
1: हाँ रे, अब तो वो भी जवान हो गई है, उसको देखती हूँ तो कलेजा कांप जाता है। ये सोचकर परेशान हो जाती हूँ उसका ब्याह कैसे होगा।
0: उसकी चिंता तू काहे को करती है माँ, अभी मैं जिंदा हूँ। पद्मा, ओ पद्मा,
2: भैया
0: मेरे लिए एक प्याज चाय बना दे, और हाँ पतले में पानी लाकर दे दे, कुछ तोते मैंने बना लूँ।
1: क्या तू फेरी करने जाएगा?
0: हाँ माँ, अगर नहीं जाऊँगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा।
1: लेकिन तू तो कह रहा था कि।
0: तू मेरी चिंता ना कर माँ।
2: भैया तसले में पानी रख दिया है।
0: ठीक है। पद्मा जरा दरवाजे पे जाकर देख तो कौन आया है।
2: अच्छा भैया।
3: अरुण जी इसी मकान में रहते हैं ना?
1: जी हाँ, आप कौन हैं?
3: मेरा नाम जफर है। अरुण घर में है?
1: जी है। आप जरा ठहरिए, मैं उन्हें भेज देती हूँ।
3: अच्छा।
1: भैया एक साहब आए हैं, उनका नाम जफर है, तुमसे मिलना चाहते हैं।
0: अच्छा अच्छा, जफर आया है। अरे पगली, वो कोई साहब नहीं, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त। जाजा उसे अंदर बुला ला।
1: भैया ने आपको अंदर बुलाया है, आइए।
3: अच्छा। अरे अरुण, तुम तोते मैंने बना रहे हो क्या?
0: हाँ यार, नहीं बनाऊंगा तो देखूंगा। आओ आओ बैठो, ऐसे चारपाई पर बैठो।
3: हाँ हाँ, बैठता हूँ। ये तुम्हारी छोटी बहन पद्मा है ना?
0: हाँ।
3: जब इतनी सी थी तब देखा था, अब तो काफी बड़ी हो गई।
0: हाँ, तुमने 10 साल पहले उसे देखा था।
3: हाँ। अच्छा, और तुम्हारी माँ और बीवी कहाँ है?
0: माँ पड़ोस में गई है, और बीवी अभी मैंने शादी की ही नहीं।
3: अच्छा, तो कब करोगे, बुढ़ापे में?
0: यार गरीबों की जवानी क्या और बुढ़ापा क्या, जब तक ढंग का कोई काम नहीं मिल जाता और पद्मा की शादी नहीं कर देता अपने बारे में सोच भी नहीं सकता।
3: लेकिन अब तो सोचना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी नौकरी होने वाली है।
0: मेरी नौकरी होने वाली है? अरे तुमने कोई सपना तो नहीं देखा है?
3: मैं सपने देखने का आदी नहीं हूँ अरुण, मैं तो जो कुछ भी देखता हूँ खुली आंखों से देखता हूँ। ये लो, ये फॉर्म ले लो और भरकर कल तक जमा कर दो, एकदम नौकरी हो जाएगी।
0: फॉर्म भर देने से अगर नौकरी हो जाती तो मेरी नौकरी बहुत पहले हो गई होती। यार ऐसे फॉर्म बहुत भर चुका हूँ।
3: ओफो, मैं जानता हूँ नौकरी कैसे मिलती है दोस्त, तुम इसकी फिक्र न करो, सिर्फ फॉर्म भरकर जमा कर दो, बकिया मैं समझ लूंगा।
0: ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो जमा कर देता हूँ, देखता हूँ तुम मेरे लिए क्या करते हो।
3: ठीक है, देख लेना, मैं जा रहा हूँ। फिर किसी दिन आऊंगा तुम्हारे
0: घर। यार ठीक।
2: भैया ये तुम्हारे दोस्त हैं?
0: हाँ।
2: लगता है तुम्हें बहुत मानते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, अपने सगे भाई की तरह, जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे उसी जमाने से।
2: भैया तब तो जफर भाई तुम्हारी नौकरी जरूर लगवा देंगे।
0: अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तेरा ब्याह करूँगा।
2: जाओ जाओ भैया, मैं तुमसे नहीं बोलती। हाँ।
0: अरे तेरा मुंह बंद करने के लिए ही तो मैंने कह दिया था, ताकि तू चुप हो जा और मैं फेरी करने चला जाऊं, समझी?
3: मैं अंदर आ सकता हूं सर?
4: यस, कहिए क्या बात है?
3: सर मैं उसी बहाली के सिलसिले में आया हूं जो आप करने वाले हैं अपने डिपार्टमेंट में।
4: आई सी। देखिए मिस्टर, ये ऑफिस का चैम्बर है, मैं यहाँ इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकता
3: जी,
4: इसलिए आपको जो भी बात करनी हो मेरे घर पर आकर करें। ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड।
3: थैंक यू सर।

0: अच्छा आप आइए आइए, तशरीफ रखिए।
1: थैंक यू सर।
0: हाँ अब कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं?
1: सर वो आपके यहाँ जो वैकेंसी है उसके लिए मेरे एक कैंडिडेट ने आपके डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, उसका इंटरव्यू भी हो चुका है। अगर सर आप
0: उसकी नौकरी हो जाएगी अगर मैं उसका फेवर कर दूं।
1: जी
0: आप यही कहना चाहते थे ना?
1: यस सर।

0: हारून हारून
1: कौन
0: जफर?
1: हाँ।
0: अरे अंदर आ जाओ, आवाज देने की क्या जरूरत है?
2: अभी मैं उसी ऑफिसर से मिलकर आ रहा हूँ यार।
0: कौन ऑफिसर?
2: अरे वही जिसके हाथों में तुम्हारी बहाली है।
0: अच्छा अच्छा, क्या कहा उसने? मेरी बहाली हो जाएगी?
2: हो जाएगी हाँ, अगर
0: अगर क्या? बोलो बोलो, रुक क्यों गए?
2: क्या बोलूं अरुण, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं।
0: आखिर बात क्या है, मैं भी तो सुनूं।
2: क्या बताऊं दोस्त, तुम्हें बताते हुए भी अजीब सा लग रहा है।
0: जफर, ये सब डायलॉग क्यों बोल रहे हो? साफ साफ लफ्जों में क्यों नहीं कह देते कि रिश्वत की रकम ज्यादा है और तुम्हें गैर की खातिर इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते?
2: ये तुम क्या कह रहे हो अरुण?
0: मैं ठीक कह रहा हूँ जफर, पैसे से किसे प्यार नहीं। पैसे के इस प्यार ने ही इंसान को इंसान से और खून को खून से जुदा कर दिया है, और मैं न तुम्हारा खून हुआ नहीं।
2: अरुण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर मुझे तुमसे ज्यादा पैसे से प्यार होता तो मैं तुमसे फॉर्म नहीं भरवाता, बल्कि यूं समझ लो कि उस दिन गली के उस नुक्कड़ पर 10 साल के बाद हमारी मुलाकात हुई थी नहीं होती। मैं तुम पर एक उचटती सी निगाह डालकर आगे बढ़ जाता, लेकिन मेरे दोस्त मुझे पैसे से नहीं तुमसे प्यार है, अपनी दोस्ती से प्यार है।
0: अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे साफ साफ बताओ, ऑफिसर से क्या बातें हुई?
2: कुछ न पूछो यार, रकम तो कुछ भी दी जा सकती है मगर।
0: यार तुम्हारी बातें पहले से कम नहीं, आखिर उसे रकम नहीं चाहिए तो फिर क्या? कुछ तो कहो, आखिर उसे क्या बातें हुई?
2: दफ्तर से छूटने के बाद मैं अफसर के घर गया था और उसने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मैं सख्ती मां गया।
0: फिर पहेली शुरू कर दी तुमने?
2: मैं तुम्हें पहेली नहीं बुझा रहा हूँ दोस्त, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि उस कमीने के लिए घरेलू लड़की का इंतजाम कहाँ से करूँ। कौन लड़की तुम्हारी खातिर अपनी आबरू नीलाम करेगी? कौन?
0: उसे रिश्वत में लड़की चाहिए?
2: हाँ, और वो भी घरेलू।
0: मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जफर, नहीं चाहिए जिसकी बुनियाद एक मासूम लड़की की आबरू पर टिकी हुई हो। मैं जिंदगी भर एरिया रगड़ता रहूंगा लेकिन किसी मासूम लड़की की इज्जत नहीं लूटने दूंगा। यार तुम मेरी नौकरी की चिंता छोड़ दो। हाँ, मैं जिस हाल में हूं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक है।
2: अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आए तो खुद ही उस अफसर से मिल लेना, यह है उसका विजिटिंग कार्ड। अच्छा अरुण,

0: मैं चलता हूँ।
1: मुझे शर्मिंदा ना करो दोस्त, मुझे तुम पर और तुम्हारी दोस्ती पर पूरा नाज है।
2: भैया चाय। तू आ गया बेटे? ये ले कागज, पद्मा ने दिया है, कह रही थी बहुत जरूरी कागज है, भैया के हाथ में ही देना।
1: अरे ये तो अपॉइंटमेंट लेटर है, मेरी नौकरी हो गई माँ।
2: अच्छा?
1: मेरी नौकरी हो गई माँ।
2: तेरी नौकरी हो गई?
1: हाँ माँ, मेरी नौकरी हो गई।
2: हे भगवान, तेरा लाख लाख कृपा है कि तूने मेरे बेटे को नौकरी दिलवा दी।
1: माँ अब तेरे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी और पद्मा की शादी भी हो जाएगी। हाँ माँ, हाँ अब सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन ये लेटर पद्मा को कहाँ से मिला? माँ पोस्टमैन आया था या जफर ने ला कर दिया?
2: पता नहीं बेटा, पद्मा से ही पूछ ले।
1: पद्मा कहाँ है माँ?
2: कमरे में होगी।
1: पद्मा, ए पद्मा, अरे सुनते क्यों नहीं? माँ पद्मा कमरे में कहाँ है?
2: तो फिर कहाँ गई? मेरे आने से पहले तो यही थी।
1: उफ, अजीब लड़की है ये भी।
2: अरे ये चारपाई पर कागज का कैसा टुकड़ा पड़ा हुआ है, देख तो।
1: कौन सा टुकड़ा?
2: ये देख।
1: अरे ये तो पद्मा की लिखाई है।
3: भैया अब मैं तुम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं रही, इसलिए घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेरी मंजिल कहाँ है मैं खुद नहीं जानती, बस तुम लोगों के किसी काम आ गई, इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करना।
1: तूने क्या क्या पद्मा, ये तूने क्या क्या, मैं भी तुझे तो मैंने तो
2: क्या हुआ अरुण? अरे कुछ तो बोल। अरे कुछ बोल
1: बेटा।
2: अरे बोल ना अरुण, हुआ क्या? अरे कहाँ गई पद्मा? अरे मेरी पद्मा कहाँ गई अरुण? अरे बोल, मेरी
1: पद्मा।

दोस्तों, हर साल अवाम तक अपनी कोशिश और कोऑपरेटिव डे की अहमियत को बताने के लिए एक थीम रखी जाती है। इस साल की थीम है पुरअमन दुनिया के लिए तआवुन, यानी कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, जो कि

अगर हम ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर कोऑपरेटिव लोग हैं, तो यकीन जानिए हम सब अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। लेकिन अगर लोग वैसे नहीं हों कि आपको कोऑपरेटिव करें, तो फिर दुश्वार हो, और फिर दुश्वारियाँ जब आती हैं तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, इसलिए हमेशा इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में भी शामिल रखिए कि कोऑपरेटिव एक दिन नहीं है, ये हर दिन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके साथ ही अंजुमन को इख्तिताम पज़ीर करेंगे, लेकिन चलते चलते आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ एक प्यारी सी गज़ल। आइए समात करते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में सजी हुई।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ष पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त है फिल्म संगीत का, तो आनंद लीजिए कुछ सदाबहार फिल्मी नगमों का। सबसे पहले सुनते हैं आशा भोसले को मेरा साया में। गीत लिखा है रजा मेहदी अली खान ने और संगीत मदन मोहन का।

0: फिल्म इजाज़त का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले के स्वर में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया था आर डी वर्मन ने। अब सुनिए फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत। स्वर है लता मंगेशकर का, बोल इंदिवर के, और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: यूं ही तुम

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में कमर जलालावादी का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम था उपकार। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म ओपेरा हाउस का ये गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है चित्रगुप्त ने।

मुकेश एवं लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म फर्ज का गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत कांत प्यारे लाल ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। वक्त है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर को।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। अभी आपने आरती मुखर्जी एवं जसपाल सिंह को सुना, अब सुनिए जगजीत सिंह को।

पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने ये भजन सुना। आइए अब लता मंगेशकर के ही स्वर में एक और गीत सुनते हैं।

लता मंगेशकर के इसी गाने के साथ भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आज की पहली सभा के कार्यक्रम को आगे आइए, हम सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम सुनेंगे संतूर वादन, राग यमन और तीन ताल में निबद्ध, पंडित भजन सोपुरी के द्वारा।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अब आइए श्रोताओं, आनंद लेते हैं मधुर फिल्म संगीत का, और सबसे पहले सुनते हैं फिल्म जीत से लिए गए इस गीत को।

ये गीत था फिल्म फरेब से अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में। इस गीत को संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने और इस गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म जख्मी से आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल आवाज़ में। इस गीत को संगीत निर्देशन दिया था बप्पी लहरी ने और गीतकार थे गौहर कानपुरी।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। आइए आगे भी सुनेंगे नए पुराने मधुर फिल्मी गीत, लेकिन उससे पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, वन संरक्षण के बिना पर्यावरण संतुलन तो खतरे में है ही, बल्कि दिन प्रतिदिन हमारा जीवन भी आसान नहीं रहने वाला। वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मुकेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यावरण विभाग, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 0627222481 और हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार 5 जुलाई 2026 दिन के 11 बजे। तो श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम से, ये कार्यक्रम हेलो जिंदगी हम हर हफ्ते रविवार के दिन प्रसारित किया जाता है, और हम इस कार्यक्रम में हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाकर आपकी जो समस्याएं हैं, उनके सावधानी, उनकी ज़रूरतें, उनमें क्या नियम कानून होने चाहिए, उसके बारे में आपको इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको बताते हैं। तो श्रोताओं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम से जुड़ें और हमारे विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करें। चलिए आइए श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत था जो आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को संगीत दिया है आर डी वर्मन साहब ने और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म किशन कन्हैया से साधना सरगम और मनहर उदास की आवाज़ में।

फिल्म इल्जाम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे अनजान और संगीतकार भक्ति लहरी, और इस गीत को सुरों से सजाया था अमित कुमार और आशा भोसले ने। आइए अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म अनजान से उदित नारायण।

अभी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म डुप्लीकेट से, आवाज़ें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। श्रोताओं, अभी आप आनंद उठा रहे थे फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अब वक्त हो रहा है हमारी श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार का, तो आइए मिलते हैं आपके रेडियो दोस्त आरती से कार्यक्रम नारी संसार में।

स्वागत है आप सभी सखी बहनों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार में। बहनों अभिवादन स्वीकार करें अपनी रेडियो सखी आरती का। श्रोता बहनों कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और खुशहाल होंगी, और इस समय आप अपने सारे कामकाज निपटा कर रही होंगी इंतजार अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार का। तो बहनों अब आपका इंतजार हुआ ख़त्म, मैं आ गई हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने, साथ ही आपको प्यारे प्यारे गाने भी सुनवाएंगे और हर दिन की तरह आज भी आप वार्ता का आनंद लेंगे। पर उससे पहले करते हैं कुछ बातें। बहनों पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य अर्थ प्राकृतिक वातावरण में हानिकारक हवाओं का मिलना, इसके मुख्य कारण वनों की कटाई, वाहनों का धुआं, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक का उपयोग शामिल है। वाहनों का धुआं सड़कों पर बढ़ते वाहनों जैसे बस, कार, ट्रक से निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। कारखानों और फैक्ट्रियां से निकलने वाले हानिकारक धुएं और जहरीले रसायन हवा और पानी दोनों को दूषित करते हैं। साथ ही बढ़ते औद्योगिकरण तथा जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण साथ ही बढ़ते इसका मुख्य कारण है। जी हाँ, वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या के कारण जंगल को काटा जा रहा है, जिसे प्राकृतिक जल धाराएं सूख रही हैं और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। औद्योगिकरण के कारण रासायनिक कचरा से मिट्टी, जल, वायु दूषित हो रहा है। आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण से कई गंभीर रोग उत्पन्न हो रही हैं, जैसे आंखों की बीमारी, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ और हैजा रोग भी उत्पन्न हो रही है। कहने का मतलब है कि वायु प्रदूषण के कारण सांस संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो रही है और

होगी क्यों ना, क्योंकि कारखानों का गंदा पानी और घरों का भी कचरा सीधे नदियों, नालों और तालाबों में बहता है। सखी बहनों, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हम एक कदम उठा सकते हैं, जैसे कि अधिक पेड़ लगाए। पेड़ हवा को साफ करते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। साथ ही प्लास्टिक की थैलियों की जगह आप कपड़े की थैलियाँ यूज कर सकते हैं, यानी कि इस्तेमाल करें। बिजली का भी ध्यान रखें, फालतू की बिजली बर्बाद ना करें। कचरा कभी भी इधर उधर ना फेंके, इसका भी ध्यान रखें। कचरे को यहाँ वहाँ ना फेंके या फिर यहाँ वहाँ ना जलाए, कचरे को डस्टबिन में ही डाले। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है और पर्यावरण सुरक्षा के लिए छोटे छोटे प्रयास करने से बहुत कुछ बदल सकते हैं, जैसे पानी की बचत करना, स्वच्छता का भी ख्याल रखना, बिजली बचाना। साथ ही परिवार के हर सदस्य साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए और उसका देखरेख भी करे। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले सुनवाते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, वन संरक्षण के बिना पर्यावरण संतुलन तो खतरे में है ही, दिन ब दिन हमारा जीवन भी आसान नहीं रहने वाला है। वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मुकेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222481। हमारा टेलीफोन नंबर है 9430022।

9353। एक बार फिर से हमारा नंबर नोट करें, 0627222841। हमारा टेलीफोन नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार 5 जुलाई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। तो बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। वार्ताकार है हमारी रेडियो सखी रजनी जी।

वेणु वार्ता से पहले हम आपको अपने कार्यक्रम में लेकर चलते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां विकास की गूंज खेतों, गांवों और शहरों में सुनाई देती है। वाहनों बहनों, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पे। हर साल जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन ये दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है सहकारी समितियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, आपसी सहयोग, समानता और सामाजिक न्याय जैसे चीज़ों को बढ़ावा देना। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता के क्षेत्र में एकजुटता बढ़ाना है। सहकारी उद्यमों के योगदान को उजागर करता है, साथ ही ये एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पहली बार 1923 में मनाया गया था और 1995 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। ये इस बात पर जोर देता है कि कैसे सहकारी समितियों लोगों को एक साथ काम करने और एकजुटता को बढ़ावा देने में मदद करती है। सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर काम करना या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर प्रयास करना। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवा देते हैं वार्ता। तो चलिए आइए सुनिए एक प्यारा सा वार्ता।

नमस्कार श्रोता बहनों, आप सुन रहे हैं एक छोटी मुलाकात अंक नारी संसार कार्यक्रम में। आज का विषय है बच्चों को दें फाइबर युक्त खाना, तंदुरुस्ती की थाली में सेहत का रेशा। बहनों, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहे, खेले कूदे और हर काम में आगे रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके स्वास्थ्य की इस दौर में एक छोटा सा लेकिन जरूरी खिलाड़ी होता है फाइबर। जी हाँ, फाइबर जिसे हम रेशा भी कहते हैं, यह भोजन का वह हिस्सा है जो हमारे शरीर में पूरी तरह पचता नहीं लेकिन पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। फाइबर बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले यह कब्ज से बचाता है, यह भूख को संतुलित रखता है, यह बच्चों के पेट को हल्का साफ और सक्रिय बनाए रखता है, साथ ही शुगर और मोटापे के खतरे को भी कम करता है। तो सवाल उठता है कि हम बच्चों को फाइबर कैसे दें, तो आइए जानते हैं फाइबर पंच थाली के 5 सुपर स्टार्स। हरी सब्जियां जैसे पालक, भिंडी, मेथी, इन्हें पराठे में, कटलेट में या सूप में शामिल करके आप परोस सकती हैं, बच्चों को खिला सकती हैं। ताजे फल जैसे सेब, अमरूद, आम, केला, पपीता, छिलके सहित फल ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये सभी आप फल टाइम टू टाइम देते रहिए बच्चों को, खासकर सुबह के समय में बच्चों को फल

खिलाना चाहिए। साबुत अनाज में आप रागी, बाजरा, जौ, गेहूं के बजाय मल्टीग्रेन आटे की रोटी दें, इससे बच्चे को फाइबर मिलता रहेगा और बच्चे को पोषण मिलता रहेगा। दाल और चने, मूंग दाल, चना, राजमा, बच्चे इनसे बने चीले, टिक्की या स्प्राउट को अधिक पसंद करते हैं, तो आप जायकेदार ढंग से बना करके परोस सकती हैं और बच्चे को खिला सकती हैं। थोड़ा सा उस पे चाट मसाला छिड़क के और भी आप जायकेदार बना सकती हैं। नट्स और बीज की बात करें तो जैसे कि अलसी, चिया बीज, अखरोट, इन्हें दूध या दलिया में मिला करके आप इसे इनको खिला सकते। बहनों, एक बात याद रखें, फाइबर जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है पानी। अगर बच्चा फाइबर ले रहा है तो उसे दिन भर में 5 से 6 ग्लास पानी जरूर पिलाना चाहिए। और हाँ, बच्चों को खाना देने का तरीका भी मायने रखता है। अगर आप रंग बिरंगी थाली सजाकर थोड़े से खेल या कहानी के साथ खाना परोसे तो देखिए कैसे आपका बच्चा खुद खाने का जिद करेगा। तो चलिए आज से एक संकल्प लें, बच्चों की थाली में फाइबर हो भारी, तभी तो होगी सेहत हमारी। इसी अंक के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बच्चों को दे फाइबर युक्त प्यार भरी थाली। नमस्कार।

तो बहनों, आपको कार्यक्रम कैसा लगता है और हम इसे कैसे बेहतर बनाएं, ये हमें पत्र के माध्यम से लिखकर भेज सकती हैं। हमारा पता है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। इसी के साथ दीजिए अपनी सखी आरती को विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार बस कुछ ही देर में, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

कार्यक्रम विवरण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें और साथ ही साथ आपको हमारे एक साप्ताहिक कार्यक्रम के विषय में भी जानकारी देंगे। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद दोपहर के 1:15 पर, दोपहर के 2:30 पर आप फिर से आनंद लेंगे फिल्म संगीत का, और दोपहर के 3:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत का हमारा कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे आशा भोसले के स्वर में मराठी गीत। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम में शाम 5:00 आप सुनेंगे युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत, और शाम 6:30 पर हमारे ग्रामीण श्रोता भाइयों का कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण किया जाएगा। चर्चा का विषय होगा गांव में अतिथि सत्कार एक पारंपरिक पहचान, और शाम 7:00 आप सुनेंगे हमारे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी। चर्चा का विषय होगा मिर्च की आधुनिक खेती।

श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि के 8:15 पर विज्ञान पर आधारित हमारा कार्यक्रम विज्ञान कार्यक्रम, निर्माण एवं वाचन कल्याण कुमार, प्रस्तुतकर्ता असद दाऊद। रात्रि के 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम साहित्य भारती का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। और रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

तो श्रोताओं, ये तो थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको साप्ताहिक कार्यक्रम के विषय में जानकारी दे दें। श्रोताओं, वन संरक्षण के बिना पर्यावरण संतुलन तो खतरे में है ही, बल्कि हमारा जीवन भी आसान नहीं रहने वाला। वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मुकेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर है 0627222481 और हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार 5 जुलाई 2026 दिन के 11 बजे। तो श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर उस नजर

फिल्म शहीद का यह गीत अभी आप सुन रहे थे हमारे देशभक्ति के गीत के क्रम में मोहम्मद रफी की आवाज में। आइए अब वक्त हो चला है फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का, तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद की ओर और सुनते हैं आपके पसंदीदा गीत आपकी रेडियो दोस्त चंदना।

फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद आज लेकर आया है आपकी ढेरों पसंदीदा गीतों को, और मैं आपकी रेडियो दोस्त लेकर आ गई हूँ आपको सुनवाने उन प्यारे से सुरीले मधुर गीतों को। तो कार्यक्रम आपकी पसंद में आपकी इस रेडियो दोस्त चंदना का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, और चलिए चलते हैं इस सुरीले सफर पर इस पहली पसंद के साथ। और ये पसंद है फिल्म लोफर से आशा भोसले की आवाज में। इस गीत के गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने, और इस गीत को सुनना पसंद किया है डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका गजभैये, बेबी अंशिका तन्मय गजभैये। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राजसी राजेश। इसी गीत को सुनना पसंद किया है गांधी चौक रोपर पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर बिरख, जैतक बिरख, मिक्का बिरख। और साथ ही साथ इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से यूनिस खत्री, शफी खत्री, इर्देश खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिफ मीना और हाशिम मीना। साथ ही साथ यही गीत सुनना चाह रहे हैं कैनेडा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म लोफर से।

अगली पसंद है फिल्म शर्मिली से आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी, इस भी गीत को लिखा है नीरज ने और संगीत दिया है SD बर्मन ने। तो और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं बिहार कॉलोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाश वीर राजपूत, डोंडी लोहारा बलोद से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रतीप, प्रिंकी और प्रमिला प्रतीप, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं, पुणे से प्रियंका आर्य, पंकज बरोडे, बाबा साहेब बोर्डे, मीनाक्षी चरपे इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं, श्रद्धा नंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, प्रमोद, पंकज, रोहित और मोहित ये हैं गोला बाजार बक्सर से। तो आइए सुनते हैं आपकी ये पसंद फिल्म शर्मिली से।

फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। और अगली पसंद है फिल्म खिलौना से बहुत ही खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में, और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत को सुनना पसंद किया है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, रूबीना वसीम, आरिज।

वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजमिल बाबू, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अहिबा नाज, साजिया शाही नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख, कोकिलवाड़ा और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख, नुजरत जहां नाज, सेठ टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज, नुजरत जहां नाज। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पिथरिया पहरवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और नव्या सिंगरौल। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं फुटानी चौक से नारायण स्टेट भाई फटफटिया, नारायण स्टेट से भाई फटफटिया जा, उदयकांत ठाकुर, अमन पराशर, बेबी आराध्या, ललन मिश्रा, मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से बी के मिश्रा, गुंजन पराशर, डब्बू मिश्रा, छोटू मिश्रा और लल्लू सुरगनैया। साथ ही साथ इसी गीत का पसंद आई है औरंगाबाद से ये है राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। तो आइए सुनते हैं ये गीत खिलौना से।

से किशोर कुमार की आवाज में, और इस गीत को लिखा है योगेश ने और संगीत दिया था आदि रानी साहब ने। और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे थे बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुनत, महाजैन दीपक मुनत, चेतना नहट्टा, दीक्षा कोश मुनत, दिलीप सिंह पवार, और इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे थे। महेश साड़े मलकालपुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धारे, बाल्मीकि धारे, मीनाक्षी धारे, स्वप्न धारे और अजय टोटकर, झंझारपुर लंगड़ा चौक से हरेराम पासवान, जयपुर संजय पासवान, काजल कुमारी और रानी कुमारी, और पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। तो आइए श्रोताओं अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म शौकीन से आशा भोसले की आवाज़ है। गीतकार हैं गुलशन बाबरा और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने, और इस गीत को सुनना चाह रहे हैं महादेव घाट अमरेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मुकलेश ठाकुर, तारनी, सूरज ठाकुर, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। इनामत टोल भगवतीपुर बिहार से नितिन सैनी, कंचन सैनी, रिंकू सैनी, बबीता सैनी, कोमल नफिया, सुधा सैनी, ज्योति पार्वती, त्रिपुरारी सैनी, संतोष कुमार सैनी, रासो देवी, रुचि कुमारी और एस के सैनी। प्यारे लाल मनोहर टावर चौक आशापुर से प्यारे लाल मनोहर, उत्तम लाल मनोहर, दुलारे लाल मनोहर, सुंदर लाल मनोहर और प्रेम लाल मनोहर। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म शौकीन से।

तो श्रोताओं, फिल्म संगीत के आधारित इस कार्यक्रम आपकी पसंद में के इस सफर में हम चलते चलते अब आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, और इस आखिरी पड़ाव में इस सफर का ये आखिरी गीत सुनवाते हैं फिल्म खट्टा और मीठा से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। और इस गीत को सुनना पसंद किया है बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गणवेनकर और धीरज सवेर सरे। पटेल नगर पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजुरिया, गीता रानी जाजुरिया, गगनदीप जाजुरिया, बीबी आरजू जाजुरिया। साथ ही साथ नूर महल महसौल से हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अहिबा नाज, अरहान बाबू, हमजा और मंजिल बाबू। जतू का किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना राज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, सबना आलम और चांदनी नाज। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राम शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ और साइना शर्मा। बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष कुमार मुखिया, रानी अनिता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अमरेंद्र। और इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं लेवा खेल चांदूर मोहल्ला चांदूर विश्वास से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, देविका कुमारी चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और खुशी वाणी। तो आइए सुनते हैं ये आखिरी गीत फिल्म खट्टा मीठा से।

0: के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय, अन्य न्यायाधीश, सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक समेत 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यह सम्मेलन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ट और बिहार जुडिशियल एकेडमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में गिरफ्तार भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव मुमुक्षु कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत यह कार्रवाई की है। मुमुक्षु कुमार चौधरी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अगला आदेश जारी होने तक उनका निलंबन प्रभावी रहेगा। पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आरोप में स्थानीय थाने में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 27 लोगों के खिलाफ नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपितों ने निर्माण कार्य रुकवाया और मौके पर मौजूद कर्मियों के साथ मारपीट की। राज्य सरकार ने झारखंड से बिहार में प्रवेश करने वाले अवैध और ओवरलोडेड गिट्टी लदे वाहनों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों की सघन जांच करने और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि ओवरलोडेड वाहनों से सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है और सरकारी राजस्व को भी नुकसान होता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ समाप्त होता है हमारा ये फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। हमें इसी तरह से खत लिखते रहिए। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड 8460004।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आज से 3 नए आपराधिक कानूनों

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से श्री यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अररिया के जिलाधिकारी विनोद तोहर ने नेपाल की नागरिकता रखने वाली 10 महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया के तहत शपथ दिलाई। इन सभी महिलाओं का विवाह अररिया जिले में हुआ है और वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ अररिया में निवास कर रही हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। पूर्णिया के ढेंगरा घाट में सबसे अधिक 28.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। मुजफ्फरपुर जिले के सिवायपट्टी थाना क्षेत्र में आज तड़के अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। व्यवसायी रोज की तरह डेरा चौक स्थित मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे, तभी हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना के बेउर में पिछले दिनों एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि भूमि विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया था। वैशाली जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ लाभुकों के लिए घर घर खाद्यान्न पहुंचाने की नई व्यवस्था शुरू हो गई है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने हाजीपुर सदर प्रखंड की इस्माइलपुर पंचायत के हरोली गांव से इस योजना का शुभारंभ किया।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं रोजगार सूचना। रोजगार सूचना में आज लेखा परीक्षक और सहायक 2026, कुल पद 1829, आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 3/8/2026 तक। अभ्यर्थी न्यूनतम उम्र सीमा हो 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर से प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार सूचना में आगे है JKSSB 2026, कुल पद 130, आवेदन शुरू होने की तिथि 22/6/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि है 21/7/2026। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा कुछ नहीं और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर ले सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2026, कुल पद 607, आवेदन शुरू होने की अंतिम तिथि 4/6/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि है 3/7/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष।

बैंक ऑफ इंडिया 2026 कुल पद 779। आवेदन शुरू होने की तिथि है 30/6/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि है 20/7/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल और अधिकतम उम्र सीमा 45 साल होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in से प्राप्त कर सकते हैं। SBI 2026 कुल पद 1500। आवेदन शुरू होने की तिथि है 18/6/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि है 8/7/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष। विस्तृत जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in से प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार सूचना में आगे, रेलवे RRB टेक्नीशियन एग्जामिनेशन 2026 कुल पद 6557। आवेदन शुरू होने की तिथि है 30 जून 2026 से आवेदन की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। न्यूनतम वर्ष हो 18 वर्ष और अधिकतम वर्ष 30 वर्ष। टेक्नीशियन ग्रेड 3 और 33 वर्ष टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल। भारत संचार निगम में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की नियुक्ति कुल पद 100। आवेदन शुरू होने की तिथि है 4 जून 2026। आवेदन की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2026। तो श्रोताओं, रोजगार सूचना में आज बस इतना ही। हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार में समाचार आप कुछ ही देर में, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज CG सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।

0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर

0: केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ की जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 KHz पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार के बाद आइए फिर से आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे डुप्लीकेट से। आइए अगला गीत सुनवाते हैं, फिल्म बीवी हो तो ऐसी से।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा से। अभी आप सुन रहे थे फिल्म इल्जाम से लिए गए गीत डुप्लीकेट, बीवी हो तो ऐसी, टक्कर और दिव्य शक्ति। गाय कलाकार थे आशा भोसले, अमित कुमार, कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति, अभिजीत, अनुराधा श्रीराम और अलका याग्निक। आइए, अब प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत का हमारा कार्यक्रम। सुनते हैं मराठी गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे मराठी गीत आशा भोसले की आवाज में, प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो रहे हैं, यहीं समाप्त होती है आज की हमारी पहली सभा। हम अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे, तब तक लिए आज्ञा दें।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस, बिमला, सतीश, अनेजा और उनके परिवार वाले। ये खत आया है शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी, पार्वती, राधा चंद्राकर का, और जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये दो गाना।

0: इस युगलगान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
0: दोस्तों आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
1: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मधमाती ध्वनि।

0: नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
1: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सकें।
0: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
2: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
3: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
2: ओह, हमारे साथ ये यज्ञसेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीरसेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञसेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
0: जिधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंगवंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था, और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ ही लिया। संगीत शाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राज प्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी, उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का

कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: महाराज देखा
1: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से इसका चित्र नहीं बनाया।

0: मालविका अब तू जा।
1: ठहरो ठहरो ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
2: महाराज जी भर कर
3: मैं क्या पूछूंगी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
4: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका हैं महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
0: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
1: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
3: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
4: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
1: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
0: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
1: दे दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
0: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अब इसे अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
3: जो आज्ञा।
1: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
4: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया हो।
1: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि व्यक्ति ही अपने पास ही औषधि भी दे।
0: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
4: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
0: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्य का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: ओह आर्यपुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
0: महाराज, सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
1: मित्र, सच पूछो तो विधाता ने सहस सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया? मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
0: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवा की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
1: मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सके।
0: महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
1: हम घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रनिवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम, सोचा कोई उपाय?
0: उपाय उपाय, हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
1: हम उसे मालामाल कर देंगे।
0: बकुला वलिका, समझ गई ना, यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ
4: आई गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ,
5: अरे मालविका, तुम आ गई।
6: दासी सेवा में उपस्थित है देवी। पांव में क्या बहुत कष्ट है?
5: इस दुष्ट गौतम के नटखट बन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
6: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
5: तो तुम बकुला वालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
6: जो आज्ञा।
5: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।
0: ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। तुम देखिए तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
1: हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र, इस मधुर कोकिल सर द्वारा वसंत ऋतु हमसे मानो पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा से नहीं पा रहे हो क्या? ये प्रेम की पीड़ा, हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रोग। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं

0: हुए उतने ही कठोर होते हैं।
1: महाराज तनिक धीरे से काम लीजिए, आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
0: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा, आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा।
1: चलिए झूला गृह की ओर।
0: झूला गृह की ओर?
1: हाँ हाँ, अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वे वसंत आगमन के उपलक्ष में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं, और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
0: हाँ मान तो ली थी, परंतु
1: अरे कैसी अचरज की बात है कि
0: क्या हुआ।
1: उधर देखिए महाराज, उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है।
0: क्या क्या मालिका आ रही है?
1: और क्या,
0: तो समझो अब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही ये जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
1: लीजिए, वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
0: आहा, ये सीधे साधे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हें गिने फूल बचे रह गए हों।
1: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज।
0: मित्रों को ऐसा ही सुझा करता है। अरे मालिका अपने आप कुछ कह रही है, आओ मित्र हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
1: लेकिन महाराज अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
0: मित्र हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
2: दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ दे तू मिलने की आशा। अरे हृदय तू ऐसे की चाह क्यों करता है, जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है और ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। पूछे यूं सताकर तुझे क्या मिल रहा है।
0: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं, अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है।
1: महाराज आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायका बकुला वल्का उसके पास पहुंच गई।
0: अरे ये बकुला वल्का साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है।
1: अरे आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती, और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
0: अच्छा, तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
1: और नहीं तो क्या आपके लिए।

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं।
1: लो सखी। हृदय, ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी, तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
0: वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
1: अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो। हाँ।
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची।

0: ही देखती है, मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई खोपलें फूट आई हो।
1: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
0: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य हैं।
1: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप ही अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
0: मन चाह भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
2: अरे निपुणिका, आर्यपुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
3: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे, आइए उन्हें ढूंढें।
2: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
3: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेमगुलता मंडप में बैठे।
2: अच्छा चल।
3: अरे ये क्या स्वामिनी?
2: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
3: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
2: अरे क्या कह रही है?
3: देवी तनिक उधर देखिए, उधर वहां अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
2: हैं? मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
3: मैं समझती हूँ कि पांव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूप पर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
2: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
3: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
2: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए, कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये साथ सिंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है।
4: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
5: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
4: सच सच कह दूं, ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
5: सच? बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
4: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ
5: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
4: आहा हा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है।
5: लाओ अपना दूसरा पैर तो।
4: मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
5: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
4: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ
5: मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए।
4: मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
5: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
4: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है। हाँ
5: क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
4: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
5: सच? पर सखी उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
4: अरे पगले, भौरों के डर से कोई कानों में आम्र मंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दूं? लो अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो।
5: अरे क्या सोच रही हो? सखी यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
4: अरे मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी

0: नहीं अधिक सुगंध दूंगी।
1: वाह बकुला वालिका वाह। मित्र बकुला वालिका ने बड़ी चतुराई से मालिका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
2: महाराज उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
1: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं, ये अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
2: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके

0: भूला तो दोष इनके चरणों का नहीं, ही अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
1: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
2: अरे गौतम, ए महाराज भी
1: क्यों रही बकुला वालिका, सब कुछ जानती हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
2: आर्य गौतम, मैं आर्य, इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं।
0: अच्छा, तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़कर उठो।
1: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
0: क्यों भद्री, तुम्हारा ये किसलय कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
2: महारानी को जाकर सूचना दी कि उनके आज्ञा अनुसार हमने।
3: अरे पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
0: भद्री, तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
4: मालविकाग्नि मित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर

0: कि जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
1: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती
0: है। बिल्कुल।
1: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी, वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
0: हाँ हाँ।
1: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
0: बिल्कुल।
1: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ। हाँ। और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है, क्योंकि दोनों गाने वही थे।
0: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की,
1: नहीं,
0: थी
1: नहीं,
0: कि चुनरिया पर ही आपको
1: नहीं,
0: गीत लिखा?
1: मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
0: आपस का
1: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5000 गाने मेरे रिलीज हैं तो 5000 चुनरिया तो नहीं है। और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग, तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: वो जगह ही रहता था, मतलब और फुल तैयार, बाजा रखो, हाँ बोल, हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के? हाँ। ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया।
0: और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए लेकिन मैंने सीखा बहुत, और सीखने की हद यहां तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंद्र जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंद्र जैन जी के पास गया। अब देखिए दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी, जी।
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है लेकिन चलो मैं बात करता हूँ।

0: मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया। तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं। हाँ? इसमें क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ?
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया। और ये उनका बहुत बड़ापन था, उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया। और मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना चाहिए। उसके बाद मैंने दादू के साथ तीन पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी। मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंद्र जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया। और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले, अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह।
0: तो इतने ग्रेट थे, वरना कहाँ रविंद्र जैन और कहाँ सुधाकर शर्मा, क्यों मेरे गाने लेंगे वो। देखिए रविंद्र जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे कभी भी बांद्रा, जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंद्र जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते। तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल,
1: अच्छा,
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में लाके दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं।
1: हाँ।
0: आए हैं,
1: भूख
0: लगी होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत
0: खूब। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ।
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। और मैं कहा सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा,
0: मैं बेचैन हो गया। हमने कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया।
1: अच्छा।
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सिलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहां से हटा दीजिए आप, और इसको यहां लगाइए और इसको यहां लगाइए
1: जी।
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया, और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है।
1: अच्छा, धरती की हलचल।
0: हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था, वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है। ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का। और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार विजू।
0: पहली बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था। तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं, क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लकी सब में है ना।
1: हाँ।
0: दावा नहीं कर सकते
1: जी,
0: अपन
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मैंने ठीक है, मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी।
0: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा। मैंने उनके घर फोन लगाया, मिसेज को वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था। तो ये इस गाने की कहानी है, बहुत ही खूबसूरत गाना था
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बना,
0: और मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ। ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया, उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों

0: भी नहीं सोच सकते और कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये बातें ना जानने को मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे, आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
1: मंदाग्नि जी, आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
0: अच्छा।
1: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूं, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा और हम लोग काम करेंगे
0: जी।
1: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो मैं गा रहा हूं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और वो ट्यून जो है ना गा गा के बनाते हैं। ट्यून जो है ना ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है।
0: अच्छा।
1: साज उनका मोहताज है।
0: अरे वाह।
1: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
0: अरे वाह।
1: तो ये गीत की कहानी ऐसी है कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
0: बर्दाश्त।
1: लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे?
0: बिल्कुल।
1: बोले मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए, हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे बर्दाश्त के कितने हैं,
0: बहुत।
1: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
0: क्या बात है।
1: फिर मैंने दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
0: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है, और क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
1: ये गाना एक बार सुनाइए आप।
0: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलता था यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है।
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है, जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कुछ चीज को क्रिएट कर रहे हैं।
1: लेकिन नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है। तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपके साथ करूंगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा,
1: वक्त दूंगा, तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था, तो उसमें अगम निगम साहब, वो
0: सोनू निगम जी के पिताजी
1: जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है, इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में। एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते हैं, उसमें कोई
0: बहुत बड़ी बात आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार, उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने

0: गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है आपने
1: नहीं,
0: और
1: नहीं, नहीं,
0: आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना?
1: जी,
0: तो ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
1: ये मुझे भी नहीं पता, वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
0: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत है, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़े आपके गीतों को?
1: नहीं नहीं, अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है, जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक, बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है मैं हमेशा जहां भी जाता हूं तो ऐसे ही मैं बोलता हूं हाँ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है, तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
0: वो लिख
1: उसको
0: लेता
1: ले
0: है।
1: जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
0: अच्छा।
1: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता।
0: अच्छा।
1: हमने फायदा क्या इसका, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है। तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो गया अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सक पका गया। और वो इतने ग्रेट हैं वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूं, तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले, तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा।
0: तो हाथों हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
1: बिल्कुल लिखवा,
0: सिचुएशन बतानी पड़ती है।
1: हाँ, जो भी सिचुएशन बताएंगे
0: बहुत खूबसूरत
1: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
0: हर रिकॉर्डिंग में
1: मैं रहता हूँ। और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है, मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीजें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती है।
0: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, संगीतकार है, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
1: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी, लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए, क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
0: अच्छा।
1: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद किया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूं कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
0: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
1: जी, मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए, ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी।
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं। इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी।
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणे का हूं और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी हमारे केसी मालू जी की है,
0: बिल्कुल,
1: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता। रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से।
0: ओडली,
1: ओडली
0: म्यूजिक, चुनरिया आई,
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी।
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
0: अरे वाह।
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी, मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए।
0: अच्छा।
1: और हम लोग घर पे गए तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
0: जिनका जिक्र भी आप
1: जिक्र किया। तो मैंने कहा यार सतीश मेरे लिए इतना काम कर दो यार, उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं।
0: अच्छा।
1: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल

0: कभी हम सोचते भी है ना, जैसे सतीश जी कई बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी, मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूं, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूं, जो है वो है।
1: जी जी
0: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या पैसा।
1: हाँ
0: तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो
1: क्या
0: मेरे को
1: बात
0: यकीन नहीं हुआ
1: बात
0: कि
1: करो,
0: अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 रुपया
1: ₹1
0: नहीं
1: नहीं
0: लूंगा।
1: लूंगा। वाह अद्भुत
0: ये बहुत ही अद्भुत,
1: बात।
0: और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है, जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदरकांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदरकांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा,
1: हाँ हाँ सही
0: लेकिन
1: बात
0: मेरी
1: है।
0: औकात ही क्या, मैं क्या
1: हाँ
0: करूंगा, कुछ भी नहीं कर
1: उनकी
0: पाऊंगा।
1: महानता देखिए आप अमित
0: लेकिन
1: कुमार
0: उनकी
1: साहब की।
0: ग्रेटनेस देखिए, हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं, और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं,
1: जी
0: लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ, और
1: बहुत
0: मैं ईश्वर से दुआ करता हूं
1: सैल्यूट
0: कि
1: है उन्हें।
0: बस वो खुश रहें स्वस्थ रहें एकदम।
1: बिल्कुल
0: ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: उन्होंने क्लियर किया
1: कि मैं कुछ नहीं लेने
0: मैं कुछ
1: वाला।
0: नहीं लेने वाला।
1: बहुत बड़ी बात सर,
0: तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई हैं और मैं भावुक हो गई हूं।
0: नहीं
1: एक
0: नहीं
1: गाना पहले सुन लेते
0: एक
1: हैं।
0: गाना हम लोग सुनते हैं, मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी।

0: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो मैं, लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना,
0: गाना नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिर। तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर
0: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला।
1: अरे
0: गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: नहीं, आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
0: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
1: बहुत सुंदर,
0: और वो हो गया।
1: सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है, फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को, क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
0: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं एआई से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
1: अच्छा, लेकिन
0: बट एआई जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
1: सबसे बड़ी बात,
0: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नई नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं, ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूं, तभी आज तक काम कर रहा हूं। बट यहां पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोड़ पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फोड़ पने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
1: बहुत प्यारे तरीके,
0: लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के

0: सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, पांच पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और जी जी। ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
1: वो कालजयी हो गया।
0: हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता है।
1: जी, जी।
0: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
1: जी
0: देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास, वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूं तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं, समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे ही आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। प्रस्तुत है युवाओं के लिए युवावाणी कार्यक्रम।

युवा दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज कार्यक्रम में हमारी आपकी बातचीत प्रकृति को लेकर होगी। बातें तो करेंगे ही, साथ ही इस कार्यक्रम में ही इसी विषय को लेकर यानी प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का खास प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद यानी ठीक शाम 5:10 पर। दोस्तों प्रकृति और मनुष्य का संबंध बहुत ही गहरा और अटूट है। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है और ये हमारे अस्तित्व का आधार है। ये सब हम आप बढ़िया से जानते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और जंगल, ये सभी प्रकृति के अंग हैं जो हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। प्रकृति के बिना हमारा जीवन अधूरा है, आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमें न केवल भोजन और आस

आश्रय देती है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। दोस्तों, अगर इस शब्द पर ध्यान दें तो एक ये बहुत ही छोटा सा शब्द है, पर इस शब्द में कितना कुछ समाया हुआ है, ये हमारी सोच के पड़े है। हम स्वयं ही प्रकृति का एक छोटा सा उपादान है। वायु, पानी, मिट्टी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, झरने, नदियां, जंगल, पहाड़, समुद्र आदि, ये सभी प्रकृति के अवयव हैं। हम प्रकृति के इन अवयवों के सहारे ही जी पाते हैं। प्रकृति से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु, पीने के लिए पानी और भोजन प्राप्त होते हैं। इसमें होने वाले परिवर्तन, यानी जब कभी भी हमारे आसपास वातावरण में परिवर्तन होते हैं, तो इससे हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। ये प्रकृति हमें शारीरिक सुख सुविधा के साथ साथ मानसिक सुख भी देती है, पर हमारे पास इस प्रकृति को देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। लेकिन हाँ, हमें जो कुछ भी मिला है, हम उसे ठीक से सुरक्षित तो रख सकते हैं। अब लीजिए, आसपास जो गंदगी फैली होती है, पानी कभी कभी दूषित हो जाता है, तो ये तमाम चीजें हमारे आपके द्वारा ही होता है। तो ये कैसे स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, अगर इस बात का हम आप ध्यान रखते हैं, तो हम समझते हैं प्रकृति बिल्कुल ठीक ठीक रहेगा और हम आप बढ़िया महसूस कर सकते हैं।

दोस्तों, प्रकृति वास्तव में हमारी माँ की तरह होती है, जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारा पालन पोषण करती है। चलिए इस विषय पर बातें हम करेंगे वक्त मिला तो, लेकिन फिलहाल समय हुआ चाहता है। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, तो आइए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो।

0: करता हूँ भैया, इसका कारखाना डाल लेते हैं ना, उसका कारखाना डाल लेते हैं ना, प्रधान मुख्यमंत्री रोजगार योजना से इतना 10 लाख मिलेगा, ये वाला डाल लेते हैं ना, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि माल बनाना या प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, वो कोई बना ले, बेचना बहुत मुश्किल है। आखिर माल तुम बना तो लोगे, बेचोगे कहाँ? तो सबसे पहले उनको अपना मार्केट तैयार करना पड़ेगा, मार्केट तैयार होने में टाइम लगता है, प्रोडक्ट बनाओ मार्केट तैयार होने में टाइम लगेगा, बिकेगा माल।
1: और अंत में आपका कोई पसंदीदा गीत जिससे आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी

0: चला जाता हूँ किसी की धुन में, ये हमेशा सुनता हूँ मैं।
1: बिल्कुल। तो धन्यवाद अनुप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे युवाओं को अपना गाइडेंस देने की जर्नी रही उसको शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके श्रोताओं का भी।

0: स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े। मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला, और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। गाँव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गाँव में ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है ये गाँव भी हमारा है, ये गाँव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गाँव गाँव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूं, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूं, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: अपने जीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूं इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को विचार को हिला दिया, समाज में से लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे थे। लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहने युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो

0: मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे तो है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे, या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटे ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाएं, तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने, और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गाँव वासियों के लिए कहता हूँ, जो अपने गाँव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं, और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें, और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व, मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जो हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस, धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में, तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्योहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने NCR की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें, तो इसमें एक बेरी का पेड़ है, या नीम का पेड़ है, या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं, वो कोई भी दाल चीनी या सब्जी लेनी होती थी, वो अक्सर पुराने कपड़े और थैला प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की हजारों पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है, पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते हैं।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपने जीवन

0: शैली में परिवर्तन करें। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर चार जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें, जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल आप प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों आप प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ही अपनाए।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं, हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है,
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हां, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हो, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करें जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है, किस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है 1-2 पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमरता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से।

0: उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो वो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी। मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी। मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है। तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast@airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: हाँ तो दोस्तों, अभी आपने विस्तार से बातें सुनी प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। आप सब अवश्य लाभ उठाएंगे आने वाले समय में। बेशक दोस्तों, यदि हमें जीना है और स्वस्थ होकर जीना है, आसपास के वातावरण को बिल्कुल सही सही रखना है, तो हमें प्रकृति के साथ रहना होगा। इस बातचीत से इस निष्कर्ष पर हम आप पहुंच सकते हैं कि यदि प्रकृति है तो हम हैं, और इस तरह से प्रकृति की रक्षा बेहद जरूरी है। जिस तरह माँ हमारी आपकी रक्षा करती है, देखभाल करती है, प्रकृति भी उसी तरह से अपनी भूमिका में है। तो हमारा भी ये दायित्व है, कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और फिर उसकी रक्षा करें। अब कार्यक्रम में समय भी बहुत कम है, तो चलते चलते आपको एक देवी गीत सुनाते चलें।

युवा श्रोता अभी अपना कार्यक्रम सुन रही थी युवावाणी। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए अब पेशे कुछ फिल्मी गाने।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे कुछ नए गाने। फिल्म थी MS धोनी, पुलिस केडी, लम्हा और आसमा। आवाजें थी पलक मुच्छल, यशराज कपिल और पलाश सेन की। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजा जाते ही कुछ एक पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
3: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7

0: दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए अब एक नजर डालें हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम।

अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे संध्या 6:25 पर। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम गांव घर सुनेंगे शाम 6:30 पर। किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी का प्रसारण किया जाएगा संध्या 7:00। इसके अंतर्गत आज आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात 8:00 समय है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान के लिए।

रात 8:15 पर आप सुनेंगे विज्ञान कार्यक्रम साहित्य भारती। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रेल कर आप तक पहुंचाएंगे रात 9:30 पर। रात 10 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम और अब कल के बारे में।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन पटना केंद्र से रे लेकर आप तक पहुंचाएंगे। बच्चों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवाड़ी का प्रसारण किया जाएगा दिन में 10:30 पर। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे हेलो जिंदगी। इस कार्यक्रम के लिए समय है दिन में 11 बजे और विषय है वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मुकेश प्रसाद। महिलाएं अपना कार्यक्रम सखी बहन सुनेंगी दोपहर 12 बजे। दोपहर 12:30 पर मैथिली नाटक गुरुआइन का प्रसारण किया जाएगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर सुनिएगा कल दिन में 1:15 पर। रेडियो की बात श्रोताओं के साथ, इस कार्यक्रम के लिए समय है दोपहर 2:30 पर। अपराह्न 3 बजे आप सुनेंगे विद्यापति गीत। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी संध्या 5 बजे। कुछ विद्यापति गीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। मैथिली संवाद 6:25 पर।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रही थी समवेत स्वर में विद्यापति गीत। अब प्रस्तुत है रामकुमार मल्लिक के स्वर में विद्यापति की ये रचना।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। संध्या के 6:25 होने वाले हैं। अब मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी बैजू कुमार झा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपराध नियंत्रण आ न्यायिक व्यवस्था के बेसी प्रभावी बनेबाक लेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई केर उपयोग पर जोर देलनि अछि। ओ आई बोधगया केर महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र मे 3 नव आपराधिक कानून सभक प्रभावी क्रियान्वयन लेल आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन के संबोधित कऽ रहल छलाह। मुख्यमंत्री कहलनि जे न्याय व्यवस्था के और तेज आ प्रभावी बनेबाक लेल 100 गोट फास्ट ट्रैक अदालतक स्थापना होयत। हमर संवाददाता जनौलनि जे सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय केर वरिष्ठ न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय केर मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय, उच्च न्यायालय केर आन न्यायाधीश, राज्यक सभ जिलाक वरीय पुलिस अधीक्षक आ पुलिस अधीक्षक समेत 200 सँ बेसी प्रतिनिधि भाग लऽ रहल छथि। संसदक मानसून सत्र 20 जुलाई सँ शुरू होयत। ई सत्र 13 अगस्त धरि चलत। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जनौलनि जे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मानसून सत्र संबंधी सरकारक प्रस्ताव के मंजूरी दऽ देलनि अछि। केंद्र सरकार पायरेसी केर खबर के देखैत मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के नोटिस जारी कयलक अछि। सरकार टेलीग्राम के पायरेटेड फिल्म आ ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करबाक निर्देश देलक अछि। आधिकारिक सूत्रक अनुसार प्लेटफॉर्म के 15 दिनक भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देबाक लेल कहल गेल अछि। एहि डेगक उद्देश्य भारतक रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारक, ओटीटी प्लेटफॉर्म, निर्माता आ वितरक लोकनिक रक्षा करब अछि। राज्य सरकार झारखंड सँ बिहार में प्रवेश करयवला अवैध आ ओवरलोडेड गिट्टी लादल गाड़ी सभक खिलाफ निगरानी बढ़ा देलक अछि। राज्य परिवहन आयुक्त सभ सीमावर्ती जिलाक जिलाधिकारी लोकनि के पत्र पठा कऽ एहन वाहन सभक सघन जांच करबाक आ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़गर कार्रवाईक निर्देश देलनि अछि। राज्य सरकार बहुचर्चित टेंडर घोटाला में गिरफ्तार भवन निर्माण विभागक तत्कालीन संयुक्त सचिव मुमुक्षु कुमार चौधरी के तत्काल प्रभाव सँ निलंबित कऽ देलक अछि। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत ई कार्रवाई कयलक अछि। मुमुक्षु कुमार चौधरी एखन जेल में छथि। अगला आदेश जारी होबा धरि हुनक निलंबन प्रभावी रहत। जहानाबाद जिलाक घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत चैती पिपरा स्थित फल्गु नदी में बालू खनन के लऽ कऽ दू पक्षक बीच भेल

0: हिंसक झड़प में लगभग 20 राउंड फायरिंग भेल अछि। घटना में 6 गोटे गोली लगला सँ घायल भऽ गेला। घायल सबके नीक इलाज लेल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजल गेल छनि। SDPO कृति कमल जनौलनि जे मामिलाक जांच शुरू कऽ देल गेल आ फायरिंग में सम्मिलित लोक सभक पहचान कयल जा चुकल अछि। प्रदेश में मानसूनक रफ्तार सुस्त पड़ला सँ बरखाक गतिविधि में कमी आयल अछि। एहि कारणे अधिकतम आ न्यूनतम तापमान में सेहो बढ़ोतरी भेल अछि। मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पिछला 24 घंटाक दरमियान राज्यक उत्तरी आ दक्षिणी भाग सभ मे किछु ठाम हल्का बरखा दर्ज कयल गेल। पूर्णियाक ढेंगरा घाट मे सबसँ बेसी 28.6 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कयल गेल। मौसम पूर्वानुमान में कहल गेल अछि जे आइ राज्यक बेसीतर भाग सभ मे हल्का बरखा भऽ सकैत अछि। ओतहि अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस धरिक बढ़ोतरीक संभावना अछि। पूर्वी चंपारणक पिपराकोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजनाक काज में बाधा पहुंचेबाक आरोप में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 गोटे पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कयल गेल अछि। पुलिसक अनुसार ई लोकनि काज रोकबा देने छलाह आ मौका पर उपस्थित कर्मचारी लोकनिक संग मारिपीट कयने छलाह। मधुबनी जिलाक जयनगर में पेट्रोल पंप पर पिस्तौल देखाकर लूटक प्रयास कर रहल दू अपराधी के स्थानीय लोक सब घेर कर पीट देलनि। मौका पर पहुंचल पुलिस टीम दुनू अपराधी के गिरफ्तार कर लेलक अछि। हुनका सब लग सँ पिस्तौल बरामद कयल गेल अछि। मुजफ्फरपुर जिलाक सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र में आई भोर में अपराधी सब एकटा किराना व्यवसायी के गोली मारि कर हत्या कर देलक। व्यवसायी आने दिन जकां डेरा चौक स्थित मंदिर में पूजा करबा लेल पहुंचल छला। तखनहि हमलावर सब एहि घटना के अंजाम देलक। पुलिस अपराधी सबक गिरफ्तारी लेल छापेमारी कऽ रहल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कामघर कार्यक्रम।

आजुक गाम घर सुननिहार सुनेही श्रोता भाई बहिन लोकन के उगना भाई के नमस्कार। आई शनि दिन अछि आ आजुक दिन लऽ कऽ अबैत छी अहाँ लोकनिक लेल साप्ताहिक कार्यक्रम झरोखा। एहि कार्यक्रम अंतर्गत आई अहाँ लोकन के लेल लऽ कऽ आयल छी किछु गीतनाद, एकर संगहि एकटा भेंट वार्ता सेहो सुनब। मुदा एहि सबसँ पहिने किछु दू टप्पी कऽ लैत छी। स्नेही श्रोता भाई बहिन लोकनि, अपना सभक एहिठाम स्वागत सत्कारके बड़ पुरान परम्परा अछि। प्राचीन कालसँ लऽ कऽ एखन धरि मिथिलाके क्षेत्रमे स्वागतके जे एकटा परम्परा रहल अछि ओ बड़ विशिष्ट रहल अछि, जकर प्रसंगमे प्रायः सब केओ जनैत छी। जेना जो अपना सभक एहिठाम केओ अबैत छथि तऽ हुनका पहिने हाथ जोड़ि कऽ प्रणाम करैत छनि अथवा अपनासँ श्रेष्ठके पैर छुबि कऽ प्रणाम करैत छनि। एकर संगहि ई सब एकटा पारम्परिक अतिथि सत्कारके एकटा से अछि गुण। कारण ई जे अछि से अपना सबके ओहिठाम अतिथिके देवताके तुल्य बुझल जाइत छनि, कहलो गेल अछि अतिथि देवो भव। तऽ हिनका लोक जे जिनका दलान पर अतिथि अबै छथिन हुनक सत्कार बड़ नीक जकाँ कयल।

लैत अछि हुनक पैर धोआयल जाइत छनि। सबसँ पहिने एक गिलास पानि देल जाइत छनि शीतल जल, तकर बाद जेहन बेर रहल तदनुसार से हुनक स्वागत के लेल आहार के व्यवस्था कयल गेल। जो भोरका बेर रहल तऽ जलखै के व्यवस्था, दुपहरिया के बेर तऽ भोजन के व्यवस्था, साँझक बेर सेहो राति भऽ गेल तऽ भोजन के व्यवस्था, हुनका रुकबा के व्यवस्था। तऽ ई सब एकटा अपना सभक एहिठामक परम्परा रहल अछि, जाहि लऽ कऽ मिथिला अपन एकटा नव पहचान आ पुरान पहचान दुनूके लऽ कऽ चलि रहल अछि। तऽ गपशप फेर हेतै, मुदा आब सुनैत छी ई एकटा देवी गीत, तऽ सुनल जाए।

0: एखन हमरा लोकनि ई देवी गीत सुनलहुँ। स्वर छलनि ओम प्रकाश सिंह आ अरविंद कुमार झा। आब सुनैत छी एकटा ई भेंट वार्ता, बिखे अछि स्वच्छता अपनाओ रोग भगाओ। आ भेंट वार्ताकार छथि अनिल कुमार कर।
1: श्रोता लोकनि गाम घरक दलान

0: प्रकृतिक दिस बेसी ऊर्जा प्रदान कैल जाइए, अइ संबंध में अहाँ की कह चाह।
1: हम युवा साथी सब ई आग्रह करबन जे चूंकि अहाँ में ज्यादा ऊर्जा अछि और ऊर्जावान छी, तै हेतु अपने तो पहले स्वस्थ रही, अपने घर के स्वास्थ्य के अनुकूल बनाबी, संगे संग जतेक मित्र मंडली छथि हुनका एकटा ग्रुप बना लिय, एकटा मेंबर शिप शॉप से लो लिया और हर वार्ड में हर मोहल्ला में जाके हर लोग से भेंट कर के स्वास्थ्य के प्रति और स्वच्छता के प्रति जागरूक करूँ। और अगर हर व्यक्ति जागरूक भ जाए तो हमरा दृष्टिकोण से रोग मुक्त भ सके छी, और हर परिवार जे छे अगर स्वच्छता के अपना ले छे संगे संग ओ जतेक हमर कर्मठ सहयोगी युवा छथि हुनका से आग्रह जे हर घर से हर व्यक्ति से समन्वय स्थापित कऽ के हुनका एहि तरफ जे छै से अपन विचार से अवगत कराबैत जे स्वच्छता से की अभिप्राय छै, किया हम स्वच्छ रह चाहे छी। चूंकि स्वच्छता जावत नै रहते, जावत केओ व्यक्ति स्वच्छ नै रहता तो हुनकर जे छै से मन स्थिति जे छै से ठीक नै रहतनि, और मन स्थिति ठीक नै रहतनि तो घर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हेतन, शारीरिक और मानसिक कष्ट हेतन। तै हेतु सब युवा से आग्रह जे अपन मित्र मंडली आ टोली बना के अपन समाज में, अपन गांव में, अपन वार्ड में अगर एहि तरह के कार्यक्रम चलाबी जे हमरा सप्ताह में एक दिन, महीना में या जेना अहाँ के अपन हुए, ओहि तरह से एकटा समय सुनिश्चित कऽ के हर व्यक्ति के प्रति जागरूक करी, जैसे हमर जे अभियान अछि ओहिसँ हम सफल भ सकै छी। स्वच्छता जखने अपनाएब तऽ हमरासँ रोग दूर हैत। धन्यवाद।
0: अमित कुमार दास जी, अपने खूब बढ़िया आ नीक जानकारी दऽ रहल छी। एकटा घटना कहू, बच्चा में प्राय सब गोटे संगे एहन भेल है जे गाम में रहित रही भट्ठा से वा चिमनी से ईटा अगल बगल में खसैत रहे, कोनो व्यक्ति मंगबैत रहे तो धियापुता या हमहू सब ओकरा की करैत रही जे ईटा सब के ठाड़ कऽ दैत रही, कनेक कनेक दूरी पर ठाड़ आ एकटा ईटा के खसबैत रही तो सबटा ईटा खसि पड़ित रहे। तो ई देख कर मन में उत्साह होत रहे जे ऊर्जा जे छे एक स्थान से दोसर स्थान स्थानांतरित होइए, चलिए जाइए। एहने सन काज ई अछि स्वच्छता। अहाँ लोग सब के अंत में की संदेश देव चाहबे जे एक व्यक्ति जो एकरा अपना लेता तो अपन सबक जे देशक आबादी है, अपन देशक जे जनसंख्या है, सनय सनय ई जन आंदोलन के रूप लो ले जे सब गोटे स्वच्छ रहब तो सब गोटे स्वस्थ रह सके छी। तो मूल शब्द में जो गप करी अहाँ से स्वच्छता के संबंध में, हमरा कनेक शब्द में एक जानकारी दिया जे एहि संबंध में अहाँ लोग सब के की संदेश देव चाहबे, की कह चाहबे।
1: धन्यवाद अनिल कुमार कर्ण जी, अपने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिलिए जे बच्चा में हम सब गोटे ईट के खड़ा कर के जे छे से एकटा के गिराबे छलौं तो संगहि सबटा ईटा गिर पड़े छल, ओइसे काफी हम सब ऊर्जावान होइत रहौं, बड़ा खुशी होइत रहे, हृदय गदगद भ जाइत रहे। ई एकटा बहुत पैघ उदाहरण अछि। अगर हम एकरा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखे छिए, अगर हम स्वस्थ भ गेलौं, दोसर के कहलियन, तेसर के कहलियन, चारिम के कहलियन, एहि तरहे हमर पूरा समाज स्वस्थ भ जाता, गांव स्वस्थ भ जात, गांव स्वस्थ हैत, प्रखंड स्वस्थ हैत, जिला स्वस्थ हैत, राज्य स्वस्थ हैत, और हमर देशक हर एक व्यक्ति स्वस्थ भ जाता। ओना ही अगर एकर हम अवहेलना करे छी तो हमर रोग के जे कीटाणु अछि वो एक व्यक्ति से दोसर व्यक्ति में, दोसर व्यक्ति से तेसर व्यक्ति में, और एना ही हम सब आदमी संक्रमित भ जाएब। जेना पहले होइ छल जे बाढ़ आबै छल, तो बाढ़ आबै छल तो लोग जे छै से जतऽ ततऽ के पानि पीबै छलथि, और ओइसँ हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, कई तरह के बीमारी के लोग शिकार भ जाए छलथि हन। लेकिन आब धीरे धीरे लोग के इस संज्ञान में आबि गेल छन जे नहीं, हम दूषित पानि नहीं पीबी, हम बाहरक खाना नहीं खाए, जे ढकल खाना छै है, और सही दिशा में अगर लोग के जानकारी भ जाए जो वस्तुतः हमरा जे उघार वस्तु छे ओकरा नहीं खेबाक चाही, अगर उघार पैन छे ओकरा नहीं पीबाक चाही, तो अपन स्वास्थ्य के प्रति सजगता जे छे सबसे पैघ लोग के आगू बढ़ा सके छे और रोग से मुक्त कर सके छे। तै दुआरे सबसे पहले हम सब आदमी से निवेदन करब जे पहले अगर हम सजग हैब तखने दोसर आदमी के सजग करब, हम रोग मुक्त हैब तखने दोसर आदमी मुक्त हैब। तही हेतु अगर हर आदमी ई दृढ़ संकल्पित भ जाए आई के दिन में

0: जो हम रोग मुक्त भ जाए और स्वच्छता के हरेक नियम के अपनाएब तो हर व्यक्ति हमारे देश स्वच्छ भ सकते और रोग मुक्त भ सकते।
1: अमित कुमार दास जी देखियो अहाँ निक गप कह रहा छे जे स्वच्छता हमारा अहाँक संस्कार हमारा अहाँक संस्कृति में रचल बसल है। मुदा पहिने ई होइ छल जे कोनो गाम में किनको एठाम कोनो अतिथि अबैत रहे तो दलान पर बैसैत सबसे पहिने हुनका एक लोटा पानी देल जाय छल तौनी देल जाय छल जे पैर धो आ ओकरा पैर के पोछू। मुदा वर्तमान काल में अहाँ देखब जे आधुनिकता के लेप में आधुनिकता से हम सब बेसी प्रभावित भ रहल छी। खास कर नवतुरिया धियापुता जे छे ठारे ठार भोजन करता कतौ खा लेता सड़क के कात में बिको वाला जे वस्तु होइए ओकरा ग्रहण कर लेता जाहि से रोगग्रस्त भ जाय छे रोगी भ जाय छे अपन शरीर में कष्ट होइ छे। त एहि संबंध में एक से दू शब्द में की कह चाहबे अहाँ?
0: सबसे पहिल बात छे जो हम सजग रही और अगर सजग रहब तो हम अपन स्वास्थ्य के अगर स्वास्थ्य हमर धन है। अगर हमर पहले हम कहने रहूं जो मनुष्य के सबसे पैघ जे धन छे वो स्वास्थ्य छे। अगर हमरा अपना स्वास्थ्य के प्रति प्रेम है तो हम स्वच्छता के नियम के अपनाएब और इस सबसे पैघ मूल मंत्र छे रोग मुक्त होय के लेल जो स्वच्छता के नियम के अपना कर हम रोग मुक्त भ सके छी।
1: अमित कुमार दास जी अपने गाम घर कार्यक्रम में स्वच्छता के संबंध में जे हमर नारा है जे स्वच्छता अपनाओ आ रोग भगाओ इस संबंध में श्रोता लोकन के नीक जानकारी दिलियन ताहि लेल अपने के धन्यवाद।
0: धन्यवाद अनिल कुमार करण जी एहि कार्यक्रम में हमरा बाजे के अवसर देलौं ताहि हेतु अहाँ के हृदय से धन्यवाद।
2: स्नेही श्रोता भाई बहन लोकन एखन हमरा लोकन ई भेंट वार्ता सुनलौ स्वच्छता अपनाओ रोग भगाओ भेंट वार्ताकार छला अमित कुमार दास आ हिनका से गपशप कर रहल छला अनिल कुमार कर्ण। तो दुनू गोटा के बीच भेली गपशप सुनलौ आ आव सुनैत छे हमरा लोकन एकटा ही नचारी नंद शंकर झा के गाल तो सुनल जा।

स्नेही श्रोता भाई बहन लोकन, एखन हमरा लोकन सुनलौ ई नचारी नंद शंकर झाक गाओल आ आब अहिक संग आजुक झरोखा कार्यक्रमक बेर सम्पन्न भ रहल अछि। खेती गृहस्थी में स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन के स्वागत करै छियनि। आइ अहाँ लोकनिक लेल लक आयल छी एकटा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। एकर संगे मौसम संबंधी जनतब देव, किछु समसामयिक जे कृषि कार्य संबंधी परामर्श ताहि प्रसंगमे चर्चा करब, मुदा एहि सबसँ पहिने खेती बाड़ीमे हमरा लोकनि जे मिर्चाई के खेती जो करैत छी तऽ चिक्कन आमदनी होइत अछि। कारण मिर्चाई के व्यावसायिक मांग बाजार में सदत बनल रहैत अछि। कोनोहु हमरा लोकनि तरकारी बनबै छी, चटनी बनबै छी, अचार बनबै छी, सब में मिर्चाई के कोनो ने कोनो रूपक व्यवहार करै छी। जेना ओकर हमरा लोकन पाउडर जकरा बुकनी कहै छी, मिर्चाई के पीस के व्यवहार करै छी चटनी में, तो ई तखने ही संभव भ सकत जखन कि एकर खेती निक जकाँ करब, एकर उपजा मनोनुकूल हैत, चिक्कन आमदनी हैत, तखने खेतियो करै में मोन लागत। तो आइ हमरा लोकन मिर्चाई के खेती के प्रसंग में चर्चा कऽ रहल छी। मिर्चाई के खेती करबा सँ पहिने एकर माटिक जांच करा लेबाक चाही, तखने से मिर्चाई के फसिल के लगेबाक चाही। एखन हमरा लोकन के मिर्चाई के मुख्य फसिल के लगेबाक बेर अछि। मिर्चाई के आधुनिक विधि सँ खेती करबाक लेल नर्सरी में बीया खसेबाक उचित बेर जून मास सँ लऽ कऽ अगस्त मास धरि मानल गेल अछि। ओ गाछ के लगेबाक बेर जुलाई मास सँ लऽ कऽ अगस्त मास धरि मानल गेल अछि। हमरा लोकनि के मिर्चाईक खेती व्यावसायिक दृष्टि सँ करबाक लेल सदति एकर उन्नत अनुशंसित प्रधे के लगाबी। जेना पंत मिर्च 3, अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, पंजाब लाल, पंत C1, काशी अनमोल इत्यादि। अचारक लेल एकर उन्नत प्रभेद अछि अर्का मोहिनी, अर्का गौरव, अर्का बसंत, किंग ऑफ नॉर्थ इत्यादि। मिर्चाई के संकर प्रभेद अछि अग्निरेखा, कल्याणपुर चमन, कल्याण

कानपुर चमत्कार इत्यादि। तो ये सब छल मिर्चाई के उन्नत प्रभेद जरा हमरा लोकन के लगेबाक चाहिए। एकर संगे इहो ध्यान राखी जे खाद उर्वरक में जहाँ धर व्यवहार भ सके जैविक खाद के व्यवहार करबाक चाही आ रासायनिक खाद के जो व्यवहार करैत छी तो ओकर मात्रा पर सेहो ध्यान देबाक चाही जे कखन ओकरा लगाबी। तो अहू गप पर ध्यान दी तो फिर हमरा लोकन ई गपशप करब। मुदा आप सुनैत छी ई प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान तो सुनल जाए।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
1: उड़ान, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम उड़ान में। एक बार फिर से उड़ान कार्यक्रम में हमने आपका स्वागत किया, और वो इसलिए किया कि 2-3 सप्ताह के हमारे इस कार्यक्रम के बाद इतने ज्यादा फोन कॉल आए हैं और लोगों ने जिज्ञासा जाहिर की है, हाँ, कि बीसीए और बीबीए की पढ़ाई क्या सचमुच बहुत ही उम्दा है, क्या इंजीनियरिंग से अच्छी पढ़ाई है, अच्छी है या बुरी है, ये तो हम नहीं कह सकते। चाहे वो खगड़िया हो, पूर्णिया हो, भागलपुर हो, रोहतास हो, बक्सर हो, आरा हो, पटना हो, बहुत जगह से फोन कॉल्स आए, अच्छा लगा। उड़ान कार्यक्रम में हम लगातार हर साल इसी समय आते हैं और आपके करियर की बातें करते हैं, क्योंकि आपका करियर है तो सब कुछ है। अच्छा जीवन जीने के लिए, हाँ, आपको अच्छा पैसा चाहिए, अच्छे पैसे के लिए अच्छी नौकरी चाहिए, और अच्छी नौकरी के लिए अच्छी पढ़ाई, और आज तो कहेंगे कि प्रोफेशनल पढ़ाई चाहिए, और बीसीए और बीबीए बहुत ही उम्दा पढ़ाई है। हाँ, खास करके जब आपको रोजगार परख पढ़ाई की आप खोज कर रहे हैं उसके अंदर। उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, जी हाँ, उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज की तरफ से। आर्किड बिजनेस कॉलेज पटना के राजेंद्र नगर, आर्य कुमार रोड और सगुना मोड़ पर है। पिछले 27 वर्षों से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई के साथ युवा साथियों के साथ एकदम खड़े हैं और लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। 100% जॉब असिस्टेंस की यहां गुंजाइश बनती है, जी हाँ। अगर और अधिक जानकारी चाहिए बीसीए और बीबीए के लिए तो डायल करें 7520-800-800। वाव, क्या नंबर है, 7520-800-800। एक बात और बताना चाहते हैं, दाखिला वहां लें, एडमिशन वहां लें जहां, हाँ, किसी विशेष यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो, और अगर जो स्थायी मान्यता प्राप्त हो तो और भी अच्छा है। और आर्किड बिजनेस कॉलेज बीसीए और बीबीए के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एकमात्र स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। अगर स्थायी मान्यता नहीं है ना, तो बीच में कुछ भी हो सकता है।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्किड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
4: आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520-800-800। याद रखें 7520-800-800।
1: उड़ान, उड़ान में सबसे पहले अब हम स्वागत करते हैं आशीष जी का। और जो सवाल हमसे पूछा गया ना कि इंजीनियरिंग, बीसीए और बीबीए, हम चीजों को खोलकर रख देते हैं। आप समझिए, आप जानिए, आप महसूस कीजिए, आप निर्णय लीजिए। माता पिता

0: बड़े बड़े भाई बहन जिससे भी हो, लेकिन निर्णय लेने से पहले इंस्टीट्यूशन को जरूर देखिएगा। आगे और चर्चा करेंगे। नंबर है 7520800800 7520800800। बीसी और बीबीए के लिए अगर जो आर्केड बिजनेस कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो ये डायल करें 7520800800। आशीष जी एक बात बताइए कि बीसीए और बीबीए और इंजीनियरिंग, इसके बारे में ढेर सारे फोन कॉल्स आए थे, बताइए।
1: देखिए ऐसा है कि अगर आप एक डेटा, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, आज के डेट में एक डेटा कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि आज हमारे देश में जो इंजीनियर्स की जो संख्या, इंजीनियर्स की जो संख्या है वो लगभग 14 लाख के आसपास में है। मैं ये 14 लाख उनको बोल रहा हूँ जिनके पास बीटेक की डिग्री है। इस 14 लाख में से मात्र 4 लाख के पास जॉब है, मात्र 4 लाख के पास। उसके अतिरिक्त 3 लाख ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया, उसके बाद वो कहीं बैंक में काम कर रहे हैं या कोई इंश्योरेंस बेच रहा है कहीं, या किसी ने बिजनेस कर लिया। और बाकी 7 लाख लोग निकल गया, बाकी 7 लाख आज भी रोड पर जॉब के लिए ढूंढ रहे, घूम फिर रहे, इधर उधर जा रहे हैं, वो टहल रहे हैं, उतना पैसा लगा करके, इतना समय लगा करके। मेरा यही कहना है यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर आपका मजबूत नहीं है तो केवल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए इंजीनियरिंग मत कीजिए। उसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपकी, आपका जो टैलेंट है वो एवरेज है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स मैं बताता हूँ, जिस कोर्स को आप जरूर करिए और आप देखिए उसका कितना फायदा आपको मिलता है। उस कोर्स का नाम है बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स करने के बाद आप 2 साल आप एमसीए कहीं से कर लीजिए, फिर आपको देखिए कितने सारे एवेन्यूज। एमसीए करने के बाद में बैंक से लेकर के इवन के जो आईटी कंपनी से लेकर के जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का या विप्रो का विज्ञापन उठा करके देखिए, उसमें लिखा रहता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एमसीए, वो एमसीए आप कीजिए बीसीए करने के बाद में, या बीसीए करने के बाद भी इवन बहुत सारी आईटी कंपनीज वो आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको अब्सॉर्ब कर लेती है, जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज इन कंपनियों में कंपनी उसका पूरा का पूरा प्रोफाइल हमारे पास है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीसीए एक अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को आप करिए और करने के बाद आपको लगेगा आगे चल करके कि हमने इंजीनियरिंग से बेहतर किया। हाँ, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजबूत है, एकदम आप उसमें टॉपर्स में हैं, तो फिर आपको जरूर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगार इंजीनियरों की भीड़, बीटेक स्टूडेंट्स की भीड़, तो मैं, मुझे लगता है आप कंपेयर कर दीजिए दोनों को, बीसीए करने के बाद स्टूडेंट्स की भीड़ जो बेरोजगारों की भीड़, और इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारों की भीड़, आपको ये लगेगा कि इंजीनियरिंग में बेरोजगारों की भीड़ ज़्यादा है और बीसीए करने के बाद कम है। तो मेरा समझना यही है कि आप बीसीए करिए और उसका आप लाभ लीजिए, आगे चल के एमसीए कीजिए, बाकी सब मतलब बहुत अच्छा होगा।
0: आशीष जी आपने तो पूरी तरीके से खोल कर सारी चीजें बता दी कि बीसीए और बीबीए और इंजीनियरिंग। जी हाँ, हम अपने से कुछ भी नहीं कहना चाहते, आप एक करियर काउंसलर भी हैं और लगातार लिखते पढ़ते भी रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी आपको लोग देखता है और रेडियो पर सुन भी रहा है। बहरहाल बीसीए और बीबीए हम बार बार कहते हैं, तोता की तरह राजेश रट लिया है बीसीए और बीबीए, क्योंकि समाज में हम देख रहे हैं, आप नज़र उठा कर देखिए ना, बीसीए और बीबीए के लिए ही सारे लोग दीवाने हो रहे हैं। और आपके मन के अंदर भी कहीं ना कहीं इन दो कोर्सों ने कहीं ना कहीं जगह बनाई है। चुनने से पहले, हाँ, संस्थान चुनने से पहले बहुत बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। हाँ, बहुत कुछ देखना पड़ता है, एफिलिएशन से लेकर सारी चीज़ें कि संस्थान कहाँ से एफिलिएटेड है, कहाँ से मान्यता प्राप्त है, किस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, वहाँ फैकल्टी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जॉब का प्लेसमेंट क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसीलिए आर्केड बिजनेस कॉलेज का हम नाम लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ आके दाखिला ले लीजिए, ना, कभी नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि जो 27 वर्षों से लगातार लगा हुआ है ना बीसी और बीबीए के लिए, तो कुछ तो बात होगी। आर्केड बिजनेस कॉलेज की तरफ से ही ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं जो राजेंद्र नगर आर्य कुमार रोड सगुना मोड़ पटना में है। एक बार नंबर बता रहा हूँ, जरूर डायल कीजिएगा 7520800800 7520800800। हमने साइंस स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट किए हैं उनकी बात की, पीसीएम वालों की। अब सवाल पूछते हैं आशीष जी से कि आर्ट्स कॉमर्स इन बच्चों के लिए कितना कारगर साबित होगा बीसीए और बीबीए की पढ़ाई।
1: देखिए आर्ट्स से जिसने किया है, वैसे तो देखिए अभी कई विश्वविद्यालय बीसीए के कोर्स के लिए मैथमेटिक्स जरूरी मांगती है 10+2 में, लेकिन कई लोगों ने रिलैक्स भी कर दिया है। लेकिन मेरा समझ

0: यही है कि यदि आपने आर्ट से अगर 10+2 किया है तो फिर बीबीए कोर्स, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स बहुत बेहतर होगा। तो मैं समझता हूं कि आपको किसी ऐसे फील्ड की तरफ जाना चाहिए जहां पर आपका निश्चित जॉब मिले। वैसी स्थिति में बीबीए कीजिए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद अगर आपने किसी अच्छी जगह से एमबीए कर लिया तो फिर पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सेम मैसेज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी देना चाहूंगा जिन्होंने 10+2 कॉमर्स के साथ किया है, क्योंकि कॉमर्स के बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो पेपर्स उनको बीबीए में फिर से दोबारा पढ़ने पड़ते हैं, तो उनको बहुत सुविधा होगी। कॉमर्स करने के बाद अगर आप बीबीए करते हैं उसके बाद एमबीए करते हैं तो आपको फिर पीछे मुड़के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से भी, और जो लोग पूरे बिहार में ये रेडियो पर बज रहा है, आकाशवाणी के सारे केंद्र इसको प्रसारित कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी नजर में अगर ये दोनों कोर्स बीसीए और बीबीए में से किसी एक को चुनना हो तो वो किसको चुने?
0: देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर आपका 10+2 में पीसीएम रहा है और मैथमेटिक्स अगर आपका ठीक है, अच्छा है, तो फिर आपको बीसीए करना चाहिए। और अगर आपका ठीक है, आपने पीसीएम भी कर लिया है उसके बाद भी, लेकिन मैथमेटिक्स भी एवरेज है, तो आप बीबीए चुन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एमसीए, बीसीए और एमसीए करने के बाद एक आप प्रोग्रामर बनते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो आदमी जिसका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जितना बेहतर होता है वो उतना ही अच्छी एनालिसिस कर सकता है, और एनालिसिस अगर आपकी जो आपकी स्किल अगर है तो आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो मेरा समझना यही है कि कुल मिलाकर के अगर आपका, आपको खुद आकलन करना है मार्क्स के हिसाब से, मैं चलिए बोल देता हूं, अगर आपको पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर आपको 70% से ज्यादा मार्क्स है या 60% से भी ज्यादा मार्क्स है तो आप बीसीए ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम है, 60-70% से कम अगर है, तो फिर आपको बीबीए की तरफ जाना चाहिए। और वैसे ही आर्ट्स के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी यही थ्योरी में कहूंगा कि अगर आपको आपके अपने सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए कॉमर्स को, तो मैं बोलूंगा कि वो बीसीए की तरफ ना जाए, बेहतर है वो बीबीए ही लें, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका कॉमर्स का एक बैकग्राउंड रहा है और आगे चल करके उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें उनको पढ़ने में सुविधा होगी बीबीए कोर्स में, और फिर आगे एमबीए में भी वही सारी चीजें विस्तार से पढ़ना होगा उनको।
1: वाह वाह आशीष जी, क्या बातें आपने कही। उड़ान कार्यक्रम लेकर आने का हमारा मकसद यही है कि सारी चीजों को खोल कर हम अपने एक्सपर्ट से रखवा दें, तार तार कर दें एकदम, कि आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगे कि अगर राजेश बीसीए और बीबीए की बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आईएससी, हाँ, जिन्होंने पीसीएम के साथ किया, आर्ट्स के साथ किया, कॉमर्स के साथ किया, कौन सा कोर्स उनके लिए रोजगार पैदा करने में सहायक होगा, कौन से कोर्स को चुनना होगा। जी हाँ, यही हमारा मकसद है उड़ान कार्यक्रम को लेकर आने का, और इसीलिए हम नंबर बार बार बताते हैं, कहीं भी असुविधा लगे, कहीं भी परेशानी लगे ना, तो आर्केड बिजनेस कॉलेज का ये जो नंबर है 7520800 पर बात करें, क्योंकि ये लोग 27 वर्षों के साथ बीसी और बीबीए के साथ चल रहे हैं और न जाने कितने युवा रोजगार में आ चुके हैं। एक बात और कहते हैं कि कोर्स आपने चुन लिया, संस्थान चुनने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। पैसा आप फिर से कमा सकते हैं लेकिन गुजरा हुआ वक्त आप वापस नहीं ला सकते हैं। जहां तक पैसे की बात चली तो अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, 4 लाख तक आपको लोन मिल सकता है जिस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बड़ी बात फैकल्टी, जैसा कि आशीष जी ने कहा है कि फैकल्टी तो आत्मा होती है किसी भी संस्थान की। इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर किस यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलेगी, कहां से मान्यता प्राप्त है, वो संस्थान स्थायी मान्यता प्राप्त है कि नहीं, और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आर्केड बिजनेस कॉलेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, हाँ, बीसी और बीबीए के लिए एकमात्र स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। और अगर स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं हुआ तो ये स्थिति भी हो सकती है,
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड, पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
1: आशीष जी, चलते चलते आर्केड बिजनेस कॉलेज, आज का यूथ और टेक्निकल पढ़ाई, क्या कहना चाहिएगा?
0: मैं समझता हूं कि आप आइए, अगर आप 10+2 कर चुके हैं और फिर उसके बाद अगर कोई किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आप आइए। आर्केड बिजनेस कॉलेज के दो कैंपस है, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़।

0: और वहाँ पर आप बीसीए या बीबीए जिसमें भी जो भी जैसा मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप डिटेल्स लीजिए, सारा इंक्वायरी कीजिए और आपको सब समझ में आए। प्लेसमेंट बुलेटिन देखिए, आप देखिए अभी तक कितने बच्चों का, सभी बच्चों का रियल फोटो के साथ में किस किस कंपनी में वो जॉब में गए हैं, उन सब का पूरा डिटेल्स हम आपको पूरा एक ब्यौरा देंगे लिखित, वो पूरा प्रिंटेड देंगे जिसको आप ले जा सकते हैं और उसमें पूरा आप देखिए, देख करके आपको समझ में आ जाएगा। क्या पता उसमें से कहीं आपके गाँव का भी कोई बच्चा निकल जाए जो, और उससे फिर आप बात कीजिए, अगर उसमें आपको लिखा हुआ नजर उसको फोन कीजिए कि भाई तुम यहाँ पे हो ना, तो आपको बताएगा कि हाँ हम यहाँ पे हैं, इस कंपनी में हैं, ऐसे हैं, और फिर आप आइए, फिर आपको आपको तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मैं फिर कहता हूँ आप केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बना करके हम निकालेंगे।
1: थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी चले गए और राजेश के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि उड़ान कार्यक्रम में हम सारी चीज़ों को खोल कर रख दें और आप उसे सुने, आपके माता पिता बड़े भाई बहनों के साथ बैठकर डिसीजन लें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का डिसीजन है। हमारी समझ से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई बहुत ही उत्तम है, आप डायल कर सकते हैं। 27 वर्षों से इस कोर्स के साथ काम कर रहे हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज वाले, नंबर है 7520800800, 7520800800। तो राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
3: स्नेह श्रोता भाई बहन लोकन, एखन हमरा लोकन सुनलो ई प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, आब हमरा लोकन सुनैत छी मौसम संबंधी किछ समसामयिक जनतब। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, हमरा लोकन के एखन जे मौसम ओहि पर ध्यान देबाक चाही, कारण कृषि के जे अछि बेर ओकर बड़ बेसी महत्व अछि, तऽ एहि पर ध्यान देबाक चाही। ई आगामी 5 जुलाई धरिक मौसम पूर्वानुमान अछि, एहि अवधि मे उत्तर बिहार मे अधिकांश ठाम पर गरज चमक आ वज्रपातक संग तीव्र गति सँ हवा चलबाक संभावना अछि। विशेष रूप सँ हमरा लोकनि के एहि बेर मे ध्यान देबाक चाही जे 1 सँ 2 ठाम पर कतौ कतौ भारी वर्षा होयबाक संभावना अछि। वर्षा के एहि गतिविधि के चलते तापमान मे उल्लेखनीय गिरावट आबि सकैत अछि, जकर अनुमान अछि अधिकांश जिला मे अधिकतम तापमान 31 सँ 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना अछि, जखनकि बेगूसराय जिला में अधिकतम तापमान अपेक्षाकृत बेसी भऽ कऽ 35 सँ 37 डिग्री सेल्सियस धरि रहि सकैत अछि। न्यूनतम तापमान 22 सँ 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान अछि। भिनसर में सापेक्ष आर्द्रता 80 सँ 85% धरि, ओ दुपहरिया में सापेक्ष आर्द्रता 35 सँ 40% के बीच रहबाक संभावना अछि। पूर्वानुमानित अवधि में हवा मुख्यतः पूर्वा चलि सकैत अछि, जे 12 सँ 18 किलोमीटर प्रति घंटाक गति सँ चलबाक अनुमान अछि। तऽ ई छल मौसम संबंधी पूर्वानुमान, आ आब स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकनि किछु समसामयिक कृषि संबंधी जे परामर्श, ताहि प्रसंग मे चर्चा कऽ रहल छी। पछिला किछु दिन सँ नीक वर्षा भऽ रहल अछि, वर्तमान वर्षा के देखैत किसान भाई लोकनि के ई परामर्श देल जाइत छनि जे ओ लोकनि निचला भूमि मे वर्षा जल के उपयोग कऽ कऽ खरीफ धान के रोपनी प्रारंभ कऽ सकैत छथि। मध्यम अवधि वला धान के प्रभेद जना राजेन्द्र

राजेंद्र नीलम, राजेंद्र भगवती, राजेंद्र सरस्वती ओ राजेंद्र श्वेता के नर्सरी में बिया खसयबाक एखन काज कऽ सकैत छी। बाउसँ पहिने बिया के कार्बेंडाजीम सँ उपचारित कऽ दियैक। तऽ ई छल आजुक समसामयिक कृषि संबंधी परामर्श। आ स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकनि, हमरा लोकनि एहि पर ध्यान दी आ तदनुसार खेती के काज करी। अहिक संग आब आजुक खेती गृहस्थी के बेर संपन्न भ रहल अछि, तो चलबाक आज्ञा देल जाय उगना भाई के। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी और गांव घर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण पटना केंद्र से कुछ एक पल में।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा की। अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर दिया बल। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने एथेनॉल को स्वच्छ ईंधन बताया, कहा यह अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू कर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्याय व्यवस्था को और तेज तथा प्रभावी बनाने के लिए 100 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने ये जानकारी दी। इससे पहले बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने समयबद्ध तरीके से मामलों के निष्पादन की व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया था।
1: मैं पिछले 2 साल से लगातार आग्रह कर रहा हूं कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना किया जाए और जरूरत पड़े तो अभी आप किसी को चार्ज दें। जिले में केसेस बहुत लंबे चल रहे हैं और पहले फिक्स था कि 14-15 केसेस को आपको सुनवाई करके पूरा करना है, वो टाइम फ्रेम नहीं हो पा रहा है। इसकी व्यवस्था हमको जो भी सरकार के स्तर पर करना है हमको निर्देशित कीजिए। हमारी सरकार आपको एकदम पूरी तरह आश्वस्त करती है कि रूल ऑफ लॉ के लिए जितनी भी राशि लगाना पड़ेगा हम लोग हर हालत में लगाने का काम।
0: मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण और न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग पर बल दिया।
1: अब AI का उपयोग हम कर सकते हैं और AI उपयोग करने से सब पता चल जाएगा कि कौन थाना में आया था, कौन कहीं क्राइम यदि CCTV कैमरा में हो रहा है। यदि हम AI को यूज करते हैं तो आपको रेड फ्लैगिंग, ग्रीन फ्लैगिंग या जिस भी तरह के आप अपने चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे उससे आप सीधे कनेक्ट हो जाएंगे कि किस इलाके में हमको अधिक ध्यान देने की जरूरत है और कहां गड़बड़ी हो रही
0: है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान BIPART और बिहार जुडिशियल एकेडमी ने संयुक्त रूप से किया है। सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, राज्य के सभी जिलों

0: के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र संबंधी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने एथेनॉल को स्वच्छ ईंधन बताते हुए कहा कि यह अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था।
1: इट इज सपोर्टेड बाय साइंटिफिक एविडेंस।
2: यह वैज्ञानिक प्रमाणों, ऑटोमोटिव निर्माताओं द्वारा व्यापक परीक्षण और उनका समर्थन करने वाली एजेंसियों यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI और SIAM का समर्थन प्राप्त है, और यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ही है जिनका पालन जीवाश्म ईंधन को हरित बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है।
1: To green the fossil fuels to lower the carbon emissions.
0: केंद्र सरकार ने पायरेसी की खबरों को देखते हुए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों के हितों की रक्षा करना है। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में औद्योगिक विकास को गति दी जा रही है और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। आज रोहतास के विक्रमगंज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा राज्य में उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने निर्णय लिया है कि यदि 30 दिन में जो बाकी सब डिपार्टमेंट है, यदि वो उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को लाइसेंस देने का काम नहीं करते तो 31वें दिन उद्योग विभाग सेल्फ अप्रूव सभी लाइसेंसेस को करने का काम करेगा। और अब जो ये 30 दिन का सिंगल विंडो सिस्टम है, ये कोई कागजी या काल्पनिक बात नहीं बल्कि बिहार की सच्चाई है।
0: राज्य सरकार ने झारखंड से बिहार में प्रवेश करने वाले अवैध और ओवरलोडेड गिट्टी लदे वाहनों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों की सघन जांच करने और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में गिरफ्तार भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव मुमुक्षु कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत यह कार्रवाई की है। मुमुक्षु कुमार चौधरी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण कर इतिहास रच दिया है। 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाले वैभव भारत की सीनियर पुरुष टीम के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 1989 में 16 वर्ष की आयु में पदार्पण करने वाले सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इधर भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा T20 क्रिकेट मैच मैनचेस्टर में जारी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर और 2 गेंदों पर 84 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 2 छक्के लगाए। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। जहानाबाद जिले के खोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत चैती पिपरा स्थित फल्गु नदी में बालू खनन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 6 लोग घायल हो गए। SDPO कृति कमल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई है।
1: चैती पिपरा गांव में 2 पक्षों के बीच बालू उठाव को लेकर के विवाद हुआ और उसी में गोली चली है। अभी की सूचना के अनुसार 6 लोग घायल हैं। जो भी लोग इसके दोषी होंगे उनके विरुद्ध जो भी उचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
0: पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आरोप में स्थानीय थाने में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद तुहन ने नेपाल की नागरिकता रखने वाली 10 महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया के तहत शपथ दिलाई। इन सभी महिलाओं का विवाह अररिया जिले में हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 युवतियों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदि गोपालपुर चौक के पास एक अनियंत्रित कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी जिससे दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के पूरब टोला में करंट लगने से 1 महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बोचाही के पास पिछले गुरुवार को हुई लूट के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट की रकम और हथियार समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। मधुबनी जिले के जयनगर में पेट्रोल पंप पर पिस्तौल दिखाकर लूट की कोशिश कर रहे 2 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने घेर कर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पिस्तौल बरामद की गई है। भोजपुर जिले में महुली घाट स्थित पीपा पुल पर पुलिस की पर्दी का रौब दिखाकर राहगीरों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह के

0: तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक होमगार्ड जवान भी शामिल है। बरौनी जंक्शन पर उत्पाद विभाग की टीम ने कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन से 118 ग्राम हेरोइन बरामद की है। मौके से चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महोदीपुर गांव में पुलिस ने एक चारपहिया वाहन से 124 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के सिवायपट्टी थाना क्षेत्र में आज तड़के अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर फोरलेन गंगा पुल के स्लैब का एक हिस्सा गिर जाने से 6 मजदूर घायल हो गए। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय एड्स संगठन के निर्देश पर भभुआ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में रेड रन के तहत 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा की। अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर दिया बल। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने इथेनॉल को स्वच्छ ईंधन बताया, कहा यह अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू कर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शेखपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
1: शेखपुरा जिले में मानसून के आगमन के बावजूद अब तक केवल 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आमतौर पर जून माह में जिले में करीब 165 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार बारिश सामान्य से काफी कम रही है और यह 30% से भी नीचे दर्ज की गई है। बारिश की कमी के कारण धान की रोपाई सहित खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। इसके चलते जिले में सुखाड़ जैसे हालात बनने लगे हैं और किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष जिले में 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान तथा लगभग 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अरहर, मक्का व अन्य खरीफ फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि अब तक 30% से भी कम धान की नर्सरी बिचड़ा तैयार हो सकी है। बारिश की कमी के कारण किसान परेशान हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी का असर भी लगातार जारी है।

0: जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इधर कृषि विज्ञान केंद्र और जिला कृषि विभाग के सहयोग से जिले में 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने, रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग तथा मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया। बीते दिनों जिले के पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी का तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर सासाराम के पूर्व पुलिस अधीक्षक हिमांशु को शेखपुरा का 29वां पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की अपनी प्राथमिकता बताया है। शेखपुरा जिले में बीते दिनों केंद्रीय चयन परिषद बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती के विभिन्न संवर्गों की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रही। इसके अलावा उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का भी आयोजन किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या में भाग लिया। वहीं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का भी सफल आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण परीक्षा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों, पुलिस बल और उड़न दस्तों की तैनाती की गई थी। आम लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जिले में नियमित रूप से सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां नागरिकों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया जा रहा है। वहीं बीते माह के अंतिम रविवार से पंचायत विकास दिवस की भी शुरुआत की गई है। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पंचायतों के समग्र विकास को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सामूहिक रूप से सुना और विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले के विभिन्न हिस्सों में भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, प्रभारी मंत्री श्वेता गुप्ता, विधान परिषद सदस्य अनामिका सिंह सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को साझा करते हुए मीडिया को संबोधित किया। इधर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जिले में उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोगों ने आकाशवाणी की विश्वसनीय समाचार सेवा, जन जागरूकता और मनोरंजन के जुड़े कार्यक्रमों की सराहना करते हुए इसे समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी माध्यम बताया।
1: मैं रूबी कुमारी, आकाशवाणी के 90 साल पूरा होने पर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम 40 वर्ष से आकाशवाणी को सुनते आ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार हो, चौपाल हो, या गीत गाना हो, या नाटक हो।
2: मैं राम सिंह, मैं आकाशवाणी कार्यक्रम को 1967 से सुन रहा हूं, जिसका आज 90 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसमें कृषि एवं मनोरंजन के अलावा देश विदेश के समाचार का नियमित प्रसारण होता है, जो कि बहुत ही लाभदायक।
0: हाल ही में संपन्न बिहार विधान परिषद उपचुनाव में जिले के घाट कुसुम्भा प्रखंड के सुजावलपुर गांव निवासी ललन प्रसाद विधान पार्षद निर्वाचित हुए। उनके निर्वाचित होने पर जिले भर में खुशी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए क्षेत्र के विकास को लेकर उम्मीद जताई और विश्वास व्यक्त किया कि उनके कार्यकाल में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शेखपुरा जिले में तपेदिक रोगियों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू की गई है। यह अभियान 14 अगस्त तक चलेगा, जिसके दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर संभावित मरीजों की जांच करेगी और टीबी के लक्षण वाले लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना और रोग को समय पर पहचान सुनिश्चित करना है।
3: अभी आप सुन रहे थे शेखपुरा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
4: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना आप तक पहुंचा दें। श्रोताओं, वन संरक्षण के बिना पर्यावरण संतुलन तो खतरे में है ही, दिन ब दिन हमारा जीवन भी आसान नहीं रहने वाला। वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मुकेश प्रसाद। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222481, दूसरा नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार 5 जुलाई

26 दिन के 11 बजे। और अब लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल को फिल्म दाग में। गीतकार थे समीर, संगीतकार राजेश रोशन। ये कार्यक्रम अब समाप्त होते ही हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ श्रोताओं, आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है
1: 8860088827।
0: जी हाँ 8860088827।
2: श्रोताओं, कहा जाता है कि बेटियों का असली घर उनका ससुराल होता है, पर कई बार ये होता है कि जिसे असली घर बताया जाता है यानी कि ससुराल, वहाँ हर पल बहू को बेगाना समझा जाता है। और कई बार तो ससुराल वाले बहू को बेटी तो क्या, बहू का भी सम्मान नहीं देते। बहुत सी बार देखा गया है कि ससुराल में बहू को कोई हक नहीं होता कि वह खुलकर सांस ले सके, अपनी इच्छा से कुछ कर सके। हर छोटी बड़ी बात के लिए ससुराल वालों की आज्ञा की आवश्यकता होती है, जैसे कि हो रहा है हमारे आज के इस नाटक में।

0: अरे बहू, दरवाजे की घंटी सुनाई नहीं दे रही क्या?
1: मम्मी जी, मेरे हाथ आटे में सने हैं, आप खोल दो प्लीज।
0: अरे तो हाथ धो लेना, 24 घंटे पानी आता है हमारे घर में।
1: अच्छा ठीक है, खोलती हूँ।
2: अरे कितनी देर हो गई, घंटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या?
0: अरे आपकी लाडली बहू, दरवाजा खोले तब ना।
2: क्यों, तुम दरवाजा नहीं खोल सकती? तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है क्या?
0: अरे अगर बहू खोले तो उसमें क्या बुराई है, सास हूँ मैं उसकी।
2: तो सास दरवाजा नहीं खोल सकती, चाहे दरवाजे पे किसी का दम निकल जाए?
0: हाँ हाँ, आप तो बस हर समय मुझे बातें सुनाने के लिए तैयार रहते हो, और तो किसी पर बस नहीं चलता।
2: तुम काम ही ऐसा करती हो।
0: इस घर में तो कोई मुझे आराम से पेपर भी नहीं पढ़ने देता।
2: नहीं नहीं, तुम पेपर पढ़ो, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ।
1: पापा जी चाय।
2: अरे बहू, तुम मेरी चाय मेरे कमरे में ही दे दो, वहीं पी लूंगा।
1: जी ठीक है पापा जी।
3: अरे अरे छोटी मालकिन, ये आप क्या कर रही हैं?
1: एक कबाड़ यहाँ से हटा रही हूँ काका।
3: नहीं नहीं, इसको मत छेड़िए, अगर बड़ी मालकिन ने देख लिया ना, पूरा घर सर पर उठा लेंगी।
1: क्यों?
0: अरे ये गोपी कहाँ मर गया? गोपी, ओ गोपी।
3: आया मालकिन। आप कोई सामान मत छेड़िए, सब ऐसा ही रहने देना बेटा।
2: आज क्या बनाया है खाने में?
0: मुझसे क्या पूछ रहे हो, बहू से पूछो।
2: अरे भाई, तुम्हारे ऑर्डर के बिना तो घर में हवा भी नहीं घिसक सकती।

0: माँ आज फिर ये खिचड़ी।
1: ओहो
2: क्यों, खिचड़ी में क्या बुराई है? रात के समय हल्का खाना ही ठीक रहता है।
1: खिचड़ी कभी कभी ही अच्छी लगती है, रोज रोज कौन खाता है ऐसा खाना।
2: तुम लोगों की सेहत का ध्यान रखना भी एक गुनाह है यहाँ पर।
1: सेहत नहीं बचत कहो, बचत।
2: तुम कहना क्या चाहते हो? क्या ये सब मैं अपने लिए करती हूँ? अगर मैं बचत ना करूँ ना तो तुम बाप बेटा सब उड़ा दो।
0: कोई बात नहीं पापा, खा लो अब।
1: क्या खाऊं? मैं नहीं खाऊंगा।
2: अच्छा अच्छा, ये नाटक बहू को करके दिखा रहे हो?
1: मैं नहीं, तुम तमाशा दिखा रही हो। जब अलमारी में रखी मिठाई में और नमकीन में कीड़े लग जाएंगे ना, तब भी बहू तमाशा देखेगी।
3: बिटिया अंधेरा हो गया है, अंदर जाकर पढ़ लो, अंधेरे में पढ़ोगी तो आंखें खराब हो जाएंगी।
4: काका अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं थोड़ी देर और यहीं बैठूंगी।
3: अच्छा अब समझ में आया ना इस घर का माहौल?
4: हाँ काका समझ में तो आ गया।
2: गोपी, ओ गोपी।
3: आया मालकिन।
1: अरे बहू यहाँ इस तरह अकेली क्यों बैठी हो?
4: पापा जी मैं अकेली कहाँ हूँ, ये सारे पेड़ पौधे हैं ना मेरे साथ, इनसे मन बहला रही हूँ।
1: अरे वाह बेटा, एक तुम हो जो इन पेड़ पौधों को भी जीवित समझती हो, और एक तुम्हारी सास है जो जिंदा इंसानों को भी मुर्दा समझती है।
0: अरे रमा आज चाय तुम यहीं ले आओ, मैं और पापा यहीं बैठकर चाय पियेंगे।
4: जी ठीक है अभी लाती हूँ।
1: सुधीर बेटा, मैंने जो तुम्हारी माँ से शादी की है इसलिए मैं तो नहीं जा सकता, पर तुम बहू को लेकर यहाँ से चले जाओ।
0: ये क्या कह रहे हैं पापा आप?
1: बेटा अगर जीवन में तुम्हें सुख और शांति चाहिए तो यहाँ से चले जाओ, इस घर में तुम्हें कड़वाहट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।
0: पापा ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा।
1: अरे मैं तो तुम दोनों को इस नरक से निकालकर दुनिया में रहने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारी माँ सारा दिन बहू के पीछे लगी रहती है, वो तो इसे नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। पता नहीं बहू हमारे बारे में क्या सोचती होगी। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो तुम्हारी माँ की आदतों के बारे में अपने घर वालों को और बाहर वालों को बताएगी, तब क्या होगा।
0: नहीं पापा, मैं रमा को अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत समझदार है। देखा नहीं माँ की हर बात का कितना शांति और प्रेम से जवाब देती है।
1: हाँ बेटा वो तो है।
4: माँ जी वो जो कबाड़ रखा है उसे उठाकर गैरेज के कोने में रख दूं?
2: खबरदार उस सामान को छुआ तो, तुम्हें क्या पता घर कैसे चलता है और कैसे बनता है।
4: अरे माँ जी मुझे मालूम है आपने इस घर को कितनी मेहनत से खड़ा किया है, पैसे तो कितनों के पास होते हैं पर सब सिर्फ दिखावा करते हैं। पर आपने पैसों की कीमत समझी भी है और उन्हें संभाला भी है। और हाँ माँ जी ये सामान बारिश और धूप में खराब ना हो जाए इसलिए गैराज में रखने के लिए कह रही थी। चलिए काका ये सामान लेकर चलिए, ये डिब्बा मैं लेकर आती हूँ।
3: ठीक है बिटिया।
2: क्या समझती है ये, मेरी चापलूसी करके मीठी मीठी बातें करके ये चाबियां हथिया लेगी, पर उसे पता नहीं ये चाबियां मैं उसे कभी नहीं देने वाली।
4: मौसी जी नमस्ते, आइए। माँ जी, माँ जी देखिए कौन आया है।
2: अरे शशि तू अचानक से, आजा बैठ और सुना सब ठीक तो है ना, यूं अचानक कैसे आना हुआ?
5: बस मन कर रहा था आपसे मिलने का इसलिए चली आई। अरे दीदी आपका घर तो बड़ा चमक रहा है, साफ सुथरा किसने किया ये सब?
2: अरे ये सब सुधीर की बीवी ने किया है।
5: वाह दीदी आपकी बहू कितनी अच्छी है, घर से बाहर तक कितनी सफाई कर रखी है।
2: बस बस ज्यादा तारीफ मत कर, वो तो मुझे खुश करने के लिए ये सब करती है ताकि ये चाबियां मैं उसे दे दूं।
5: अरे नहीं दीदी आपकी बहू तो सचमुच में बहुत समझदार है।

0: मम्मी जी, चाय तो बन गई है, नाश्ते के लिए क्या लाऊं?
1: नाश्ते के लिए देखो, शशि मीठा तो खाती नहीं है, तो ऐसा करो अलमारी में से कुछ नमकीन ले आओ।
0: जी, और वो चाबी?
1: हाँ हाँ, ये लो चाबी।
2: दीदी, खाने का सामान ताले में रखने की आपकी आदत अभी तक गई नहीं।
1: अरे तुझे क्या पता, अगर मैं ध्यान ना रखूँ ना तो ये लोग सारा घर ही लुटा दें।
0: मम्मी जी, नमकीन तो खराब हो गई है और मिठाई में भी कीड़े लग गए हैं।
1: क्या? ओहो, अच्छा जा, अब ऐसा कर, शशि के लिए कुछ पकौड़े बना के ले आ।
0: जी ठीक है। मम्मी जी, ये लीजिए पकौड़े, आप लोग खाना शुरू करो, मैं और बना कर लाती हूँ।
2: दीदी, आपकी बहू सचमुच बहुत अच्छी है, इस तरह कड़ा रुख अपनाकर उसे अपने से दूर मत करो। आप भी वही गलती कर रही हो जो मैंने की, और अब देख लो, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर दूसरे देश में जाकर बैठ गए।
1: हाँ शशि, कह तो तू ठीक ही रही है।
2: हाँ दीदी, रमा आपके घर की खुशी है, उसे सीने से लगा कर रखो।
0: मम्मी जी, मौसी, ये क्या, आप लोगों ने तो अभी तक पकोड़े खाए ही नहीं, और मैं तो और बना कर ले आई।
1: हाँ भाई, खाएंगे, पर तुम्हारे साथ बैठकर। आ जाओ, हम सब एक साथ बैठकर खाएंगे।
3: अरे भाई, मैं ये क्या देख रहा हूँ, इतना बड़ा परिवर्तन।
2: जीजा जी, ये तो आपकी बहू का कमाल है।

0: श्रोताओं, ससुराल में बहू सबकी इच्छाओं का ख्याल रखती है, सबका मान सम्मान करती है, पर बहू को पूरा सम्मान नहीं मिल पाता। बात बात पर ताने सुनने को मिलते हैं। अगर गलती हो जाए तो बस माँ ने कुछ नहीं सिखाया कहकर ताने मारे जाते हैं। हर काम ससुराल वालों की मर्जी से करे, यहाँ तक कि ससुराल वालों की मर्जी के बिना अपने माँ बाप और भाई बहनों से भी नहीं मिल सकती। इस विषय पर हम जानना चाहते हैं आपके विचार।
1: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।
0: हमारा फोन नंबर है
1: 88

0: 6008 8827। जी हाँ, 8860088827।
1: हम धन्यवाद करते हैं अपने श्रोताओं का कि जो लगातार कार्यक्रम सुनते हैं, और अब हम उन श्रोताओं का नाम लेने वाले हैं जो लगातार हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने सुझाव भेजते हैं। बबली रेवाड़ी से, गुलाब सिंह भिवानी से, बलदेव सोलन हिमाचल से, ज्योति अम्बाला से, प्रमोद सिरमौर हिमाचल से, धन्यवाद।
2: आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विज्ञान कार्यक्रम।

श्रोताओं नमस्कार। विज्ञान कार्यक्रम के आज के इस नए अंक के साथ मैं आपका रेडियो दोस्त कल्याण कुमार झा। श्रोताओं, आज के अंक में हम बातें करेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं, उनके अध्ययन विषय और प्रारंभिक ज्ञान के बारे में, जिसका विषय होगा विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तथा प्रारंभिक ज्ञान। चूंकि आज की चर्चा के विषय का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसलिए इस अंक में चर्चा का कोई और विषय नहीं लिया है हमने। हाँ, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में ही थोड़ी विस्तृत चर्चा अवश्य करेंगे। तो आइए गोता लगाते हैं चर्चा के सागर में। श्रोताओं, विज्ञान की शाखाओं को आमतौर पर तीन प्रमुख समूहों में विभाजित किया जाता है। वे तीन समूह हैं औपचारिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान समूह में विज्ञान की औपचारिक प्रणालियों का अध्ययन होता है, जैसे कि तर्कशास्त्र और गणित की शाखाओं के अंतर्गत आने वाली प्रणालियां, जो अनुभवजन्य पद्धति के विपरीत पूर्व निर्धारित पद्धति का उपयोग करती हैं। वे औपचारिक प्रणालियों द्वारा वर्णित अमूर्त संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान समूह के अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, जिसमें ब्रह्मांडीय, भूवैज्ञानिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक शामिल हैं। प्राकृतिक विज्ञान को दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। श्रोताओं, सामाजिक विज्ञान समूह के अंतर्गत मानव व्यवहार का उसके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में अध्ययन होता है। श्रोताओं, वैज्ञानिक ज्ञान अवलोकन योग्य घटनाओं पर आधारित होना चाहिए और समान परिस्थितियों में काम करने वाले अन्य शोधकर्ताओं द्वारा सत्यापित किए जाने में सक्षम होना चाहिए। प्राकृतिक, सामाजिक और औपचारिक विज्ञान समूह मिलकर बुनियादी विज्ञानों का निर्माण करते हैं, जो अंतः विषयक और अनुप्रयुक्त विज्ञानों जैसे इंजीनियरिंग यानी अभियंत्रण और चिकित्सा का आधार बनते हैं। कई श्रेणियों में मौजूद विशिष्ट वैज्ञानिक विषयों में अन्य वैज्ञानिक विषयों के भाग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अक्सर उनकी अपनी शब्दावली और विशेषज्ञता होती है। श्रोताओं, हमने पहले भी चर्चा की है कि औपचारिक विज्ञान विज्ञान की वे शाखाएं हैं जो औपचारिक प्रणालियों से संबंधित हैं, जैसे कि तर्कशास्त्र, गणित, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान, सूचना सिद्धांत, प्रणाली सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, सांख्यिकी इत्यादि। अन्य शाखाओं के विपरीत औपचारिक विज्ञान वास्तविक दुनिया में प्रेक्षणों अर्थात अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित सिद्धांतों की वैधता से संबंधित नहीं है, बल्कि परिभाषाओं और नियमों पर आधारित औपचारिक प्रणालियों के गुणों से संबंधित हैं। इसलिए इस बात पर असहमति है कि क्या औपचारिक विज्ञान वास्तव में एक विज्ञान है। हालांकि औपचारिक विज्ञान की विधियां

प्रेक्षणीय वास्तविकता से संबंधित वैज्ञानिक मॉडलों के निर्माण और परीक्षण के लिए आवश्यक हैं, और औपचारिक विज्ञान में हुई प्रमुख प्रगति ने अक्सर अनुभवजन्य विज्ञान में भी प्रमुख प्रगति को संभव बनाया है। औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले तर्क अर्थात तर्कशास्त्र या तर्क विज्ञान की बात करें तो तर्कशास्त्र अनुमान के वैध नियमों का व्यवस्थित अध्ययन है, अर्थात वे संबंध जो अन्य प्रस्तावों के एक समूह के आधार पर किसी निष्कर्ष की स्वीकृति की ओर ले जाते हैं। व्यापक रूप से तर्कशास्त्र तर्कों का विश्लेषण और मूल्यांकन है। परंपरागत रूप से इसमें तर्कों का वर्गीकरण, तार्किक रूपों का व्यवस्थित प्रतिपादन, निगमनात्मक तर्क वैधता और सुदृढ़ता, आगमनात्मक तर्क की शक्ति, औपचारिक प्रमाणों और अनुमानों का अध्ययन, विरोधाभासों और भ्रांतियों सहित तथा वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान का अध्ययन शामिल है। ऐतिहासिक रूप से तर्कशास्त्र का अध्ययन प्राचीन काल से दर्शन शास्त्र और 19वीं शताब्दी के मध्य से गणित में किया जाता रहा है। हाल ही में संज्ञानात्मक विज्ञान में तर्कशास्त्र का अध्ययन किया जा रहा है, जो अन्य विषयों के अलावा कंप्यूटर विज्ञान, भाषा विज्ञान, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान से भी ज्ञान प्राप्त करता है। औपचारिक विज्ञान समूह के अंतर्गत आने वाले सूचना विज्ञान एक अकादमिक क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से सूचना के विश्लेषण, संग्रहण, वर्गीकरण, पुनर्प्राप्ति, संचलन, प्रसार और संरक्षण से संबंधित है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और बाहरी विशेषज्ञ संगठनों में ज्ञान के अनुप्रयोग और उपयोग के साथ साथ लोगों, संगठनों और किसी भी मौजूदा सूचना प्रणाली के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं, जिसका उद्देश्य सूचना प्रणालियों का निर्माण, प्रतिस्थापन, सुधार या उन्हें समझना है। अंकशास्त्र भी औपचारिक विज्ञान समूह की शाखा है। व्यापक अर्थ में गणित औपचारिक विज्ञान का पर्यायवाची मात्र है, लेकिन परंपरागत रूप से गणित का अर्थ चार क्षेत्रों का अधिक विशिष्ट संयोजन है, जिसमें अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित और विश्लेषण शामिल हैं। औपचारिक विज्ञान समूह की शाखाओं में आंकड़े भी शामिल हैं। श्रोताओं, सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रह, संगठन और व्याख्या का अध्ययन है। यह इसके सभी पहलुओं से संबंधित है, जिसमें सर्वेक्षण और प्रयोगों के डिजाइन के संदर्भ में डेटा संग्रह की योजना शामिल है। सांख्यिकीविद वह व्यक्ति होता है जो सांख्यिकीय विश्लेषण के सफल अनुप्रयोग के लिए आवश्यक चिंतन विधियों में विशेष रूप से पारंगत होता है। प्रणाली सिद्धांत। हाँ श्रोताओं, औपचारिक विज्ञान समूह की यह शाखा सामान्य रूप से प्रणालियों का अंतः विषयक अध्ययन है, जिसका उद्देश्य उन सिद्धांतों को स्पष्ट करना है जिन्हें अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की प्रणालियों पर लागू किया जा सकता है। इस शब्द का अभी तक कोई सुस्थापित और सटीक अर्थ नहीं है, लेकिन प्रणाली सिद्धांत को प्रणाली चिंतन का एक विशिष्ट रूप और प्रणाली विज्ञान का एक सामान्यीकरण माना जा सकता है। यह शब्द बर्टालानफी के सामान्य प्रणाली सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है और बाद में अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया गया है, जैसे कि टेलकॉट पार्सन्स का क्रिया सिद्धांत तथा निकोलस लहमान का समाज शास्त्रीय स्व उत्पादन। इस संदर्भ में प्रणाली शब्द का प्रयोग विशेष रूप से स्वनियमित प्रणालियों के लिए किया जाता है, अर्थात वे प्रणालियां जो प्रतिक्रिया के माध्यम से स्वयं को ठीक करती है। स्वनियमित प्रणालियां प्रकृति में पाई जाती हैं, जिनमें मानव शरीर की शारीरिक प्रणालियां, स्थानीय और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु शामिल हैं। निर्णय सिद्धांत भी औपचारिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें एजेंट के विकल्पों का अध्ययन किया जाता है। निर्णय सिद्धांत को दो शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, मानक निर्णय सिद्धांत जो निर्णयों के परिणामों का विश्लेषण करता है, या बाधाओं तथा मान्यताओं को देखते हुए इष्टतम निर्णयों का निर्धारण करता है, और वर्णनात्मक निर्णय सिद्धांत जो विश्लेषण करता है कि एजेंट वास्तव में वे निर्णय कैसे लेते हैं। निर्णय

सिद्धांत खेल सिद्धांत के क्षेत्र से निकटता से संबंधित है तथा यह एक अंतः विषयक शाखा है जिसका अध्ययन अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकविदों, मनोवैज्ञानिकों, जीव विज्ञानी, राजनीतिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और कंप्यूटर वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। इस समूह सिद्धांत के अनुभवजन्य अनुप्रयोग साधारणतः सांख्यिकीय और अर्थमितीय विधियों की सहायता से किए जाते हैं। श्रोताओं, औपचारिक विज्ञान समूह के अंतर्गत आने वाली शाखा सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर विज्ञान और गणित का एक उपसमूह है जो कंप्यूटिंग के अधिक गणितीय विषयों पर केंद्रित है तथा इसमें गणना का सिद्धांत शामिल है। सैद्धांतिक क्षेत्रों को सटीक रूप से परिभाषित करना कठिन है। ACM अर्थात एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग थ्योरी के एल्गोरिदम और SIGACT अर्थात कंप्यूटेशन थ्योरी पर विशेष रुचि समूह विवरण प्रदान करता है। TCS में एल्गोरिदम, डेटा संरचनाएं, कंप्यूटेशनल जटिलता, समानांतर तथा वितरित गणना, संभाव्यता गणना, क्वांटम गणना, ऑटोमेटा सिद्धांत, सूचना सिद्धांत, क्रिप्टोग्राफी, प्रोग्राम सिमेंटिक्स और सत्यापन, मशीन लर्निंग, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल अर्थशास्त्र, कंप्यूटेशनल ज्यामिति और कंप्यूटेशनल संख्या सिद्धांत तथा बीजगणित सहित कई विषय शामिल हैं। इस क्षेत्र के लिए किए गए कार्य की विशेषता अक्सर गणितीय तकनीक और सटीकता पर जोर देना है। श्रोताओं, विज्ञान का दूसरा समूह है प्राकृतिक विज्ञान समूह। यह विज्ञान का वह समूह है जो अवलोकन और प्रयोगों से प्राप्त अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन, भविष्यवाणी और समझ से संबंधित है। वैज्ञानिक प्रगति की वैधता सुनिश्चित करने के लिए सहकर्मी समीक्षा और निष्कर्षों की पुनरावृत्ति जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान को दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इसी तरह भौतिक विज्ञान को भौतिक रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान जैसी उपशाखाओं में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक विज्ञान की इन शाखाओं को आगे और भी अधिक विशिष्ट शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। फिलहाल बातें करते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। श्रोताओं, भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की उन शाखाओं के लिए एक व्यापक शब्द है जो निर्जीव प्रणालियों का अध्ययन करती है, जबकि जीव विज्ञान इससे भिन्न सजीव प्रणालियों का अध्ययन करता है। हालांकि भौतिक शब्द अनजाने में एक मनमाना भेद पैदा करता है, क्योंकि भौतिक विज्ञान की कई शाखाएं जैविक घटनाओं का भी अध्ययन करती है। श्रोताओं, भौतिक विज्ञान और भौतिकी में अंतर है। भौतिकी एक ऐसा प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें पदार्थ और अंतरिक्ष समय में उसकी गति का अध्ययन शामिल है, साथ ही ऊर्जा और बल जैसी संबंधित अवधारणाओं का भी। व्यापक रूप से यह प्रकृति का सामान्य विश्लेषण है जो ब्रह्मांड के व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। वहीं भौतिक विज्ञान सबसे प्राचीन अकादमिक विषयों में से एक है। संभवतः खगोल विज्ञान के समावेश के कारण यह सबसे प्राचीन है। पिछले 2 सहस्राब्दियों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित की कुछ शाखाओं और जीव विज्ञान के साथ प्राकृतिक दर्शन का एक हिस्सा रहा है। लेकिन 16वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति के दौरान प्राकृतिक विज्ञान अपने आप में विशिष्ट अनुसंधान कार्यक्रमों के रूप में उभरे। कुछ अनुसंधान क्षेत्र अंतर्विषयक हैं, जैसे कि जैव भौतिकी और क्वांटम रसायन विज्ञान, जिसका अर्थ है कि भौतिक विज्ञान की सीमाएँ कठोरता से परिभाषित नहीं है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भौतिकवाद विज्ञान के दर्शन की एक प्रमुख एकीकृत विशेषता के रूप में उभरा, क्योंकि भौतिक विज्ञान प्रत्येक प्रेक्षित प्राकृतिक घटना के लिए मौलिक व्याख्या प्रदान करता है। भौतिक विज्ञान में नए विचार अक्सर अन्य विज्ञानों के मूलभूत तंत्रों की व्याख्या करते हैं, जबकि गणित और दर्शन में नए अनुसंधान क्षेत्रों के द्वार खोलते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान पदार्थ और उसमें होने वाले परिवर्तनों का विज्ञान है। यूं तो पदार्थों के बारे में अध्ययन भौतिक विज्ञान में भी किया जाता है, लेकिन

जहाँ भौतिक विज्ञान अधिक सामान्य और मौलिक दृष्टिकोण अपनाता है, वहीं रसायन विज्ञान अधिक विशिष्ट है, जो पदार्थों की संरचना, व्यवहार या प्रतिक्रिया तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। यह पदार्थों, परमाणुओं, अणुओं और विशेष रूप से कार्बन आधारित पदार्थों का अध्ययन करता है। रसायन विज्ञान की उपशाखाओं की बात करें तो जैव रसायन विज्ञान जैविक अर्थात जीवों में पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करता है। भौतिक रसायन विज्ञान ऊष्मा गतिकी और क्वांटम यांत्रिकी जैसी भौतिक अवधारणाओं का उपयोग करके रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान यह रासायनिक संरचना तथा संरचना को समझने के लिए पदार्थों के नमूनों का विश्लेषण करता है। हाल के वर्षों में कई और विषय उभर कर आए हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र का रासायनिक अध्ययन जिसे न्यूरोकेमिस्ट्री कहा जाता है। प्राकृतिक विज्ञान समूह ही की एक शाखा भू विज्ञान जिसे पृथ्वी विज्ञान भी कहा जाता है, इसमें पृथ्वी से संबंधित विज्ञानों का एक व्यापक अध्ययन होता है। यह ग्रह विज्ञान में एक विशिष्ट विषय माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ज्ञात जीवन युक्त ग्रह है। पृथ्वी विज्ञान के लिए न्यूनीकरणवादी और समग्र दोनों दृष्टिकोण है। पृथ्वी विज्ञान के औपचारिक अनुशासन में ठोस, पृथ्वी के साथ साथ वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल का अध्ययन शामिल होता है। साधारणतः पृथ्वी वैज्ञानिक पृथ्वी की कार्यप्रणाली और इसके वर्तमान स्वरूप में विकास की मात्रात्मक समझ विकसित करने के लिए भौतिकी, रासायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, कालक्रम और गणित के उपकरणों का उपयोग करते हैं। भूविज्ञान की उपशाखा भूगर्भ विज्ञान या भूगर्भ शास्त्र ठोस पृथ्वी, उसकी चट्टानों, आंतरिक संरचनाओं और समय के साथ उनमें होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। भूगर्भ विज्ञान में किसी भी स्थलीय ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा की ठोस संरचनाओं का अध्ययन भी शामिल हो सकता है। प्राकृतिक विज्ञान समूह की शाखा के अंतर्गत समुद्र विज्ञान या समुद्री विज्ञान जिसे अंग्रेजी में ओशियनोग्राफी भी कहा जाता है, यह पृथ्वी विज्ञान की वह उपशाखा है जो समुद्र का अध्ययन करती है। इसमें समुद्री जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता, समुद्री धाराएं, तरंगे और भूभौतिकीय द्रव गतिकी, प्लेट विवर्तनिकी और समुद्र तल का भूविज्ञान तथा समुद्र के भीतर और उसकी सीमाओं के पार विभिन्न रासायनिक पदार्थों और भौतिक गुणों के प्रवाह सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ये विविध विषय कई विषयों को दर्शाते हैं जिन्हें समुद्र विज्ञानी विश्व महासागर के ज्ञान को बढ़ाने और उसमें होने वाली प्रक्रियाओं को समझने के लिए आपस में जोड़ते हैं। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान, मौसम विज्ञान और भौतिकी विज्ञान के साथ साथ भूगोल भी आपस में जुड़ते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान या खगोल विज्ञान बाह्य अंतरिक्ष में मौजूद हर चीज का अध्ययन है। यूं तो अंतरिक्ष विज्ञान को खगोल विज्ञान भी कहा जाता है, लेकिन हाल ही में खगोल विज्ञान को व्यापक अंतरिक्ष का एक प्रभाग माना जाने लगा है, जिसमें अन्य संबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं, जैसे अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित मुद्दों का अध्ययन, अंतरिक्ष पुरातत्व और बाह्य अंतरिक्ष में किया जाने वाला अनुसंधान इत्यादि। मौसम विज्ञान भी अंतरिक्ष विज्ञान की एक उपशाखा है, जिसमें वायुमंडल के अंतर्विषयक वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। इस क्षेत्र में अध्ययन हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। हालांकि मौसम विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति 17वीं शताब्दी तक नहीं हुई थी। 19वीं शताब्दी में कई देशों में अवलोकन नेटवर्क विकसित होने के बाद महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंप्यूटर के विकास के बाद मौसम पूर्वानुमान में अभूतपूर्व प्रगति हुई। जैविक विज्ञान जिसे जीव विज्ञान भी कहा जाता है प्राकृतिक विज्ञान समूह की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों और जानवरों सहित मनुष्यों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसमें उनकी भौतिक संरचना, रासायनिक प्रक्रियाएं, आणविक अंतःक्रियाएं, शारीरिक क्रियाविधियां और विकास इत्यादि शामिल हैं। विज्ञान की जटिलता के बावजूद कुछ एकीकृत अवधारणाएं

इसे एक एकल सुसंगत क्षेत्र में समेकित करती हैं। जीव विज्ञान कोशिका को जीवन की मूल इकाई, जीन को आनुवंशिकता की मूल इकाई और विकासवाद को प्रजातियों के सृजन और विलुप्ति को गति देने वाले इंजन के रूप में मान्यता देता है। जीवित जीव खुली प्रणालियां हैं जो ऊर्जा को रूपांतरित करके अपने स्थानीय एंट्रोपी को कम करके जीवित रहते हैं ताकि एक स्थिर और जीवंत स्थिति बनाई रखी जा सके, जिसे होमियोस्टेसिस कहा जाता है। जीव रसायन विज्ञान या जैविक रसायन विज्ञान जीवित जीवों के भीतर और उनसे संबंधित रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। यह जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों ही की एक उपशाखा है। जैव रसायन विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, कोशिका जीव विज्ञान, आनुवंशिकी और शरीर क्रिया विज्ञान से निकटता से संबंधित है। सूक्ष्म जीव विज्ञान या कीटाणु विज्ञान सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है, जिसमें एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय या अकोशिकीय सूक्ष्म जीव शामिल हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान में कई उप विषय शामिल हैं, जैसे विषाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, प्रोटिस्टोलॉजी, कवक विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान और परजीवी विज्ञान इत्यादि। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान की बात करें, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। परंपरागत रूप से वनस्पति विज्ञान में कवक विज्ञानियों और शैवाल विज्ञानियों द्वारा क्रमशः कवक और शैवाल का अध्ययन भी शामिल रहा है। आजकल वनस्पति विज्ञानी लगभग 410,000 स्थलीय पौधों की प्रजातियों का अध्ययन करते हैं, जिनमें से लगभग 391,000 प्रजातियां संवहनी पौधे हैं, जिनमें लगभग 369,000 प्रजातियां पुष्पीय पौधों की हैं और लगभग 20,000 ब्रायोफाइट्स हैं। जूलॉजी यानी प्राणी शास्त्र जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव जगत का अध्ययन करती है, जिसमें जीवित और विलुप्त दोनों प्रकार के सभी जीवों की संरचना, भ्रूण विज्ञान, विकास, वर्गीकरण, आदतें और वितरण तथा उनके पारिस्थितिकी तंत्र के साथ उनकी अंतःक्रिया का अध्ययन शामिल है। प्राणी विज्ञान की कुछ उपशाखाओं में शामिल हैं एंथ्रोजूलॉजी, अरावनोलॉजी, आर्कियोजूलॉजी, सेटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, हेलमिंथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इच्थियोलॉजी, मेलाकोलॉजी, मैमलॉजी, मॉर्फोलॉजी, नेमाटोलॉजी, आर्निथोलॉजी, पेलियोजूलॉजी, पैथोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, टेक्सोनॉमी और जूलिजियोग्राफी। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी की। जीव विज्ञान की एक शाखा है पारिस्थितिकी, जो जीवों और उनके जैव भौतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रियाओं से संबंधित है, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल हैं। रुचि के विषयों में जीवों की जैव विविधता, वितरण, बायोमास, साथ ही प्रजातियों के भीतर और बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा शामिल हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जीवों, उनके द्वारा निर्मित समुदायों और उनके पर्यावरण के निर्जीव घटकों के गतिशील रूप से अंतःक्रियाशील प्रणालियां हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रक्रियाएं जैसे प्राथमिक उत्पादन, मृदा जनन, पोषक तत्व चक्रण और निकेत निर्माण पर्यावरण के माध्यम से ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रित करती है। अब विज्ञान का तीसरा समूह, सामाजिक विज्ञान समूह। समाजों और उनमें व्यक्तियों के बीच संबंधों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है सामाजिक विज्ञान। यह शब्द पहले समाजशास्त्र के क्षेत्र को संदर्भित करता था, जिसे 19वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और जो मूल रूप से समाज का विज्ञान कहलाता है। समाजशास्त्र के अलावा अब इसमें मानव विज्ञान, संचार अध्ययन, अर्थशास्त्र, शिक्षा, भूगोल, इतिहास, विधि, भाषा विज्ञान, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान सहित कई अकादमिक विषय शामिल हैं। प्रत्यक्षवादी सामाजिक वैज्ञानिक समाज को समझने के लिए प्राकृतिक विज्ञानों से मिलती जुलती विधियों का उपयोग करते हैं और इस प्रकार विज्ञान को उसके अधिक कठोर आधुनिक अर्थों में परिभाषित करते हैं। इसके विपरीत व्याख्यावादी सामाजिक वैज्ञानिक अनुभवजन्य रूप से मिथ्या सिद्ध किए जा सकने वाले सिद्धांतों का निर्माण करने के बजाय सामाजिक आलोचना या प्रतीकात्मक व्याख्या का उपयोग कर सकते हैं। आधुनिक अकादमिक अभ्यास में शोधकर्ता अक्सर कई पद्धतियों का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान।

दोनों को मिलाकर। सामाजिक अनुसंधान शब्द ने भी एक हद तक स्वायत्तता प्राप्त कर ली है, क्योंकि विभिन्न विषयों के अभ्यासकर्ता इसके उद्देश्यों और विधियों को साझा करते हैं। अब है अनुप्रयुक्त विज्ञान। अनुप्रयुक्त विज्ञान के अंतर्गत आता है व्यावहारिक विज्ञान। प्रौद्योगिकी या आविष्कारों जैसे व्यावहारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग है व्यावहारिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत मूलभूत विज्ञान के विषय प्राकृतिक जगत की घटनाओं की व्याख्या करने और संभवतः भविष्यवाणी करने के लिए बुनियादी जानकारी विकसित करते हैं। अनुप्रयुक्त विज्ञान वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और ज्ञान का उपयोग करके विशेष रूप से व्यावहारिक या उपयोगी परिणाम प्राप्त करने का माध्यम है। इसमें अनुप्रयुक्त विज्ञान से संबंधित कई क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें अभियांत्रिकी और चिकित्सा भी शामिल हैं। व्यावहारिक विज्ञान में सांख्यिकी और संभाव्यता सिद्धांत जैसे औपचारिक विज्ञान का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि महामारी में आनुवंशिक महामारी विज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान है जो जैविक और सांख्यिकीय दोनों विधियों का उपयोग करता है। श्रोताओं, एक सरसरी निगाह डालते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाओं पर और उनके अध्ययन विषयों पर। अर्बोरी कल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्थोपीडिक्स अस्थि उपचार का अध्ययन है। आर्बोरी कल्चर पेड़ उत्पादन संबंधित विज्ञान है। इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन है। एकोस्टिक्स यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एपिकल्चर यह मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन है। एपिग्राफी यह शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन है। एरोनोटिक्स यह वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोनॉमी यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन है। एस्ट्रोलॉजी मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन है। एक्रोबेटिक्स व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन है। एंथोलॉजी पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोनोटिक्स यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन का विज्ञान है। ऑस्टियोलॉजी इसमें हड्डियों का अध्ययन होता है। ओडोंटोलॉजी दांत व मसूड़ों का अध्ययन इसमें होता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित अध्ययन होता है। ओलिवो कल्चर जैतून की कृषि का अध्ययन होता है। ओलेरी कल्चर सब्जियों की व्यापारिक कृषि का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन होता है। ऑनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन होता है। कार्डियोलॉजी हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन होता है। कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है। कॉस्मोलॉजी इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, यानी ब्रह्मांड के जन्म विकास और विलोपन का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। ट्राइबोलॉजी घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन होता है। न्यूमिस्मेटिक्स पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिकाओं का अध्ययन होता है, यानी नसों का अध्ययन होता है। पिसिकल्चर मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन होता है। पेडागोजी अध्यापन कला का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति कारण उपचार आदि का अध्ययन होता है। पैरालॉजी स्पंजों का अध्ययन होता है। पैलियोन्टोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है। फिजियोग्राफी प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन होता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि का अध्ययन होता है। बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की यह एक शाखा है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन इसमें होता है। और माइक्रोलॉजी फफूंद एवं इससे संबंधित विषयों का अध्ययन होता है। मॉर्फोलॉजी जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन होता है। मिनरलॉजी खनिजों का अध्ययन होता है। मेटेरोलॉजी वातावरण संबंधित विषयों का अध्ययन होता है। लिथोलॉजी चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन होता है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का अध्ययन इसमें होता है। साइटोजेनेटिक्स जीव कोशिका और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन इसमें होता है। इस तरह से हमने विज्ञान की प्रमुख शाखाओं और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं संपन्न हुआ जाता है। तो कार्यक्रम विज्ञान के इस अंक से प्रस्तुतकर्ता

0: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव है 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। 8:45 हुआ चाहते हैं, कुछ एक पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर

0: पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
0: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण

कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण

0: निर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद ने सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines.

0: जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini-India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है।
4: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड। द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28th फरवरी, द सेकंड प्लांट ऑन 31st मार्च एंड टुडे ऑन 4th जुलाई द थर्ड प्लांट। गिवन द स्पीड विद विच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल

0: quarter from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 for host England in second T20 in Manchester, where Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के दिफाई सामान की बरामदात 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है, कई दरिया तुगयानी पर हैं। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी बैन अलावा क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूने मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निज़ाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मस्कूरा प्लांट में मुतनव्व अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवीत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निज़ाम से मसनूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वजीर आजम ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
2: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
1: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मजकूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब

0: दिफा ने कहा कि माली बरस 2025-26 में सालाना दिफाई पैदावार भी अब तक की सबसे ज्यादा बुलंदी 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई, जो 2014-15 की सतह से तकरीबन 3 गुना है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की वसीतर हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग की तौसी, मोटर गाड़ियों के बरामदात में इजाफे, अंदरूने मुल्क तैयार करदा रेल इंजन और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर किया। गुज़श्ता दहाई में मुल्क की तरक्की के बारे में बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने किल्लत का इज़ाला किया, मौके बढ़ाए और वर्क कल्चर में यकसर तब्दीली पैदा की। उन्होंने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की पॉलिसी के जरिए विकसित भारत की मजबूत बुनियाद कायम कर रही है। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की इत्तलात सामने आने पर टेलीग्राम ऐप को नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकार ने टेलीग्राम को हिदायत दी है कि चोरी छुपे हासिल की गई फिल्मों और ओवर द टॉप ओटीटी प्रोग्रामों के खिलाफ बिला ताखीर इकदामात किए जाएं। ज़राए ने मजीद बताया कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। इंडोनेशिया के सदर की दावत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी का इंडोनेशिया का यह चौथा और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकत दारी तक वसूल दिए जाने के बाद पहला दौरा होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी इंडोनेशिया के सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, जिसमें कलीदी शराकत दारी के तहत अहम शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जकार्ता में वज़ीर आज़म का वहाँ आबाद भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तम से खिताब का भी प्रोग्राम है। इंडोनेशिया में भारतीय बिरादरी वज़ीर आज़म के दौरे की मुंतजर है। जकार्ता में इंडिया क्लब के सदर सिद्धार्थ तपाड़िया ने आकाशवाणी से बात करते हुए भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मजबूत दोस्ती को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस आला सतही रबते से ये बात नुमाया होती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को खास अहमियत देते हैं। उन्होंने इस बात पर पुरउम्मीदी का इजहार किया कि दोनों ममालिक बुनियादी ढांचे, तिजारत, दिफा, ज़राअत, कुदरती वसाइल और दीगर शोबों में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करेंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीका के 250वें यौम आज़ादी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वहां के अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात कलीदी साझेदारी से आगे बढ़कर हैं, जो जमहूरियत, कानून की अमलदारी और अपने अवाम की लामहदूद सलाहियत के मुश्तरका एतमाद पर मबनी है। सनअती माहरीन ने कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम रातों रात मुतारिफ नहीं किया गया, बल्कि ये एक सोचा समझा मरहलेवार और साइंस पर मबनी अमल है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की साबिक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम 2018 में सिलसिलेवार तबादला ख्याल और मुतालिका फरीकों के सलाह मशवरे के लिए लोगों के सामने रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे रियासत भर में मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। मुंबई और उसके मजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मुंबई, थाने और पालघर में स्कूलों को बंद करना पड़ा। पालघर जिले के हिस्सों से सैलाब किसी सूरत हाल की खबर है, जिससे सड़क और रेल ट्रैफिक मुतासर हुआ है। रायगढ़ में अहम दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई है। मुसलसल बारिश से कोल्हापुर में पंचगंगा और दीगर दरियाओं में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की 6 रोजा सरकारी आखिरी रसूमात का सिलसिला आज से तेहरान में शुरू हो गया। इसमें हजारों सोगवार शिरकत कर रहे हैं और ईरान के मरहूम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में दूसरे T20 बैन अलावा क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड की जीत के लिए 191 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 5 ओवर्स में 3 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए अपना पहला बैन अलावा मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। वैभव ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में CGSEMI के आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असम्बली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया, ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। پارلیمنٹ

0: کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے لے کر 13 اگست تک ہوگا۔ مہاراشٹر کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہونے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں مینچسٹر میں بھارت نے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ کے سامنے 191 رن کا نشانہ رکھا۔ ویبھو سوریاونشی بین الاقوامی کرکٹ میں قدم رکھنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर सायास ही याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
3: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट, भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है।

0: भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था।

0: उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो।
3: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है, सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है, कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारणकर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
4: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद, कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
5: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं, समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
4: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती है।

0: करती।
1: मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
0: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थीं जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं, तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है जिसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही है। अच्छा, शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उन पर बुंदिया चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में हैं और बड़े कड़क आदमी हैं, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फ भी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहां पर मैं इस पर कोई

0: प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं भी, जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन यह है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी 4 लाइनें सुना सकता हूँ और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की

0: चाह। इधर उठी हुंकार, सृष्टि सारी वह डामा डोल हुई, प्रलय कारिणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंदुभि बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बार डोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी जैसी काव्य कृति लिखी, और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल, दिव्य शोभनी सुरसर स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी, साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है, और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी, और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे, जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50-60-70-80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, यह वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्म गौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगत के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी,

अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी, उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल

0: अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थामकर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: टुनाइट इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी प्रेजेंट ख्याल रिसाइटल बाय Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan, the doyens of Kirana Gharana, has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnob Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Tumri presentations, which makes his renditions quite colorful and popular.
0: आज रात पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय के साथ संगत करेंगे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा।
1: Tonight, Pandit Arnob Chattopadhyay is accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay and on the tanpura by Koel Saha.
0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम की शुरुआत पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय राग यमन के साथ करेंगे। यह बंदिश पूर्वार्ध में विलंबित एक ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय बिगिन्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग यमन। द कंपोजिशन इज सेट टू विलंबित एक ताल फॉलोड बाय द्रुत तीन ताल।

0: ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाई पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर।

0: आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विथ राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति in the Khayal recital by Pandit Arnob Chattopadhyay. He was accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Saha. And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है।

0: है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips.